0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी माधुरी दांडगे का गायन। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। 6 बजने को हैं, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047।

0: के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी The news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग एट राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर इन न्यू दिल्ली टुडे इन लाइन विद द प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ टीम इंडिया फॉर अ विकसित भारत दिस ईयर्स थीम इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत एट 2047 फोकसेस ऑन द वेल बीइंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंडियन रिगार्डलेस ऑफ एज रीजन जेंडर और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. This Governing Council meeting will bring together chief ministers and lieutenant governors to discuss the inclusive human development framework. Prime Minister Narendra Modi has said, aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled. He said that National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said the rising sun of hope in 2014 has today transformed into a ray of renewed confidence. He said for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, the development also takes place at a rapid pace.
1: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai, to tez gati se vikas bhi hota hai. NDA sarkar ke in 12 varshon mein 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं हमारी दिशा सही है ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे
3: In his address, Mr. Modi said that at a time when the economies of major countries around the world are struggling, India has still achieved a growth rate of 7.7% in 2025-2026. BJP President Nitin Naveen has said that a total of 75 delegates from 35 political parties participated in the NDA conclave held at Bharat Mandapam in New Delhi. Speaking to media, Mr. Naveen said the NDA leaders expressed their gratitude for Prime Minister Narendra Modi's leadership and congratulated him on a historic milestone, calling it a moment of pride for 140 crore people of the country. Mr. Naveen said, under Prime Minister Modi's leadership, India is moving forward towards the vision of Viksit Bharat. He added that the Prime Minister's guiding mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas has connected people across the country. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to Italian Prime Minister Giorgia Meloni, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, German Federal Chancellor Friedrich Merz, Canadian Prime Minister Mark Carney and Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu for their warm wishes and messages. In a social media post, Mr. Modi thanked his Italian counterpart, Giorgia Meloni, for her warm wishes. In another post, the Prime Minister thanked Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim for his warm wishes and kind words. He also thanked German Chancellor Friedrich Merz for his warm words. Meanwhile, US President Donald Trump has described Prime Minister Narendra Modi as a great one. In a social media post, President Trump said, Mr. Modi is a strong, healthy and wise man and will have many years of greatness and success ahead of him. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Bulgaria's Prime Minister Rumen Radev in Sofia yesterday. Dr. Jaishankar highlighted India's robust bilateral ties, recent opportunities created by the strengthening India-Bulgaria strategic partnership and the imperative for closer bilateral cooperation to de-risk and diversify in an increasingly volatile world. In a social media post, he said they discussed deepening collaboration in trade and investment, pharma, semiconductors, AI, space, defense, mobility, tourism and creative entertainment industry. The External Affairs Minister will visit Finland today to attend the 14th edition of the Kultaranta talks. And that is the end of this news bulletin.
4: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर 6:10 हुए हैं आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना

गीता में भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही है, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। इसलिए आज अपने दिन की शुरुआत किसी भी नकारात्मक विचार से नहीं, बल्कि ईश्वर के चरणों में पूर्ण विश्वास और समर्थन के साथ कीजिए।

जिस मन में ईश्वर का वास है उसके जीवन में कभी अंधेरा हो ही नहीं सकता। उसकी कृपा पर भरोसा रखिए और आज के दिन के लिए निकल पड़िए।

रिश्ता चाहे इंसानों से हो या फिर ईश्वर से, बस एक ही शर्त है, निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुति चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। हम अपने सुनने वालों को बता दें, आज दिन में 11:10 पर स्वरांजलि कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। सीधे प्रसारित इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे शशांक शेखर के गाई कुछ गजल। एक बार फिर सुन लीजिए, 11:10 पर कार्यक्रम स्वरांजलि, इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा हमारे स्टूडियो से। कलाकार होंगे शशांक शेखर, इसमें हम इनकी गाई कुछ गजलें सुनवाएंगे। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। 6:40 हुए हैं चिंतन कार्यक्रम में, आइए सुनते हैं रहीम के विचार।
1: शुभ प्रभात। आज के चिंतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे लघु वार्ता रहीम के विचार। आलेख है डॉक्टर विजयानंद का और वाचन स्वर नीलम मलकानिया का।
2: अब्दुल रहीम खां खानखाना उर्फ रहीम भक्ति काल के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। उनके काव्य में समाहित भाव पूरे मानवीय जगत को प्रेम, भाईचारे और भक्ति की रीति नीति का बड़ा संदेश देते हैं। उनका मानना था कि सबको सलाम और राम राम तो कीजिए, पर मित्र उसे ही मानिए जो वक्त पर साथ निभाता हो। रहीमन धोखे भाव से मुख से निकसे राम, पावत पूरन परम गति कामाधिक कौधाम। अर्थात यदि कभी धोखे से भी भावपूर्वक मुख से राम का नाम लिया जाए

0: कल्याण हो जाता है, भले ही वो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, पाप आदि से ग्रस्त क्यों न हो। राम के नाम में इनसे बचाव खुद ब खुद हो जाता है। राम की व्यथा और कथा सुनने के बाद व्यक्ति में सारे अवगुणों की जगह बचती ही नहीं। मुनि नारी पासान ही कपि पशु गुहु मातंग, तीनों तारे राम जो तीनों मेरे अंग। जब अहिल्या, पशुवत वानर सेना और आदिवासी पदराज सब राम की कृपा से कल्याण के सत्य पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, फिर भूलवश अहंकार और निजता का भाव तो बहुत छोटी सी बात है। राम नाम जान्या नहीं भई पूजा में हानि, कही रहीम क्यों मानी है जम के किंकर कानी। राम के बारे में पूरी तरह जान लेने के बाद तो जीवन चेतना के दीक्ष में प्रवेश कर जाता है, जहां अंधेरे में भी रोशनी के दर्शन होते हैं। राम की महिमा को जाने बगैर उनकी चर्चा व्यर्थ है। वे सच्चे मन में स्वतः उतरते हैं और उचित मार्ग के दर्शन करवाते हैं। राम नाम जान्यो नहीं जान्यो सदा उपाधि, कही रहीम तिहु आपुनो जन्म गवायो वादी। जिन लोगों ने अपने धन, पद और उपाधि को ही जाना और राम के नाम को जाना नहीं है, उनका जन्म व्यर्थ है। वे केवल वाद विवाद कर अपना जीवन नष्ट करते हैं। वे राम राम करें या सलाम करें, उनका कुछ नहीं होने वाला। सबको करे कह सलाम कह राम, हित रहीम तब जानिए जब कछु अटके काम। रहीम ने अपनी भक्ति से भारतीय जनमानस को नहीं, पूरे जीवन जगत को अपने चिंतन दर्शन से प्रभावित किया और सोच विचार कर जीवन जीने की कला सिखाई। उनका ये भी मानना था कि यदि कोई प्रियजन किसी कारण से रूठ गया हो तो उसे बार बार मनाना चाहिए। जिस तरह मूल्यवान मोतियों की माला टूटकर बिखर जाती है, तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरोकर पुनः माला का रूप मिल जाता है। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सौ बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्त हार। हालांकि वे ये भी कहते हैं कि सच्चे प्रेम के संबंध को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। कभी कभी रिश्तों में मनमुटाव हो भी जाए तो कड़वाहट नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई सच्चा रिश्ता एक बार टूट जाता है तो फिर बिना गांठ के नहीं जुड़ता। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ परी जाए।
1: चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रहीम के विचार। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस से संगीत में प्रस्तुति। आज आप सुनेंगे बालकांड भाग 83।

राजा जनक की नगरी देखने के क्रम में पुरवासियों के मन मोहते हुए श्रीराम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ नगर के पूर्व भाग में पहुंचते हैं, जहां धनुष यज्ञ की रंगभूमि की रचना की गई है। जनकपुर के बालकगण बड़े उत्साह तथा आदर के साथ दोनों भाइयों को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। श्रीराम ने अपनी मधुर मनोहर वाणी में अनुज लक्ष्मण को यज्ञ भूमि का परिचय दिया और दोनों भाई सारा

0: यह सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीत में प्रस्तुति। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदेहल्याः राष्ट्रपति भवनस्य सांस्कृतिक केन्द्रे नीति आयोगस्य एकादशे शासी परिषदोपवेशने अध्यक्षतां विधास्यति। विकसित भारताय प्रधानमन्त्रिणः टीम इंडिया इति संकल्पानुगुणम् अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारतम् @2047 इत्यस्य कृते समावेशी मानव विकासः इन्क्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत @2047 इति अस्ति। विषयोयम् आयु क्षेत्र लिंग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमिकायाः भेदं विनैव प्रत्येकं भारतीयस्य कल्याणाय विकासाय च केन्द्रीकृतो वर्तते। उपवेशने अस्मिन् अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये दृष्टिं समेत्य देशस्य प्रत्येकं नागरिकं प्रति अस्य सुदृढ़ मापन योग्य परिणामेषु

0: परिवर्तनस्य विषये गभीरं मन्थनं भविष्यति। अस्मिन् महत्वपूर्णे उपवेशने समावेशी मानव विकास प्रारूपस्य विषये चर्चां कर्तुं सर्वे मुख्यमन्त्रिणः, केन्द्रशासित प्रदेशानाम् उपराज्यपालाः च एकत्रिताः भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आश्वासितवान् यत् देशस्य 44,00,000 कोटि नागरिकाणाम् आकांक्षाः निश्चप्रचं पूरयिष्यन्ते। तेन समुदीरितं यत् राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधन दलं सदैव राष्ट्रस्य विश्वासं सुदृढं कृतवत् अस्ति। अत्रावधेयं यत् श्रीमोदी गतरात्रौ नवदेहल्याः भारत मण्डपे आयोजितं NDA सम्मेलनं संबोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा भणितं यत् देशस्य प्रत्येकमपि नागरिकः विकसित भारतस्य स्वप्नेन पूरितो वर्तते। एषः स्वप्नः इदानीं कस्यापि एकस्य व्यक्तिविशेषस्य, प्रशासनस्य वा राजनीतिकदलस्य परिधौ सीमितो नैवास्ति।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा। देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कूचक्र से आजाद हुआ है।
0: अस्मिन् अवसरे एनडीए घटक दलैः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक उपलब्धेः श्लाघनाय एकः संकल्प प्रस्तावः स्वीकृतः। एतदनन्तरं संपूर्ण विश्वतः प्रधानमन्त्रिणे अभिनन्दन सन्देशाः आगच्छन्तः सन्ति। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः, यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन, इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी देशस्य चांसलर फेडरिक मर्ज, इजराइल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू, कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कॉर्नी सहैव दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिः ली जे म्यूंग इत्यादयः प्रमुख वैश्विक नेतारः श्रीमोदिनं प्रति वर्धापनं प्रेषितवन्तः। संस्कृति मन्त्रालयेन गतवर्षस्य कृते संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराः अथ च उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्काराः घोषिताः। अकादमी संघस्य सामान्य परिषदा संगीत नृत्य रंगमंच पारंपरिक लोक जनजातीय कला वैविध्येभ्यः कलामंचं यावत् विविध क्षेत्रेभ्यः 80,00,000 प्रसिद्धाः कलाकाराः 24,00,000 अथ च 25,00,000 अकादमी पुरस्कारार्थं चिताः। एते चिताः पुरस्कार विजेतारः अशेषस्य हि देशस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। ये विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च सम्बद्धाः सन्ति। बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धायाः महिलानां वर्गे पीवी सिंधु, तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य द्वितीय चक्रं प्रति प्रविष्टवत्यौ। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों

0: ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई भी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुल्ता रांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल चेयर द 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग एट राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर इन न्यू दिल्ली टुडे इन लाइन विद द प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ टीम इंडिया फॉर अ विकसित भारत। दिस ईयर्स थीम इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत एट 2047 फोकसेस ऑन द वेलबींग एंड डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंडियन रिगार्डलेस ऑफ एज रीजन जेंडर और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. This Governing Council meeting will bring together chief ministers and lieutenant governors to discuss the inclusive human development framework. Prime Minister Narendra Modi has said aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled. He said that National Democratic Alliance NDA has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday evening. He said the people of the country

संगीतिका कार्यक्रम में आप सुन रखी हैं पुष्पा रानी मित्रा के गाए भजन। आइए अब सुनते हैं कबीर दास की ये रचना।

माही मैंने गोविंद लीनो बोल। आइए अब सुनते हैं मीराबाई की रचना। स्वर पुष्पा रानी मित्रा का है।

माही, मैंने कोविंद लीनो मोल। अभी आपने मीराबाई की लिखी पारंपरिक रचना सुनी। संगीतिका कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे थे पुष्पा रानी मित्रा के गाए कुछ भजन। आपके साथ संगत कर रहे थे बांसुरी पर प्रमोद प्रसन्ना, हारमोनियम पर जाकिर धौलपुरी, तबले पर प्रदीप्ता और सितार पर अकील अहमद। इसके साथ ही संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी के लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग लेकर आ गई हूं मैं, आपकी होस्ट और दोस्त कुसुम। सुप्रभात, खम्मा घड़ी, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। आपके अपने पसंदीदा रेडियो प्रोग्राम यानी कि गुड मॉर्निंग गीतों भरी। दोस्तों, जहाँ शब्द समाप्त होता है वहाँ संगीत शुरू होता है। कुछ मीठी चुनी हुई और बेहतरीन गीतों के साथ आज का हमारा यह खास सफर संगीत के नाम।

आने वाला पल जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कितना सुंदर और गहरा संदेश देता है ये गीत। सचमुच समय कभी रुकता नहीं, हर पल हमारे जीवन में कुछ नया सिखाकर आगे बढ़ जाता है। इसलिए हर क्षण को खुशी, प्रेम और सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए दोस्तों। बीते हुए कल की चिंता और आने वाले कल की फिक्र में आज की खूबसूरती को खो देना समझदारी नहीं। जो पल हमारे पास अभी है वही सबसे अनमोल है और बहुत ही खूबसूरत है। तो आइए इस नई सुबह का स्वागत मुस्कुराहट के साथ करें, अपनी सपनों को नई उड़ान दें, जीवन के हर पल का भरपूर आनंद लें और सुनते रहें गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

जी हाँ दोस्तों, संगीत के साथ पूरा दिन खिल उठता है। आज के सफ़र का आपने जो ये गीत सुना, उम्मीद है आपको तरोताज़ा कर गया होगा। और ये जो संगीत का जादू होता है ना दोस्तों, ये हर पल को खास बना देता है। जब हम खुश होते हैं तो गीत गाते हैं, और जब हम उदास होते हैं तो भी संगीत ही हमें सुकून देता है, हमें ताजगी प्रदान करता है और हमारे गमों को भुला

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग हूँ और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त कुसुम। बहुत ही प्यारे गीत और नगमे लेकर मैं आई हूँ आपके लिए। दोस्तों हम बात कर रहे हैं संगीत की। संगीत हमारे जीवन में खुशियों की तरह है। चाहे घर का काम कर रहे हों, सफ़र पे हों या कोई और घर के काम कर रहे हों, अगर साथ में संगीत बज रहा हो हमारा मन पसंद, तो वो काम करने में और सुकून आता है और हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारा काम यूं चुटकियों में हो जाता है। जी हाँ, यही संगीत का जादू है। हर नई सुबह एक नई शुरुआत है दोस्तों। जो बीत गया वो कल था और आज की सुबह एक नई किताब है। तो इस नई सुबह को, इस नई किताब को ऐसा लिखें जो आप बाद में जब पढ़ें तो आपको बहुत खुशी हो। और संगीत के साथ साथ हम बहुत कुछ और यादें संजो सकते हैं, बहुत सारी यादें समेट सकते हैं और बहुत सारी बातें भी कर सकते हैं, क्योंकि संगीत में जादू ही ऐसा होता है। संगीत हमें हमारे मन को सुकून देता है। संगीत ऐसा है कि हम जो हमारा जो संगीत मनपसंद संगीत होता है उसको यदि हम सुनते हैं तो हमारे कार्य करने की क्षमता और बढ़ जाती है। तो आइए इसी सफ़र को जारी रखते हैं और सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संगीत की। कहते हैं कि कभी मैं कोई तान छेड़ूं, कभी तुम गुनगुनाओ, ये जीवन संगीत बस यूं ही चलता रहे। संगीत में किसी को गाने का हुनर मिलता है, तो किसी को सुनने का हुनर, दोनों ही भगवान की देन है।

जी हाँ दोस्तों, संगीत जब साथ में होता है तो हम अपनी ही धुन में होते हैं। हर सुर अपने अंदर एक एहसास लेकर आता है जो हर किसी के दिल में अलग तरह से बस जाता है। संगीत वही है जो खामोशी में भी कुछ कह जाता है।

दोस्तों, हर खूबसूरत गीत की तरह इस शो का वक्त भी अब पूरा होने जा रहा है, लेकिन संगीत का ये सफ़र कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ और मुस्कान लेकर आए। अच्छे संगीत को सुनते रहिए हमेशा और मुस्कुराते रहिए। जाते जाते आपके लिए एक बहुत ही प्यारा और सुकून भरा ये नगमा छोड़े जाती हूँ, अलविदा कहना चाहती हूँ। आप खुश रहिए और आपका आज का दिन खुशनुमा हो।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीतों पर गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 8 बजने को है, कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है

0: विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
1: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरेखित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
4: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने

0: जो किया है वो हमारा फैमिली पांच है, जो हमको 5 5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
1: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
2: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
5: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
3: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमूज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट

0: 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
1: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्ता ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1000 रुपये तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने एनटीए ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमेरिका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में पीओके की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने पीओके में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का पीओके में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी आईटीबीपी। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार, 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खान पान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to chair 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi today. Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. A report from our correspondent.
4: measures for promoting entrepreneurship, enhancing skilling and creating sustainable employment opportunities across the country will also be

0: Konkan, Goa, Tamil Nadu and northeast India. Thunderstorms are also likely to occur today over Bihar, Chhattisgarh, Gangetic West Bengal, Jharkhand, Odisha and Uttarakhand. And now for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
1: Thank you, Shagun. All the dailies lead with PM Modi becoming the longest serving elected prime minister and congratulatory wishes pouring in from around the world for this historic milestone in the journeys of Indian democracy. Modi 12.0, One Vision, Nation First. In a document titled Nation First, the core mantra issued to mark 12 years of the current government. The centre emphasised its vision of Rashtra Pratham and asserted that it is no longer just the sentiment, but the lifeblood of India leads the pioneer. For the first time in its dealings with the Trump administration, India summoned a top US diplomat in New Delhi following an attack earlier in the day by American forces on a commercial ship off the coast of Oman, cites the Indian Express under the headline, Three Indians Missing After Attack, Delhi Summons US Diplomat. Army Chief General Upendra Dwivedi reviews the operational readiness of troops, reports the Asian Age, announcing the first built-to-suit data center capacity in India for Meta, the Financial Express mentions. Reliance Meta deepened ties with AI data center deal. Pact highlights new infra model for AI build-out. The Times of India in its editorial piece titled Control Shift, AI is not destroying the job market but changing it. There will be jobs aplenty if you update your skills. In white-collar circle, this is the best of times. And finally, human contribution to global warming highest ever in 2025, says an annual study called Indicators of Global Climate Change. The findings are a further reminder to the rapidly rising global temperatures, writes the Indian Express. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to chair 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi today. Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि एनडीए सरकार के गुज़श्ता 12 साल के दौरान 25 करोड़ से ज़्यादा अफराद को गुरबत से बाहर लाए जाने से ये जाहिर होता है कि सरकार की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और वो सही सम्त में आगे बढ़ रही है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मगरबी बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपये मालियत की सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने का इरादा रखता है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाल मशिक, मगरबी बंगाल, ज़ेली हिमालयी खित्ते, उड़ीसा, केरला और माहे में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मगरबी एशिया में कशीदगी में फिर से इजाफा हो गया है। अमरीकी फ़ौज ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी की सताइश की है और ओलंपिक खेलों के लिए बड़े निशाने तय करने पर जोर दिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। विकसित भारत के लिए टीम इंडिया के वज़ीर आज़म के नज़रिए के ऐन मुताबिक इस साल के मौजू विकसित भारत 2047 के लिए जामे इंसानी तरक्की में उम्र, खित्ते, सिन्फ या समाजी और माशी पस मंज़र के कतई नज़र हर भारतीय की बहबूद और तरक्की पर तवज्जो मरकूज की गई है। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में

0: आज की इस मीटिंग में पूरे मुल्क में कारोबार को फ़रोग देने, हुनरमंदी की वसत और रोज़गार के पायदार मौके पैदा करने के इकदामात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा अमल दरआमद से मुतालिक खाका इज्तिमाई तौर पर तैयार करने पर भी तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिसमें हुक्मरानी, डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे, साझेदारी, डेटा पर मबनी निज़ाम, नेज मुख्तसर दरमियाने और तवील मुद्दती नतीजों पर नज़र रखने का एक मुनज़्ज़म तरीक़ा कार शामिल होगा। इस तरह जवाबदेही और नुमाया असरात को यकीनी बनाया जा सकेगा। इसके साथ साथ जामे इंसानी फरोग के ताल्लुक से कौमी नज़रिए के साथ रियासतों के नज़रियात को हम आहंग करने पर भी खास जोर दिया जाएगा, ताकि मसावियाना और ठोस तरक्की की समत मुत्तहदा और इज्तमाई हिकमत अमली को तकवियत मिल सके। नीति आयोग की गवर्नेंस काउंसिल चीफ सेक्रेटरियों की 5वीं कौमी कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात पर भी तवज्जो मरकूज करेगी, जो पिछले साल दिसंबर के अवाखिर में हुई थी। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के 140 करोड़ शहरियों की उमंगें यकीनन पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने हमेशा मुल्क के भरोसे को तकबीयत बख्शी है। जनाब मोदी कल शाम नई दिल्ली में वाक़ भारत मंडपम में एनडीए कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2014 में उभरती हुई उम्मीद की किरण आज एक नए एतमाद की किरण में तब्दील हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मुल्क के लोगों ने पहली बार इसका मुशाहिदा किया है कि जब हुकूमत सही नीयत के साथ चलाई जाती है तो तरक्की भी तेज़ रफ्तार से होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एनडीए हुकूमत के 12 साल के दौरान 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी से बाहर लाया गया है, जिससे ये जाहिर होता है कि हुकूमत की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और ये सही समत में गामजन हैं।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: अपने खिताब में जनाब मोदी ने कहा कि ऐसे वक्त में कि जब दुनिया भर के बड़े ममालिक इक्तिसादी मसाइल से दोचार हैं, भारत ने साल 2025-26 में 7.7% की शरह तरक्की हासिल की। उन्होंने कहा कि मुल्क 5 कमजोर मईशतों के जुमरे से निकल चुका है और अब दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से तरक्की करने वाली मईशतों में से एक बन चुका है।
2: आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए भारत को अब ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल कंपटीशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना है। दुनिया भारत से सॉल्यूशन चाहती है, दुनिया भारत में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतर कर दिखाना है।
1: ऐसे भारत का सफर है जिसने बड़े अहदाफ मुकर्रर करके और आलमी अदम इस्तेहकाम के हालात में भी इन अहदाफ को हासिल करने की अनथक कोशिश करके पहली बार अपनी मुकम्मल सलाहियतों को बरूए कार लाना शुरू किया। कल कौमी जमहूरी इतिहाद ने एक करारदाद मंजूर की, जिसमें मुल्क के सबसे तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले मुंतखब वज़ीर आज़म बनने पर जनाब मोदी की तारीफ की गई है। बीजेपी के सदर नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली में एनडीए के कॉन्क्लेव में 35 सियासी पार्टियों के 75 मंदूबीन ने शिरकत की। नामानिगारों से बात करते हुए जनाब नवीन ने कहा कि एनडीए के रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत के तई तशक्कुर का इजहार किया और तारीखी संगे मील पर उन्हें मुबारकबाद दी और इसे मुल्क के 140 करोड़ लोगों के लिए फ़ख्र का लम्हा करार दिया। जनाब नितिन नवीन ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत विकसित भारत के नज़रिए की समत आगे बढ़ रहा है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के वज़ीर आज़म के रहनुमाई वाले मंत्र से मुल्क भर में लोग बाहम मुंसलिक हुए हैं। भारत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के वसूलों से तहरीक पाकर ज़बरदस्त तब्दीली रूनुमा हुई। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के उन्वान से एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम गरीबों की बहबूद

0: के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं।
1: गुज़श्ता 12 साल के दौरान नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गरीबों की बहबूद और समाजी तहफ़ को मुस्तहकम करने के लिए कई अहम स्कीमें नाफिज की हैं। गरीबों को मकानात मुहैया करने पर मोदी हुकूमत ने खास तवज्जो दी है। खुराक की यकीनी फराहमी के शोबे में हुकूमत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुल्क भर में 81 करोड़ से ज़्यादा मुस्तफिदीन को मुफ्त अनाज फराहम कर रही है। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए उड़ीसा के कालाहांडी की इंद्रामानी नायक ने बताया कि गरीब लोग इस स्कीम से इस्तेफादा कर रहे हैं।
2: गरीब कल्याण अन्न योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं। अभी जो 5-5 किलो हमारा परिवार खूब खुश पूरा बहुत आराम से रह रहे हैं।
1: हिफ्ज़ान सेहत से मुतालिक दुनिया की सबसे बड़ी अवामी स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इक्तिसादी तौर पर कमज़ोर कुनबों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज फराहम कर रही है। साथ ही जन औषधि केंद्रों से जेनरिक दवाएं कम कीमतों पर मुहैया की कराई जा रही हैं। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के बारामूला के फैयाज़ अहमद ने बताया कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत गरीबों को मुश्किल तरीन हालात के दौरान इलाज हासिल करने में सहूलत फराहम की जा रही है।
3: मैं NDA सरकार और मोदी जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत सारी जो स्कीमें चलाई, जिसमें मुल्क के अंदर हिस्ट्री में पहली बार एक गरीब को सीधा बरह रास्त फायदा पहुंचा डिजिटलाइजेशन के जरिए। आयुष्मान भारत की बात करना चाहूंगा, मोदी जी की सरकार से पहले मुल्क में यह होता था, अचानक किसी की बीमारी का पता चलता था या बीमारी के टाइम जो ऑपरेशन सर्जरीज करनी होती थी उन्हें या तो जमीन बेचनी पड़ती थी या घर की कोई कीमती शय बेच कर वो चीज़ों का पैसे का बंदोबस्त करके ऑपरेशन और बाकी चीज़ें कराने पड़ते थे। लेकिन जब से आयुष्मान भारत का स्कीम को मोदी जी ने लॉन्च करा है, तब से ये चीज़ पूरे मुल्क में नहीं है।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ 55 लाख से ज्यादा खवातीन को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन फराहम किए जा रहे हैं। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC अपनी मेंबर कंपनियों के जरिए मगरबी बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने का इरादा रखता है, जिससे रियासत की इक्तिसादी सलाहियत और तरक्की के इम्कानात में सनतों के बढ़ते हुए एतमाद की अक्कासी होती है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ब्रिजभूषण अग्रवाल की ज़ेर क़यादत सनती इदारे के एक वफद और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह के दरमियान नई दिल्ली में मीटिंग के दौरान इस तजवीज़ पर तबादले ख्याल किया गया। मज़कूरा ऐवानी तजारत ने कहा है कि मगरबी बंगाल में पुरउम्मीदी और मुस्बत रफ्तार का नया माहौल देखने में आ रहा है, जिससे माशी तरक्की की रफ्तार तेज़ करने में मदद मिल सकती है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी की सताइश की और ओलंपिक्स खेल के बड़े मकासद मुतय्यन करने पर जोर दिया है। कल नई दिल्ली में मुनाकिदा NDA कॉन्क्लेव में इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने नौजवान एथलीट्स की हुसूलियाबियों और भारत में खेलों की तेज रफ्तार तरक्की को उजागर किया।
4: भारत दुनिया की बिगेस्ट स्पोर्ट लीग की धरती बनता जा रहा है। आने वाले सालों में हमारी ये खाती और बुलंद होगी। ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियां भी भारत की एस्पिरेशन का ही प्रतिबिंब है। हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें लक्ष्य ऊंचे रखने हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है।
0: अमरीकी फौज ने कल ईरान में कई ठिकानों पर फिर से हमले किए। अमरीकी फौज ने कहा है कि ईरान की लगातार जारहियत के तनाजुर में जवाबी कार्रवाई करते हुए ये हमले किए गए हैं। लड़ाई ख़त्म कराने के लिए मुजाकरात बहाल करने की कोशिशों के बावजूद मगरबी एशिया में फिर से कशीदगी बढ़ गई है। बहरैन, कुवैत और उर्दन में जहां अमरीकी फौजी मुतय्यन हैं, ईरान के हमलों के चंद घंटों बाद ये अमरीकी हमले हुए। ईरान के मीडिया ने मुल्क के जुनूब में बंदर अब्बास, सिरिक, मिनाब और किशम जजीरे में धमाके होने की इत्तिला दी है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह तंबीह की है कि ईरान को तातुल का शिकार मुज़ाकरात की कीमत चुकाना होगी, जबकि अक़्वाम मुत्तहिदा में ईरान के नुमाइंदे ने कहा है कि ईरान धमकियों और दबाव में आकर बातचीत नहीं करेगा। इधर ईरान के पासदारान इनकलाब ने तेल टैंकरों और कमर्शियल बहरी जहाजों समेत हर तरह के जहाजों के लिए आबनाए हुरमुज के बंद होने का दावा किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, केरला, माहे, उड़ीसा, मगरबी बंगाल के ज़ेली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में बाज़ मकामात पर आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने और ओले गिरने का इम्कान है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तवील तरीन मुद्दत तक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि यह भारत की तारीख में एक अहम संगे मील है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू समेत मुतादिद ममालिक के सरकर्दा रहनुमाओं ने वजीर आजम को मुबारकबाद दी है। रोजनामा प्रताप ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस बयान को सफ़े अव्वल पर नुमाया किया है कि ज़मीनी सतह पर कवानीन और पॉलिसियों का नफाज ही अच्छी हुक्मरानी की कलीद है। उन्होंने सिविल सर्विस में खवातीन की बढ़ती हुई नुमाइंदगी की भी सताइश की।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि एनडीए सरकार के गुज़श्ता 12 साल के दौरान 25 करोड़ से ज्यादा अफराद को गुर्बत से बाहर लाए जाने से ये जाहिर होता है कि सरकार की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और वो सही सम्त में आगे बढ़ रही है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मगरबी बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने का इरादा रखता है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाल मशिक, मगरबी बंगाल के ज़ेली हिमालयी खित्ते, उड़ीसा, केरला और माही में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मगरबी एशिया में कशीदगी में फिर से इजाफा हो गया है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी की सताइश की है और ओलंपिक खेलों के लिए बड़े निशाने तय करने पर जोर दिया है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।

अब आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रही हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर 8:45 हुए हैं। ये वक्त है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा का। आइए इसमें सुनते हैं राग जौनपुरी। कलाकार हैं उस्ताद जावेद अली खान। आपके साथ संगत कर रहे हैं हारमोनियम पर ज़हीर अहमद और तबले पर अख्तर हसन।

0: अभी आप सुन रहे थे राग जौनपुरी, कलाकार थे उस्ताद जावेद अली खां। आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे हारमोनियम पर ज़हीर अहमद और तबले पर अख्तर हुसैन। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं उद्योग पत्रिका।
1: उद्योग पत्रिका।
2: साथियों नमस्कार। कहा जाता है कि प्रबंधन किसी भी व्यवस्था या संस्था को संचालित करने की एक सफलता की कुंजी है। प्रबंधन किसी भी संस्था, संगठन या कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने की कला और विज्ञान है। ये केवल संसाधनों का उपयोग करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उपलब्ध मानव, वित्तीय और भौतिक संसाधनों के सर्वोत्तम समन्वय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया भी है। आज के प्रतिस्पर्धी और तेजी से बदलते परिवेश में प्रभावी प्रबंधन की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आज इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया प्रोफेसर हेमेंद्र डांगी जी को। आप प्रबंधन विशेषज्ञ हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार।
3: धन्यवाद सर।
2: हेमेंद्र जी, ये प्रबंधन से हम क्या समझे, किस प्रकार का प्रबंधन? एक आर्थिक प्रबंधन भी है, सामाजिक प्रबंधन भी हो सकता है, वित्तीय प्रबंधन जिसे कहते हैं, और एक संस्था ये प्रबंधन भी हो सकता है। हम किस रूप में आप इसे परिभाषित करेंगे, कहाँ कहाँ इसकी आवश्यकता ज्यादा पड़ती है?
3: प्रबंधन एक ऐसा चीज है जिसको लोग, कुछ लोग जो है इसको एक करिकुलम के तरीके से देखते हैं, एक विषय के तौर पे देखते हैं, पर मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में प्रबंधन कर रहा होता है, चाहे वो उसने फॉर्मल एजुकेशन नहीं भी ली हो या चाहे उसने फॉर्मल एजुकेशन ली हो, चाहे उसने बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री ली हो, पर हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रबंधन कर रहा है। आपने बिल्कुल ही सही कहा कि प्रबंधन का जो बात है वो जीवन के हर पहलू पे है, चाहे समय का प्रबंधन करना हो, चाहे वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करना हो, चाहे बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को प्रबंधन करना हो, या एक जीवन का अपने आप में एक प्रबंधन का स्थान है सर।
2: लेकिन हेमेंद्र जी, आजकल के दौर में, आज इस भागम भाग जिंदगी में और सबको आगे और आगे निकल जाने की दौड़ लगी हुई है, इस दौर में सबको यही चाहता है कि मुझे कुछ ज्यादा से ज्यादा मिले। तो इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि जो वित्तीय प्रबंधन है वो ज्यादा से ज्यादा गेन करने की होती है, इसे आप किस प्रकार देखेंगे?
3: वित्तीय प्रबंधन ज्यादा से ज्यादा गेन करने का तो है ही, पर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है

0: कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पास है, क्योंकि रिसोर्सेज आपके पास हमेशा सीमित होते हैं, तो उनको किस तरह से उपयोग किया जाए कि उनसे जो हमें रिटर्न मिल सके, उनका उपयोग कर सके, वो मैक्सिमम तरीके से कर सके, शायद वित्तीय प्रबंधन में भी यही मूल मंत्र है। देखिए, प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि प्रबंधन का जो कॉन्सेप्ट है या प्रबंधन का जो विचार है, वो आया था कि जब किसी चीज की कमी हो तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। जैसे पैसे की कमी है, समय की कमी है, तो एक पहलू यह है कि जब संसाधन ज्यादा हो तो मैनेज कैसे किया जाए, एक संसाधन कम हो तो कैसे मैनेज किया जाए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये सिचुएशन है। समय की कमी है तो आप प्रबंधन करोगे, आपके पास वित्त की कमी है तो प्रबंधन करोगे, पर एट द सेम टाइम इसी तरह से इंफॉर्मेशन की अबंडेंस है। आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम इन्फोमेटिक्स में रह रहे हैं, हम जो है हर तरफ से सूचनाओं से घिरे हुए हैं। आज का जो युवा है उसके पास इतनी सूचनाएं अवेलेबल है, हम सबके पास इतनी सूचना अवेलेबल है, मेन स्ट्रीम मीडिया आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, आसपास के सिस्टम से, अब आपके पास जो प्रबंधन करना पड़ रहा है वो अबंडेंस का मैनेजमेंट करना पड़ रहा है।
1: जी
0: तो वित्तीय का जो आपने प्रश्न पूछा, उसमें हम जनरली स्केयरसिटी मैनेजमेंट करते हैं कि जहां रिसोर्सेस की कमी है उनको हम मैनेज करने की बात करते
1: तो
0: हैं।
1: एक अच्छे प्रबंधक को, एक अच्छे मैनेजर को उसमें किस प्रकार के गुण होने चाहिए?
0: एक अच्छे प्रबंधक और एक अच्छे मैनेजर को मेरे ख्याल से कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम जरूर एक बिजनेस स्कूल में भी ट्रेंड करते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं। उसमें एक तो ये होता है कि एक अच्छे मैनेजर को, एक अच्छे लीडर को, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर को, उद्यमी को, सबसे बड़ी बात है कि वो इनोवेटिव, नई सोच विकसित करे, लीक से हटके करे।
1: लेकिन कई बार ये भी तो होता है कि नई सोच हमने विकसित तो कर ली, लेकिन उसको आगे ले जाने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए उसके पास संसाधन नहीं होते हैं, उसे किस प्रकार से मैनेज करें?
0: बहुत ही अच्छी बात है आपने कही, और वही चीज जो है आप देखेंगे कि अभी जो प्रेजेंट परिस्थितियां हैं उसमें इस पे लेके ही ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। पहले बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छा उम्दा आइडिया देते थे, पर इकोसिस्टम नहीं होने की वजह से वो आइडिया कभी ग्रो ही नहीं कर पाता था, वो व्यक्ति रिस्क नहीं ले पाता था। अब सरकार का भी ये एक मूवमेंट चल रहा है, स्टार्टअप इंडिया जैसे
1: जी
0: है, या एक हर विश्वविद्यालय में, हर कॉलेज में आजकल स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक सेल बनाई जाती है, इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाते हैं। तो उसमें अगर कोई व्यक्ति के पास विचार है, अगर आइडिया है, तो वो संसाधनों की कमी की वजह से पीछे ना रह जाए, इसके लिए एक इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। अब ये इकोसिस्टम रातों रात तो नहीं बन सकता है, अब इसमें एक कल्चरल शिफ्ट आ रहा है। जैसे बड़े बड़े संस्थान है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, IIT IIMs है, इनमें तो ये बड़ा एस्टेब्लिश हो चुका है कि भाई इनमें इकोसिस्टम में आप जो है एक इनोवेशन सेल्स बनाइए, एंटरप्रेन्योरशिप सेल बनाइए, बच्चों को स्टार्टअप का मौका दीजिए। और अब Tier 2 Tier 3 सिटीज में, छोटे विश्वविद्यालयों में, इनमें भी एक कल्चर आ रहा है, और मैं पूरा उम्मीद कर रहा हूं कि ये कल्चर जो है जब थोड़े समय बाद पूरे भारत लेवल पर आएगा, तो आपका जो ये बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है कि आइडिया बहुत अच्छा है, अगर बीज बहुत अच्छा है, पर उसको आसपास पानी, खाद, बिजली, प्रकाश ये ना मिले, तो कैसे वो ग्रो करेगा। तो ये काम इकोसिस्टम अब विश्वविद्यालय कर रहे हैं, कॉलेजेस कर रहे हैं, इन्वेस्टर कर रहे हैं, और सरकार कर रही है।
1: हेमेंद्र जी, यहाँ पर जब इकोसिस्टम की बात आती है तो हम इसे कई बार कैटेगराइज कर लेते हैं, कैटेगराइज करते हैं इन द सेंस कि हम लोकलाइज कर लेते हैं। शहर की बात अलग होती है, गाँव की बात अलग होती है, और गाँव में भी गाँव की बात, यानी कि जो बिल्कुल रिमोट एरिया है वहां पर हम कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, आइडिया है, अच्छे विचार है, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है, तो इसे किस प्रकार मैनेज किया जाए?
0: ये आपने बहुत ही एक पर्टिनेंट बात बोली है कि गांवों की समस्याएं अलग है, शहरों की समस्याएं अलग है, और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अलग समस्याएं हैं। पर जब ये उद्यमिता का आइडिया आया या एंटरप्रेन्योरशिप का जो आइडिया आया, तो पहले हमने कुछ समय तक ये देखा कि ज्यादातर लोग जो है जो ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक लेवल पर जो समस्याएं हैं और उनका जो समाधान निकला, जैसे ये टैक्सी की एग्रीगेटर्स का आइडिया आया या जहां आया, तो हमने वहां के कॉन्टेक्स्ट में जो आइडिया डेवलप हुआ उसी को हमने यहां पर भी कॉपी करने की कोशिश करी। पर आपने ये बताया कि गांवों की समस्याएं अलग है, एक किसान की समस्या अलग है, गांव के युवा की समस्याएं अलग है, तो उनके लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव है। पर अब समस्या मेन क्या है कि उनकी अवेयरनेस, जिस इंटेंट के साथ ये कैंपेन चलाए जा रहे हैं, अगर इसकी अवेयरनेस को अगर ठीक किया जाए तो संसाधनों की कोई कमी नहीं है। अगर किसी के पास अच्छा आइडिया है तो आज का तो सोशल मीडिया का जमाना है, वो अपना आइडिया सोशल मीडिया पर लगाए, वो अपना आइडिया कहीं डिस्कस करे, फोरम पर डिस्कस करे, और उसके आइडिया में मेरिट है, तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे सक्सेस स्टोरी आपको मिल जाएगी कि कहीं गांव से कोई आइडिया निकला, किसी ने उसको आइडेंटिफाई किया और उसको फंडिंग की गई, और वो आर डूइंग ग्रेट।
1: हर कोई चाहता है कि उसका जो फाइनेंशियल ग्रोथ हो वो बढ़े, और इसके लिए वो खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है। साथ में सरकार भी कहती है कि आप एक जॉब क्रिएटर बने, जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने, लेकिन इसमें आगे चलकर भी कई सारी परेशानियां होती हैं, तो इसको किस प्रकार से इसको मैनेज किया जाए?
0: जॉब क्रिएटर की जो बात है वो बिल्कुल ही सही है, है क्योंकि हमारी एक

0: इकोनॉमी में, और स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत होंगे, और अगर विकसित भारत बनना है तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक इकोनॉमी में एक अच्छा खासा बैलेंस बना रहे, और उस बैलेंस को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाएगी कि हम जॉब क्रिएटर कैसे बने। अब जॉब क्रिएटर में जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आइडिया को लेके स्टार्टअप शुरू कर देते हैं, बिजनेस शुरू कर देते हैं, स्टार्टिंग में कुछ समस्याएं आती हैं, उससे घबरा के वो अपना आइडिया बंद कर देते हैं या बिजनेस बंद कर देते हैं या शिफ्ट हो जाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स भी बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप का जो फेलियर रेट है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत हाई है। पर इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी जब नई शुरुआत करते हैं, और स्पेशली युवा के अंदर वो शक्ति है, भारत के अंदर वो शक्ति है कि वो हमारी लोकल समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर अगर कोई भी आइडिया थोड़ा सा भी हिट कर गया, क्लिक कर गया, तो मार्केट इतना बड़ा है कि जो हम कहते हैं ना यूनिकॉर्न बनना, वो तो अगर कोई बन गया आइडिया तो शेयर मार्केट इंडिया में इतना है कि वो यूनिकॉर्न बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा एक्सप्लोर करने की जरूरत है, थोड़ा ये समझने की जरूरत है कि कोई भी आइडिया अगर आपने कंसेप्चुलाइज किया और उसको आप अगर समय देना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा धैर्य की जरूरत है। तो धैर्य अगर आप रखेंगे, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, और अगर आप संसाधनों का सही से उपयोग करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा जो ये स्टार्टअप फेलियर रेट है ये कम हो सकता है, सक्सेस रेट बढ़ सकता है, और सही मायने में जॉब क्रिएटर बन सकते हैं।
1: जी हेमेंद्र जी, आज डिजिटल युग है, तकनीकी युग है, इनोवेशन का युग है, तो इसमें जो प्रबंधन की जो कार्यशैली है, स्टाइल है, काम करने की जो शैली है, वो किस प्रकार से आज का जो डिजिटल युग है वो प्रभावित कर रहा है?
0: AI को लेके एक बहुत बड़ा कंसर्न आजकल आ रहा है, और प्रबंधन में आपने बिल्कुल कहा कि जो काम पहले चार लोग करते थे, जो काम रूटीन रिपीटेटिव होते थे, वो रूटीन रिपीटेटिव काम जो है वो मैनेजमेंट में जो हम सिखाते थे, ट्रेन करते थे, वो काफी हद तक अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
1: तो इसका मतलब हम ये समझे कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जब जगह ले रही है तो कुछ काम आसान हो गया, आपको ऐसा नहीं लगता है?
0: कुछ काम बहुत आसान हो गया है, पर इसके प्रति जो एक ये नेगेटिव माइंडसेट बन गया है कि ये जॉब ले लेगा, मुझे लगता है कि ये ओवरस्टेटेड है, इसकी जरूरत नहीं है। जब कंप्यूटराइजेशन आया तब भी एक डर था। हाँ, ये जरूर है कि AI का मोमेंटम स्पेक्ट्रम जो आ रहा है वो बहुत हाई है, और अब वही व्यक्ति सर्वाइव करेंगे जो AI को रिस्पॉन्सिबल तरीके से, एडवांटेजेस तरीके से यूज कर पाएंगे। आप अगर ये कहेंगे मैं समय के बदलाव के साथ, AI के साथ लिटरेट नहीं होना चाहता हूं, मैं AI के कंधे के साथ कंधा मिला के लिए तैयार नहीं हूं, तो मुझे लगता है कि आपको समस्या आएगी। पर जो अब डिफरेंशिएटर ये बन जाएगा कि मैं AI को अच्छा यूज कर पाता हूं, कोई और AI को अच्छा यूज नहीं कर पाएगा, तो मैं सर्वाइव करूंगा, उसको दिक्कत आएगी। पर ऐसा नहीं है, नए तरह के जॉब आएंगे, AI में अपने आप में जॉब आएंगे। पर इसमें मैं एक बात जरूर आपसे ये कहूंगा, हमें AI में भी ये समझने की जरूरत है, भारत जैसे देश में हमें सिर्फ AI का कंज्यूमर मार्केट नहीं बनना है, AI का यूजर मार्केट नहीं बनना है, AI के डेवलपमेंट साइड में जाने की जरूरत है। पॉइंट है कि हमें देखना है कि अब हम AI की बात कर रहे हैं तो हम AI के यूजर हैं या AI के सर्विस प्रोवाइडर हैं।
1: तो कंप्लीटली हमें AI पे डिपेंडेंट हो जाना चाहिए?
0: मुझे नहीं लगता है कि हमें AI पे डिपेंडेंट होना चाहिए या हम AI पे डिपेंडेंट कभी हो पाएंगे। एक बैलेंस है, एक रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ AI रहेगा, और वो उसका इथिकल यूज करना पड़ेगा, जिसलिए लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क आज नहीं तो कल आएंगे, जिसमें एक डिमार्केशन लाइन बनेगी कि कब AI को रिस्पॉन्सिबल यूज किया जाए और
1: जी।
0: कब ये डेंजरस हो सकता है।
1: और आज जो है सोशल मीडिया किस प्रकार से प्रबंधन को, मैनेजमेंट को प्रभावित कर रहा है?
0: सोशल मीडिया ने जो बिजनेस की रीच है, बिजनेस का कवरेज है, आइडिया की वायरलिटी है, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से उद्यमों को, बिजनेसों को फायदा किया है। आज मेरा आइडिया है, प्रोडक्ट है, मैं किसी भी सोशल मीडिया पर डाल देता हूँ, मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया का नहीं एक्सेस है, उतना मेरे पास बजट नहीं है, इतना मैं कैटर नहीं कर पाता हूँ, तो मैं आराम से सोशल मीडिया के थ्रू मार्केट की नीड को कैटर कर पा रहा हूँ। तो सोशल मीडिया एक डबल एजेड सोर्ड है, क्योंकि इससे मेरा रीच एंड कवरेज तो बढ़ गया, पर इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग इन सोशल मीडिया तो रातों रात मेरे को जो है बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है,
1: अर्श से फर्श पर आ सकते हैं।
0: अर्श से फर्श पे आ सकते हैं, पर एट द
1: जी
0: सेम टाइम ये जो रिसोर्सेज नहीं होते हैं तो ये सबसे बड़ा पावरफुल हथियार है।
1: चाहे कोई संस्था हो या फिर कोई ऐसी व्यवस्था है या कह सकते हैं कोई स्टार्टअप हो, तो उसको चलाने के लिए टीम वर्क की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इसमें टीम वर्क की क्या नेतृत्व हो सकती है, इसमें किस प्रकार से एक टीम वर्क किसी भी संस्था को, किसी भी स्टार्टअप को, किसी भी कंपनी को, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को आगे ले जाने के लिए भूमिका निभाती है?
0: टीम वर्क हर जगह जरूरी है। टीम वर्क आप देखते होंगे क्रिकेट के मैदान में भी, एक व्यक्ति के अच्छे खेलने से टीम नहीं जीत जाती है। देखिए प्लेयर्स अगर अच्छा करते हैं तो टीम अच्छा करती है,
1: जी।
0: इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉई से ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल रही, स्टार्टअप में सिर्फ एक जो इन्वेस्टर है या एक जो एंटरप्रेन्योर है जिसने फंड रेज किया है उसके करने से अच्छा नहीं चल रहा है। टीम वर्क एक नेसेसिटी है, परिवार को भी अच्छा चलाने के लिए, सारे परिवार के सदस्यों का सामूहिक प्रयास होता है, समाज को चलाने के लिए भी सामूहिक प्रयास होता है।

0: है, देश को चलाने के लिए भी सामूहिक प्रयास होता है,
1: जी
0: उसी तरह से एक बिजनेस को चलाने के लिए टीम वर्क बहुत जरूरी है।
1: हेमेंद्र डांगी जी, उसे समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट और दूसरी तरफ होता है कि रिसोर्सेस मैनेजमेंट, इन दोनों में क्या संबंध हो सकता है?
0: टाइम भी अपने आप में एक रिसोर्स है, तो रिसोर्सेज में जब हम बात करते हैं तो जनरली मेन मटेरियल, मशीन, मनी और आज के डेट में मैं कहूंगा इंफॉर्मेशन। तो हम हिस्टोरिकली ये बोलते थे कि एम्स होते हैं, मेन मटेरियल मशीन मनी, पर
1: जी
0: आज के डेट में अब इसको मुझे लगता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी में से एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है टाइम, क्योंकि सबके पास समय तो वही है, 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे मेरे पास भी। वॉट मेक्स यू सक्सेसफुल एंड वॉट मेक नॉट मी सक्सेसफुल इज द टाइम मैनेजमेंट। तो उस टाइम को जो बेहतर मैनेज कर लेता है वो इतिहास रच लेता है, और जो नहीं कर पाता है वो एक साधारण बन के रह जाता है।
1: एक देखा जाता है कि जो सार्वजनिक संस्थान है, पब्लिक सेक्टर्स हैं और प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उन दोनों में बहुत फर्क हो जाता है, ऐसा क्यों? और उसमें प्रबंधन की क्या भूमिका होती है?
0: प्रबंधन की भूमिका दोनों में सेम है, ओनली थिंग इज जो मुझे लगता है कि एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है, उस सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी को प्राइवेट में कहीं ना कहीं ज्यादा क्लियरली मॉनिटर किया जाता है एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। एक समय पे इतना नहीं मैनेज किया जा सकता है, पर अब परिस्थितियां वहां पे भी चेंज हो रही है, गवर्नेंस में इफिशिएंसी आ रही है, पर एक कल्चरल शिफ्ट होने में टाइम लगेगा, पर अब जो देख रहे हैं हम, अब वो फर्क नहीं रह गया है।
1: तो इसके क्या कारण हो सकते हैं?
0: उसका कारण यही है सर कि जो ये परिवर्तन आ रहा है, ये परिवर्तन इसीलिए आ रहा है कि अब जो है स्टेक होल्डर ज्यादा अवेयर हो गए हैं, कंज्यूमर ज्यादा अवेयर हो गए हैं, लोगों में अवेयरनेस आ गई है, अब ओवरऑल जो सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है, तो इसलिए
1: जी
0: अब पब्लिक सेक्टर भी बहुत ही अकाउंटेबल होते जा रहे हैं और होना भी चाहिए, ये एक एफिशिएंसी का पैरामीटर।
1: हमारे देश की युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है और सक्षम भी है, तो इसे प्रबंधन कौशल कैसे उनसे विकसित करवाया जा सकता है या फिर कर सकती है?
0: हमारी जो शक्ति है वो यही है कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास, हमारी शायद एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो है यूथ का जो बोलबाला है वो बहुत अच्छा है, और इस यूथ को ठीक से चैनलाइज किया जाए तो ये एक कीर्तिमान रह सकते हैं, और मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
1: प्रबंधन केवल एक सामाजिक प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि किसी भी संगठन की सफलता का आधार होता है, और प्रभावी प्रबंधन संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना यह सुनिश्चित करता है, कार्य कुशलता को बढ़ाता है और संगठन को उसके लक्ष्यों तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण मदद करता है। प्रोफेसर हेमेंद्र डांगी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने वक्त निकाला और प्रबंधन के विषय में बहुत सारे एस्पेक्ट्स को आपने छुआ, बहुत सारी बातों को आपने उजागर किया, जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद सर।
2: इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है।
3: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लेके हाजिर हाँ मैं संदीप कौर। अज के प्रोग्राम विच असीं तुहानू सुनावांगे सेहत संभाल हैपाटाइट्स का रोग करण अते इलाज। इस विषय बारे गलबात करनगे डॉक्टर नवनीत सिंह गिल। इन्हां नाल गलबात करनगे बलविंदर सिंह बराड़। इस तों इलावा असीं सुणांगे लोक गीत। दोस्तों अज अंतरराष्ट्री खेड दिवस है। खेड केवल एक मनोरंजन नहीं हुंदा, संयुक्त राष्ट्र ने इस नूं बच्चियां दे एक अधिकार वजों मानता दित्ती हुई है, क्योंकि खेडां बच्चियां दे समुच्चे विकास लई इक अहम कार्ज करदियां ने। उन्हां नूं जीवन दा पाठ सिखाउंदियां ने अते उन्हां अंदरली रचनात्मकता विच वाधा करदियां ने। उह खेड खेड विच ही मजबूत रिश्ते बनाउणे सिखण दे नाल नाल संवेदनशील भी बणदे ने। सो अज दी लोड़ तां इह है कि असीं बच्चां नूं स्क्रीन तों दूर रख के उन्हां नूं आउटडोर खेडां नाल जोड़न लई उत्साहित करिए। अजिहा करन नाल उन्हां दा सर्वपक्षी विकास होवेगा अते उह चंगे समाज दी सिरजणा विच सहाई होणगे। मित्रों बच्चां दे मानसिक विकास दे नाल नाल सारे नागरिकां दी सेहत संभाल भी जरूरी है। इसे वास्ते अज असीं तुहानूं डॉक्टर नवनीत सिंह गिल होरां नाल गलबात सुना रहे हां। सेहत संभाल हैपाटाइट्स दा रोग करण अते इलाज, इन्हां नाल गलबात करनगे बलविंदर सिंह बराड़।
1: जिवें कि असीं जानते हाँ, जिंदगी नूं सही ढंग नाल जिउण दे लई जां जिंदगी दा पूरा सुख पूरा आनंद माणन दे लई इह जरूरी है कि असीं सेहतमंद

0: सोच किन्नी है। तो हैपेटाइटिस बी या सी ऑन दी सूरत में जो पॉजिटिव आता है तो फिर आप एक एंटीबॉडी टाइटर कराई दे कि वह कितना फैल गया है, तो उसके हिसाब से इलाज संभव है। अज तो कुछ साल पहला देखा जाए तो हैपेटाइटिस सी का इलाज आए नूं काफ़ी टाइम हो गया है, कुछ लंबा इलाज हुंदा सी ते काफ़ी महंगा इलाज हुंदा सीगा, हर आदमी इनू अफोर्ड इनू नहीं कर सकता सीगा। लेकिन रिसर्च से हुई है ये आया सामने कि इहदा इलाज बहुत ही हुण सस्ता हो गया। जे मैं दसा कि इहदा इलाज जो अज तो 8-10-15 साल पहला जे 100% की जगह पर हुण 10% इहदा खर्चा रह गया है, अगे इहदा इलाज 6 महीने 1 साल तक चलता सीगा। हैपेटाइटिस सी दी मैं गल कर रहा है, हुण कुछ गोलियां आ गईं 3 तो लैके 6 महीने दवाई खा के उन्हें पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। जे आप हैपेटाइटिस बी की गल करिए, हैपेटाइटिस बी का भी इलाज संभव है, बहुत वधिया दवाइयां आ गई, इलाज इहदा थोड़ा जा लंबा चलता है 3 तो लैके 4 साल। कुछ केस दे विच कुछ इंजैक्शन भी देने पैंदे है, जिवें एंटीबॉडीज इंजैक्शन देने पैंदे है, वो डिपेंड करता है कि बीमारी नूं आपां कदों फड़िया तो उस बीमारी ने किन्ना घातक रूप अंदर लै लिया गया, उहदे हिसाब नाल इलाज हुंदा है। पर इहदा इलाज संभव है, सिर्फ लोड़ है सावधानी अते जागरूकता दी।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, तुसीं दस्सिया कि हैपेटाइटिस दा जो है इहदियां अलग अलग जो किस्मां है उहनां दा इलाज संभव है, जिवें तुसीं बी ते सी दा दस्सिया। किसी वेले लगता सी कि इहनां दा इलाज बहुत महंगा है जां संभव नहीं है, अजकल ओह सब हो गया है। किसी व्यक्ति नूं इह बीमारी होवे ही ना, इस बीमारी तो बचिया जा सके, असीं किस तरह रोकथाम कर सकदे?
0: जिवें हुणे हुणे कहा कि जानकारी अते जागरूकता बहुत ही सहायक होवेगी। सो उहदी इम्यूनाइजेशन जिवें कि अज आपां अजकल इंजैक्शन लगाउंदे हां, जिवें कि कोविड दी इम्यूनाइजेशन आई है,
1: वैक्सीन
0: जिहनूं आपां कहिंदे हां, इहदी एक वैक्सीन अवेलेबल है। अजकल बच्चे नूं पैदा हुंदे सार ही हैपेटाइटिस बी दी वैक्सीनेशन शुरू हो जाती हैगी है, तो उहनूं आपां वैक्सीन दे के उहनूं जिंदगी भर वास्ते आपां इस हैपेटाइटिस बी तों बचा सकते हैं। हैपेटाइटिस सी दी अजे तक वैक्सीनेशन नहीं आई है, हैपेटाइटिस सी दा होण तों बाद इलाज पूरी तरह संभव हो पाया है। सो हैपेटाइटिस बी दी हर सरकारी केंद्र दे विच ए जिहड़ी वैक्सीन है ए मुफ्त अवेलेबल हैगी है, इहदा आपां लाभ लै के अपने बच्चे नूं अपने आप नूं आपां इस चीज़ तों बचा सकते हैगे। जे कोई बच्चा वैक्सीन नहीं लै सकदा, जे वो कितें रह गई उहदी वैक्सीन, तो 18 साल तों पहलां कोई भी अडल्ट भी कोई भी किसी भी टाइम ते ये वैक्सीन नूं लैके इस रोग तो बचा जा सकता है।
1: मान लो 18 साल तो उत्ते हो गया तो फिर कि 18 साल तो बाद
0: 18 साल तो बाद भी वैक्सीन लग सकती हैगी है, पर 18 साल तो पहला ये बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। 18 साल तो बाद आप उन्होंने बंदा उन्होंने मरीजों को वैक्सीनेशन दें हैं जिन्हों की कि इम्यूनिटी बहुत ही लो हो जाती हैगी है, जिमें कि सारे लीवर ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट के जोड़े पेशेंट होंगे उन्होंने हैपेटाइटिस बी का इंजैक्शन दिता जाता है, जिन्हों का डायलिसिस चलता है, जिन्हों की किडनी किसी भी कारण करके फेल हो गई है, जिहड़ा कि हफ्ते में 2 या 3 बार डायलिसिस के पेशेंट ने, उन्होंने हैपेटाइटिस बी की इम्यूनाइजेशन दी जाती है। हेल्थ केयर वर्कर जिहड़े ने इस तरह जिहड़े कि ब्लड बैंक के जिहड़े काम करने वाले बंदे है, जिहड़े कि खून के नाल जिन्हों का संबंध रहिंदा है, उन्होंने वैक्सीनेशन ये दी जाती, उन्होंने हैपेटाइटिस बी या सी होने का चांसिस सब तो वध हुंदे है। इस तरह रोकथाम लई जिवें आपां अपना टूथब्रश किसी नाल शेयर ना करिए, रेजर नीडल आपां जदों शेव करदे हैं वो किसी नाल शेयर नहीं करना हैगा, जदों आपां टैटू वर्क करवा रहे हैं उदों भी जिहड़ा उपकरण उत्थे वरत्या जा रहा है उस बारे जानकारी होनी चाहिए है कि वह किसी होर व्यक्ति का तुहाडे ते तां नहीं वरत्या जा रहा, जो कन्न छदवाउण जांदे हैं उदों भी वह जिहड़ा उपकरण यूज़ किया जा रहा है उहदा ध्यान रखना किवें यूज़ कर रहा हैगा। हुण हैपेटाइटिस ए ते ई गल करिए तां खुल्लियां चीज़ां दा परहेज़ करो, जिथे खुली चीज़ मिलती हैगी है, जे तुहाडे पानी विच कोई प्रदूषण होंदा तुहानूं शक हुंदा है तां उस टाइम उस पानी दा बहिष्कार करके साफ पानी पीओ, जदों आपां ट्रैवल करो उदों पानी अपना नाल लैके जाओ। इन्हां चीज़ां दा परहेज़ करके आपां काफ़ी हद तक हैपेटाइटिस बी जां हैपेटाइटिस सी ए जां ई ते रोकथाम कर सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर नवनीत सिंह गिल जी, तुसीं अज सानूं हैपेटाइटिस बारे दस्सिया कि हैपेटाइटिस का रोग की है, इहदियां किन्नियां किस्मां ने, की लक्षण ने, इहनां दा इलाज किस तरह हो सकदा है, ते सब तो जिहड़ी मुख जिहड़ी अहम गल तुसीं दस्सी है उह है इस दी रोकथाम बारे कि जागरूकता ते सावधानी जिहड़ी है ते जानकारी इस बारे होना बहुत जरूरी है, ते सारी लाहेवंद जानकारी देण दे लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद।
0: धन्नवाद जी।
2: हुणे तुसीं डॉक्टर नवनीत सिंह गिल होरां तों सेहत संभाल हैपेटाइटिस दा रोग करन अते इलाज बारे जानकारी लै रहे सी। उन्हां नाल गलबात कर रहे सन बलविंदर सिंह बराड़। मित्रो, अज महान स्वतंत्रता संग्रामी साहित्यकार अते कवि पंडित राम कुमार बिस्मिल दा जन्म दिन है। मेनपुरी साजिश केस अते काकोरी कांड विच शामिल होण कारण केवल 30 सालां दी उम्र विच ही उन्हां नूं अंग्रेज़ हकूमत ने फांसी दी सज़ा सुना दित्ती सी। वह एक वधिया कवि अते लेखक भी सन। उन्हां द्वारा लिखियां कई कवितावां नूं बरतानवी हकूमत ने जब्त कर लिया सी। उन्हां दी मकबूलियत दा अंदाज़ा इस गल तो लाया जा सकदा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गीत उन्हां दे नाम ते बहुत मशहूर होया।

हालांकि ये गीत किसी होर बिस्मिल दी रचना है। ते आओ हुण सुनदे आं ये लोक गीत, वे में पानी भरिंदियां सजरा, जिसनू आवाज़ दित्ती है चंद्रकांता कपूर ने।

असी सुन रहे सी ए लोक गीत वे में पानी परिंदियां सजरा। हुण पेश है ए लोक गीत जुगनी जिसनू आवाज दित्ती है गुरमीत बावा ने।

ने कर गए

0: मिठी मामा मौज जवानी वाली शाद गुड़े तू मिठी आई जवानी हर कोई वेंदा जांदी किसे न डिठी आई जवानी हर कोई वेंदा जांदी किसे न डिठी की मनिया दे बंदिया तेरी आंख रूण मिठी पर सच्चे इश्क ने ताले राणा ताड़ी हो जे चिट्ठी हो
1: मेरे असी सुन रहे सी जुगनी सानू उम्मीद है कि तुसी अज दे प्रोग्राम मिट्टी दी महक नू माणिया होवेगा। तुहानू याद ही होवेगा कि मिट्टी दी महक प्रोग्राम रोजाना इस वक्त प्रसारित किया जाता है। सो अपने इस मनपसंद प्रोग्राम नाल जुड़ना ना भुलना। इस दे नाल ही मिट्टी दी महक प्रोग्राम दा समा खत्म हुंदा है। हुण संदीप कौर नू इजाजत दियो।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 10 बजने को है, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। समावेशी मानव विकास ढांचे पर इस बैठक में चर्चा होगी जो 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए कल उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
4: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है। प्रधानमंत्री ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया। एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत तेजी से खेलों का प्रमुख वैश्विक केंद्र बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल के लिए बधाई देते हुए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री को देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक शक्तिशाली और महान नेता हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर केंद्र शासित प्रदेश में रेल सेवाओं के विस्तार पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस की सराहना करते हुए दक्षिण कश्मीर के लोगों की सुविधा के लिए अनंतनाग में इसका ठहराव देने का अनुरोध किया। संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कारों की घोषणा की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में और हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश सहित जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आंधी और गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना है। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. This Governing Council meeting will bring together chief ministers and lieutenant governors to discuss the Inclusive Human Development Framework. Prime Minister Narendra Modi says aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled. He said National Democratic Alliance has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi last evening. In his address, Mr. Modi said, "For the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, the development also takes place at a rapid pace." He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
4: NDA sarkar ke in 12 varshon mein 25 crore se zyada logon ka garibi se bahar nikalna ye dikhata hai ki hamari neetiyan sahi hain, hamari disha sahi hai. Ye safalta आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
5: In his address, the Prime Minister also said, at a time when the economies of major countries around the world are struggling, India has still achieved a growth rate of 7.7% in 2025-26. The Indian Chamber of Commerce, ICC, plans to facilitate investments worth over 1 lakh crore. Rupees in West Bengal through its member companies, reflecting growing industry confidence in the state's economic potential and growth prospects. The proposal was discussed during a meeting in New Delhi between an ICC delegation led by its president, Brij Bhushan Agarwal, and Union Minister Jitendra Singh. The chamber said West Bengal is witnessing renewed optimism and positive momentum, which could help accelerate economic growth and strengthen its position as an attractive destination for investment. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's ties with Bulgaria are long-standing and consistent, and the task for both countries now is to reshape them into a more dynamic and forward-looking relationship. He said this after his meeting with his Bulgarian counterpart Veliseva Petrova Chamova in Bulgaria. Dr. Jaishankar noted that their discussions had three dimensions, first being the bilateral cooperation between India and Bulgaria, second partnership between India and the European Union, and lastly about how stronger countries can work together for global stability and progress. The U.S. military launched another round of strikes on multiple targets in Iran yesterday, saying that attacks were in response to Iran's continued aggression as tensions escalated in West Asia, despite efforts to revive negotiations to end the war. The second day of American strikes came hours after Iran launched attacks toward Bahrain, Kuwait, and Jordan, which host U.S. troops. Iranian media also reported explosions in Bandar Abbas, Sirik, Minab and Keshem Island in the south of the country. President Donald Trump warned Iran would pay the price for stalled negotiations, while Iran's UN envoy said Tehran would not negotiate under threats and pressure. IMD has forecast heavy rainfall today in places over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Kerala and Mahe, Odisha, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim. Rainfall conditions are also expected during the day over Andaman and Nicobar Islands, Bihar, coastal Andhra Pradesh and Karnataka, Kanjatik, West Bengal, Konkan and Goa, Tamil Nadu and Northeast India. The world's biggest football tournament, 2026 FIFA World Cup, begins today and will run through July 19 across the United States, Canada and Mexico. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर 10:10 हुए और ये वक्त होता है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत आपकी पसंद का।

0: श्रोताओं, फिल्म संगीत आपकी पसंद में आपकी होस्ट और दोस्त कुसुम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम में। आप हमें ईमेल कर सकती हैं ipradio@delhi@gmail.com पर।
1: सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे

आप आए बाहर आई। जी हाँ, आप सभी श्रोताओं के आने से बाहर आती है, क्योंकि आपसे ही तो हमारा ये रेडियो कार्यक्रम है। अभी आप सुन रहे थे बहुत ही प्यारा गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म थी आप आए बाहर आई। श्रोताओं, इस खूबसूरत गीतों के सफ़र में आपका दिल से स्वागत है। एक बार फिर से उम्मीद है कि आपका दिन अब तक शानदार गुजर रहा होगा। अगर आप काम में व्यस्त हैं, सफ़र कर रहे हैं या घर पर आराम कर रहे हैं, तो अगले कुछ समय तक हम रहेंगे आपके साथ बेहतरीन गीतों और रोचक बातों, ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद में। आपके मेल हमें मिल रहे हैं लगातार, आपकी पसंद भी हमें पता लग रही है और आपके पसंदीदा गीत ही हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो आप हमें भेज दीजिए अपने पसंद के गीत जो आप सुनना चाहते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ip radio@gmail.com।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फ़िल्म आरजू से ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे। और संगीत की तो यही खासियत होती है दोस्तों, ये बिना कुछ कहे भी दिल की बात कह जाती है। इस दोपहर की इस हल्की सी थकान में जब कोई प्यारा धुन कानों में बजता है या घुलता है तो मन भी तरोताज़ा हो उठता है दोस्तों। ज़िंदगी की भागदौड़ में कुछ पल अपने लिए निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक छोटी सी मुस्कान, एक अच्छा विचार और एक मधुर गीत पूरे दिन को बेहतर बना सकता है। तो मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे प्रोग्राम के साथ। आपकी पसंद हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस सुरीली सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और एक और शानदार नगमे के साथ जो यकीनन आपके दिल को छू जाएगा। लेकिन पहले ले लेते एक छोटा सा ब्रेक।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों, हमारे पास आपके ढेरों मेल मिल रहे हैं। हमें मैसेज किया है प्रवीण कुमार शर्मा ने, सूर्यनगर गाज़ियाबाद से। ये लिख रहे हैं, एक्सीलेंस प्रेजेंटेशन और सॉन्ग सिलेक्शन आपका बहुत बढ़िया है। गोल्डन पीरियड के सॉन्ग्स आप ले कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। और इसके साथ ही हमें और भी मैसेजेस मिले हैं। हमें मेल किया है टैगोर गार्डन नई

दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और उनका समस्त परिवार। रमेश चौहान जी ने हमें मैसेज किया है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से, और ये मैसेज आया है रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शहादा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेगा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना का बटिड़ा रोड मंडी डबला डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग का हमें मैसेज मिला है। इसके अलावा हमें ये मैसेज आया है शाहजी नगर देगलूर ज़िला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता का। चंडीगढ़ सिटी सतीश अनेजा, बिमला अनेजा का भी हमें मैसेज मिला है और ये कह रहे हैं अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। और इसके साथ ही हमें मैसेज आया है पंजाब से भूषण खेरा जी का और उनके समस्त परिवार का। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी का भी मैसेज आया है और ये मैसेज आया है हरजिंदर सिंह भाटिया जी का। साथ ही उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमरा रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश जी का भी हमें मैसेज मिला है। ये आइए सुनते हैं आपके पसंद का ये प्यारा सा नगमा।

विनोद राठौड़ की सुरली आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गीत। तो फिल्म थी बाजीगर। दोस्तों आपके ढेरों मेल हमें मिल रहे हैं और ये मेल आया है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा का। ये कह रहे हैं कुसुम दीदी आप आई बाहर आई, किसी भी फरमाइश में शामिल कर अनुग्रहित करें, आपका हर पल खुशियों से भरा हो। जी हाँ, आपका भी हर पल, सभी श्रोताओं का हर पल खुशियों से भरा हो, हमारी तो यही कामना है। कह रहे हैं किसी भी गीत में शामिल करें, शुक्रिया मेहरबानी। आपकी भी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने हमें मेल करा और आप हमारे साथ जुड़े हैं। ये मैसेज आया है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमरा रानी गीतिका खोरवाल, और इसके अलावा ग्राम पजौनिया ज़िला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक और लौकिक और उनके समस्त परिवार का हमें मैसेज आया है। और इसके साथ ही हमें ये मेल करा है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन जी का, उनके समस्त परिवार का। किशनगंज बिहार से भी हमें मैसेज आया है, कह रहे हैं कोई भी गीत सुनवा दीजिए। और सौराष्ट्र राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, कंचन प्राची और प्रवीण पुजारी का भी हमें मैसेज आया है। और इसके अलावा ये मैसेज आया है बुलढाणा वडशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार और उनके समस्त परिवार का। अस्तुपुरा ज़िला मऊ से मजहर अली अंसारी, रज़िया बेगम, मोहम्मद साजिद अंसारी और बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवान परवीन और अब्दुल आज़ाद का भी हमें मैसेज आया है। ये कह रहे हैं अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। और ये मैसेज हमें भेजा है एकता कॉलोनी रोहतक से सीता राम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और उनके समस्त परिवार का। अंसारी ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हैदराबाद से हमें अपनी फरमाइश भेज रहे हैं। साथ ही जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े जी का भी मैसेज आया है, इन्होंने भी एक फरमाइश करी है। और ये मैसेज आया है

जी हाँ दोस्तों, अभी प्यारा सा गीत सुन रहे थे, फिल्म थी ब्लैकमेल। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके संदेशों की, और बहुत सारे संदेश हमें मिले हैं। और ये संदेश आया है हिंगोली महाराष्ट्र से, शाहजी बोर्ड के, श्रीमती नंदा हनुमान बोर्ड के और उनके समस्त परिवार का। साथ ही हमें मैसेज आया है नागपुर महाराष्ट्र से, कमल सहानी, पिंकी सहानी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़ और उनके समस्त परिवार का। हरजिंदर सिंह भाटिया का भी मैसेज आया है, और चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा का हमें मैसेज आया है। दोस्तों, जीवन में खुश रहने के लिए बहुत बड़ी वजहों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी खुशियाओं की ही ज़रूरत होती है। किसी अपने की मुस्कान, एक प्यारा सा संदेश या फिर मनपसंद गीत। तो आइए सुनते हैं आपका ही पसंद का ये प्यारा सा गीत।

तुमने दी आवाज़ और मैं आ गया। जी हाँ, आप बुलाते हैं और हम आ जाते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम लेकर। ये प्यारा सा गीत सुना आपने शब्बीर कुमार की आवाज़ में, फिल्म थी बेताब। और हमें मैसेज भेजा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप का, ये कालका से मैसेज कर रहे हैं। और साथ ही हमें मैसेज आया है पंकज शर्मा, प्रतिभा शर्मा, उनके समस्त परिवार का। और ये मैसेज आया है हमें रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हंसनी और खुशी गोस्वामी का। और ये मैसेज आया है गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से, फातिमा अली बेलदार, सोनम वली, अस्मा वली और डब्लू वली का। बिलासपुर से हमें मैसेज करा है वसीम आसमा, अकरम आसमा और उनके समस्त परिवार का। इसके साथ ही सरगुजा मैन पार्ट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा आसमा और कुमारी वली थापा और समस्त परिवार का उन्होंने अपनी फरमाइश भेजी है। कानपुर से आफताब उल्ला, अल्ताफ उल्ला और वली उल्ला और समस्त परिवार का हमें मैसेज आया है। सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नो मुदस्सर साबरी और समस्त परिवार का हमें मैसेज मिला है। और इसके साथ ही ये मैसेज आया ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर, राही महराज जहां, और आज ये मैसेज कर रहे हैं हरिद्वार आज़ाद नगर लक्सर से। इंदिरा नगर भंवरपुर से राधे श्याम और समस्त परिवार का हमें मैसेज आया है। साथ ही हमें ये मैसेज आया है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा और समस्त चीपा परिवार का। ये मैसेज आया है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवहारकर और पूरे परिवार का। साथ ही हमें ये मैसेज आया है ज्योति मक्कड़ और समस्त परिवार का, पिंगला वाला चौक गोरैया जालंधर से। और साथ ही ये है छोटा बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फूलवाले और समस्त परिवार का हमें मैसेज मिला है। आपकी पसंदीदा गीत की फरमाइश की है। साथ ही वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव और समस्त परिवार का हमें मैसेज आया है। और ये मैसेज आया है सिविल लाइन सतना मध्य प्रदेश से, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन और समस्त परिवार का मैसेज आया है। इसके अलावा मालियाल सरथना मेरठ से भी हमें अनिल जैन और समस्त परिवार का हमें मैसेज मिला है। तो लीजिए सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: अमोरे मियो दोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

दोस्तों हमें ये मैसेज भेजा है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकोस्टो, रोजी डिकोस्टो, पर्ल डिकोस्टो और समस्त परिवार का। साथ ही ये मैसेज आया है मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन और समस्त परिवार का। गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम सतोड़, रितु सिंह और समस्त परिवार का। साथ ही ये मैसेज आया मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से। और ये मैसेज आया किशन वंजानी का। और साथ ही ये मेल आया है संदीप मकड़, ज्योति मकड़ का और समस्त परिवार का। भोपालगढ़ राजस्थान से भी हमें मैसेज आया है। तो लीजिए सुनते हैं आपकी पसंद का, आपकी फरमाइश का ये गीत।

दोस्तों कुछ मैसेजेस और भी हैं। फिल्म किसी भी गीत की फरमाइश करी है जज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और समस्त परिवार का साथी। ये मैसेज आया है कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी सुशील योगी और समस्त परिवार का। देवशंकर तामूरिया अजय तामूरिया का भी हमें छत्तीसगढ़ बालोद से मैसेज आया है, तो लीजिए सुनिए आपके पसंद का ये गीत।

दोस्तों, आपने अपना कीमती समय और कुछ पल हमें दिए, हमारे साथ रहे, गीतों का आनंद लिया और इस सफ़र को यादगार बनाया, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जाने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जीवन में चाहे कितनी भी व्यवस्था क्यों ना हो, कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, आप अपने लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपनी खुशियों के लिए थोड़ा समय अवश्य निकालिए। मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक सोच बनाए रखिए और हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ अपनाइए।

0: दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये सफ़र, गीतों का सुरीला सफ़र, पसंद आया होगा। आपके इतने सारे फरमाइश हमें मिली और आपके पसंदीदा गीत हमने बजाए, उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। तो अपनी व्यवस्था, जो व्यस्त जो दिनचर्या है आपकी, जो भी रूटीन है, डेली रूटीन है, आप उसमें से कुछ पल निकालिए, मुस्कुराइए और संगीत के इस जादू में खो जाइए। और हम लेते हैं आपसे इजाज़त, सुनते रहिए ये कार्यक्रम। मुझे यानी कुसुम को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए।
1: अच्छा, तो हम चलते हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 11 बजने को हैं, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बधाई दी है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को और अधिक गतिशील तथा बेहतर रूप देंगे। उन्होंने बुल्गारिया के विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान ये बात कही। डॉ जयशंकर ने बताया कि भारत और बुल्गारिया द्विपक्षीय सहयोग, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी और वैश्विक स्थिरता तथा प्रगति के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का रुख स्पष्ट है। भारतीय वाणिज्य मंडल ICC ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। ICC ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ईरान की मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, बिनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आज जयंती है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृहमंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि बिस्मिल ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। श्री शाह ने कहा कि राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी ट्रेन कांड के माध्यम से ब्रिटिश राज की नींव हिला दी थी। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरला, माहे, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पंजाब, उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi is chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. The meeting will deliberate on measures to promote entrepreneurship, enhance skilling, and create sustainable employment opportunities across the country. Discussions will also focus on collectively charting an implementation roadmap that leverages key enablers, including governance, digital public infrastructure, and partnerships, while ensuring accountability and measurable impact. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047. Prime Minister Modi today said that farmers' welfare is among the government's top priorities and it is leaving no stone unturned to make their lives as easy as possible. In a series of social media posts, Mr. Modi said, "Farmers are the bedrock of the country's food security, nutrition and prosperity." The Prime Minister highlighted that initiatives such as the PM Kisan Samman Nidhi and the Crop Insurance Scheme are not only safeguarding farmers' incomes but also further strengthening the agriculture sector. Prime Minister Modi has said aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled. He said National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi last evening. In his address, Mr. Modi said, "For the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, the development also takes place at a rapid pace."
2: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं। हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
3: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's ties with Bulgaria are long-standing and consistent, and the task for both countries now is to reshape them into a more dynamic and forward-looking relationship. He said this after his meeting with his Bulgarian counterpart, Veleslava Petrova Kamova, in Bulgaria. Dr. Jaishankar noted that their discussions had three dimensions, first being the bilateral cooperation between India and Bulgaria, second, partnership between India and the European Union, and lastly, about how stronger countries can work together for global stability and progress. The United States carried out a new round of military strikes on the Iranian targets, prompting Tehran to announce the closure of the strategically vital Strait of Hormuz and launch retaliatory actions against regional locations hosting U.S. forces. U.S. Central Command said it had completed a second consecutive day of self-defense strikes targeting Iranian air defense systems, radar installations, communications infrastructure, and surveillance capabilities in response to what Washington called continued Iranian aggression. Iranian media reported explosions in several locations, including Bandar Abbas, Kesham Island, Minab, and Sirik, while air defense systems were activated in other parts of the country. Reports also indicated naval confrontations near the Strait of Hormuz. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall today in places over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Kerala, Mahi, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim. Rainfall conditions are also expected during the day over Andaman and Nicobar Islands, Bihar, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Gangetic West Bengal, Konkan and Goa, Tamil Nadu and Northeast India. The world's biggest football tournament, 2026 FIFA World Cup, begins today and will run through July 19th across the United States, Canada and Mexico. The tournament is the largest in World Cup history, featuring 48 teams compared with 32 teams in previous editions. The three host nations qualified automatically, while the remaining 45 teams earned their places through a two-year qualifying campaign. The competition will feature 12 groups of 4 teams. The top 2 teams from each group will automatically advance to the knockout stage. The 8 best third place teams across all groups will also advance for a 32-team knockout stage. And that is the end of this news bulletin.
4: आकाशवाणी के प्रसारण भवन में भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में आयोजित स्वरांजलि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर्स यानी 819 किलोहर्ट्ज पर इस कार्यक्रम का इस समय सजीव प्रसारण किया जा रहा है और साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी ऑडियंस इस कार्यक्रम से जुड़ी है। सभी का कार्यक्रम में पुनः अभिनंदन स्वागत। आज स्वरांजलि कार्यक्रम में प्रस्तुति के लिए हमने आमंत्रित किया है शशांक शेखर जी को। करतल ध्वनि से कलाकार का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। आप जाने माने गजल और भजन गायक हैं, संगीतकार हैं, ताल वाद्य वादक हैं, शिक्षक और विचारक भी हैं। खेल संगीत और संस्कृति लेखन तथा मीडिया प्रोडक्शन में 30 से अधिक वर्षों का आपको अनुभव है, अत्यंत अनुभवी शख्सियत आपकी। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के लिए आपने आर्काइवल रिकॉर्डिंग्स की हैं। 15 वर्ष की आयु से अब तक 400 से अधिक प्रस्तुतियां आपने की हैं। आपने संगीत प्रभाकर किया है प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज से, दरभंगा घराने के ध्रुपद उस्ताद पद्मश्री अलंकरण प्राप्त पंडित सियाराम तिवारी आपके गुरु रहे हैं, आगरा घराने के उस्ताद मौजूद हुसैन खान, दरभंगा घराने के पंडित नरहरि पाठक से गायन का प्रशिक्षण आपने लिया है और बनारस घराने के पंडित सामता प्रसाद गोदई महाराज से आपने तबला वादन का प्रशिक्षण भी लिया है। आप हारमोनियम कीबोर्ड ढोलक नाल और कांगो बजाना भी जानते हैं। विभिन्न क्षमताओं में कई सांस्कृतिक संस्थानों को चलाने का अनुभव आपके पास है। आफताबे गजल की उपाधि आपको प्राप्त हुई है, सुरमणि बिहारश्री और कलाश्री सम्मान तथा 50 से अधिक सम्मान पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र आपको प्राप्त हुए हैं। विदेशों में भी विभिन्न अवसरों पर कई प्रतिष्ठित समारोहों में आपने प्रस्तुतियां दी हैं और सम्मान अर्जित किया है। आज आपके साथ संगत कर रहे हैं तबले पर उजित उदय कुमार, बांसुरी पर हैं अनुराग रस्तोगी, कीबोर्ड पर हैं हेमंता साइकिया और इलेक्ट्रिक गिटार पर हैं अमित कुमार भाटिया। आज शशांक शेखर जी स्वरांजलि कार्यक्रम में गजल प्रस्तुत कर रहे हैं और आज की प्रथम प्रस्तुति है शहजाद अहमद की गजल रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया। एक और खास बात, आज आप जितनी भी गजल यहां पर प्रस्तुत करेंगे वो सभी आपकी अपनी कंपोजिशंस हैं। तो कलाकारों से अनुरोध है अब प्रस्तुति आरंभ करें।

गज़लों की महफिल में ये थी आज की हमारी पहली गज़ल। अगली प्रस्तुति गोपाल दास नीरज की लिखी हुई गज़ल, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा।

0: थैंक यू, धन्यवाद।
1: ये थी गोपाल दास नीरज की लिखी हुई गजल। करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। अगली गजल हसरत जयपुरी की लिखी हुई, जब प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते।

0: थैंक यू।
1: भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में आयोजित स्वरांजलि कार्यक्रम में आज गजलों की महफिल सजी है और आपको बताएं कि शशांक शेखर आज गजल प्रस्तुत कर रहे हैं। अट्रिब्यूट टू जगजीत सिंह और अट्रिब्यूट टू मेहंदी हसन श्रृंखला में आपने गजलें प्रस्तुत की हैं, अद्भुत प्रस्तुतियां दी हैं और संस्कृति मंत्रालय के फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत आपने शास्त्रीय संगीत में भी शोध किया है। हिंदी, उर्दू और बिहार की लोक भाषाओं में 200 से अधिक गजलों की रचना आपने की है, साथ ही भजनों की भी। अगली प्रस्तुति है कमर जलालवी की रचना कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को।

स्वरांजलि की अगली गज़ल बशीर बद्र साहब की लिखी हुई। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। आज स्वरांजलि कार्यक्रम में शशांक शेखर गज़लों की प्रस्तुति दे रहे हैं।

आकाशवाणी के प्रसारण भवन में भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में स्वरांजलि कार्यक्रम में आज शशांक शेखर जी ने गजल गायन की प्रस्तुति दी। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर उजित उदय कुमार, बांसुरी पर अनुराग रस्तोगी, कीबोर्ड पर थे हेमंत साइकिया और इलेक्ट्रिक गिटार पर अमित कुमार भाटिया। इस कार्यक्रम का आनंद YouTube के माध्यम से लिया गया, जिसके लिए तकनीकी सहयोग प्रदान किया हमारे साथियों ने, मनीष आनंद और गौरव सेन। तालियां हमारे सभी साथियों के लिए, सहयोगियों के लिए। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग था आकाश गौतम, दिव्या और रेवती राजन का, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्पर्शिता श्रीवास्तव और प्रदीप अग्रवाल। इसी के साथ मैं नीलम मलकानिया स्वरांजलि कार्यक्रम से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार, कुछ ही देर में हम सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का रुख स्पष्ट है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं को समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारतीय वाणिज्य मंडल ICC ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। ICC ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान के वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशमद्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है। मौसम विभाग ने आज

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गांगे, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में आज भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: घर आंगन।
1: आप सुन रहे हैं एफएम गोल चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है घर आंगन। आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर भी और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर भी। और हम आपको शुरू में ही कार्यक्रम के शुरू में ही आपको बता देते हैं अपना ईमेल आईडी ताकि आप हमें ईमेल भेज पाएं, हमें बता पाएं कि कार्यक्रम कैसा लग रहा है। fmgold@gmail.com, जी हाँ fmgold@gmail.com। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी रेडियो सखी राधा पाठक। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मन की दुनिया जितनी सीधी है उतनी ही जटिल भी है। कई बार किसी बात के चलते मन की सेहत की जड़ें ज्यादा ही हिल जाती हैं। हम बहुत तनाव ले लेते हैं, तो भावों की बिगड़ते संतुलन को साधने के लिए घर हो या बाहर हमें एक व्यवस्थित नियम अपनाना ही होगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, और स्वस्थ रहना है तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है, और खुश रहने के लिए ज़रूरी है कुछ समय निकालिए अपने लिए, अपनों के लिए।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत धरती कहे पुकार के फिल्म से था। और दिल्ली के मौसम को देखते हुए आज के ये गीत बिल्कुल सटीक है, क्योंकि थोड़े थोड़े बादल हर जगह हैं और थोड़ी थोड़ी आंधी भी चल रही है। और हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, अब इतनी गर्मी चल रही थी, गर्मी हो सर्दी हो या बरसात हो, अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हर साल 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाता है, और अभी चल रहा है इसका पखवाड़ा। जी हाँ, 31 मई से लेकर 14 जून तक ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को तंबाकू और निकोटीन उत्पादों से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करना है। आज के समय में पारंपरिक तंबाकू उत्पादों के साथ साथ ई सिगरेट और एंड्स ENDS, जी हाँ आज मैं बताऊंगी एंड्स के बारे में, ENDS यानी इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम, इसका उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है, खासकर युवाओं में। कई लोग इसे सुरक्षित मानते हैं, जबकि यह स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। आज इसलिए बताना जरूरी है कि हमारे घर में जो महिलाएं रहती हैं उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि ये ई सिगरेट कैसी दिखती है। ये कुछ कुछ पेन ड्राइव जैसी दिखती है, किसी को लगेगा कि मार्कर पेन है, और कभी ये भी लग सकता है कि ये एक इत्र की शीशी है, या बच्चे ने अगर आपके ये इस्तेमाल करा है आप सोचेंगे कोई परफ्यूम है छोटा सा। बहुत खूबसूरत पैकिंग में आता है और इसमें ना तो बदबू होती है ना ही धुआं होता है कि पता भी नहीं चलेगा कि घर में कोई ई सिगरेट का इस्तेमाल कर रहा है। ई सिगरेट बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो निकोटीन और अन्य रसायनों को भाप के रूप में शरीर में पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें वेप पेन, ई हुक्का के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग फ्लेवर मिलते हैं, मतलब इतने फ्लेवर हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें मिंट और मेंथॉल जैसे ठंडे और ताज़े एहसास भी हैं। फलों की बात करें तो आम, सेब, बेरी, तरबूज, स्ट्रॉबेरी, सब तरह के इसमें फ्लेवर्स आते हैं। डिज़र्ट्स के फ्लेवर हैं, हर्बल फ्लेवर भी हैं जो लौंग के, काली मिर्च के हैं। ये भी कह सकते हैं बच्चों की हर्बल है ये, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर सेहत के लिए कोई चीज़ नुकसान है तो वो हर्बल कैसे हो सकती है? ये सब आपको बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं, इसलिए सब लोग ध्यान दें कि ई सिगरेट एंड्स शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ई सिगरेट में मौजूद निकोटीन बहुत ज़्यादा नशे की लत पैदा करता है, और इस पर एक बार इसकी आदत लग जाए तो इसे छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। इस बारे में और भी बात करेंगे, पहले सुन लेते हैं ये गीत।

ये रात फिर ना आएगी। इस फिल्म में अभी आपने आशा भोंसले और मिन्नू पुरुषोत्तम को सुना। अब हम बात कर रहे थे एंड्स की। एंड्स यानी इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम, जिसके बारे में ज़्यादा लोग जानते भी नहीं हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी इसके बारे में अच्छे से जानती है कि वेप्स क्या होते हैं। बहुत सारे नुकसान हैं इसके। एक तो लत लगना सबसे बड़ा नुकसान है कि इसकी लत लग जाती है और आदत लगने पर इसे छोड़ना बहुत मुश्किल है। फेफड़ों को नुकसान है ही, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, खांसी और गंभीर फेफड़ों की बीमारी हो सकती है, हृदय रोग का खतरा हो सकता है, जो हमारी युवा पीढ़ी उसके दिमाग पर असर हो सकता है, क्योंकि ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है, तनाव होता है, मानसिक स्वास्थ्य पर का प्रभाव पड़ता है। और सेकेंड हैंड वेप का भी बहुत खतरा है, क्योंकि जो ई सिगरेट है अगर कोई पी रहा है और आपको, तो क्योंकि धुआं दिखेगा नहीं आपको और बदबू भी नहीं आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उसका सेकेंड हैंड स्मोकिंग जो पैसिव स्मोकिंग है वो साथ वाला बंदा तो ले ही रहा है ना, जो साथ बैठे हैं, तो इसलिए इसको भी नकारना ज़रूरी है। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों को मना कर पाएँ और इसके लिए जागरूक रह पाएँ। ये दिखने में सामान्य सिगरेट या पेन जैसी होती है, मतलब लगेगा जैसे पेन है या पेन ड्राइव है, या बहुत सुंदर सुंदर फ्लेवर्स भी आ रहे हैं अगर आप देखेंगे तो। ये इतनी सुंदर शीशी और इतने सुंदर पैकिंग में आता है कि लोगों को, मतलब युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए सब होता है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से धुआं भाप देने वाले पारंपरिक डिज़ाइनों के विकल्प के रूप में ये आता है, और इसमें बहुत सारे खतरनाक रसायन होते हैं जिससे सीधा असर होता है सेहत पर। अब इसके बारे में एक चीज़ और है कि एक एक्ट है 2019 में बनाया गया था, पैका एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट। इसके तहत ई सिगरेट और सभी प्रकार के एंड्स उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है भारत में। भारत में इन्हें बनाना, बेचना, आयात निर्यात करना, विज्ञापन देना या अपने पास इसे रखना गैर कानूनी है। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखा जाए कि भारत में ये गैर कानूनी है। अब स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ कि भले ही इसे पारंपरिक सिगरेट के सुरक्षित विकल्प के रूप में प्रचारित किया गया था, लेकिन ICMR यानी चिकित्सा अनुसंधान की गाइडलाइंस के अनुसार ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसमें मौजूद निकोटिन दिमाग को नुकसान पहुँचाता है और युवाओं को बीमार कर सकता है। इसके केमिकल फेफड़ों की गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं और ये रक्तचाप और दिल की धड़कन को भी अनियंत्रित कर सकता है। इसलिए ई सिगरेट और इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम, इन सबसे बहुत दूर रहना बहुत ज़रूरी है और सबको इस बारे में जागरूक रहना भी ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुशियां बांटिए। ये चीज़ें इस्तेमाल करके बीमारियां ही बढ़ेंगी, जिसका आपको ध्यान रखना है।

मंगेशकर की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे आंखें फिल्म से। कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप सुन रहे हैं बहुत सारी काम की बातें। और अब बात करेंगे एक योजना की, भारत सरकार की दिव्यांग कल्याण योजना, जैसे स्वावलंबन कार्ड है, यूडीआईडी है, भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग यानी डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा जारी किया जाने वाला एक राष्ट्रीय पहचान पत्र है जो पूरे देश में मान्य है। इसे कहते हैं स्वावलंबन कार्ड यानी यूडीआईडी। इसका मुख्य उद्देश्य है देश के सभी दिव्यांगजनों का एक डिजिटल डाटाबेस तैयार करना और उन्हें कागजी दस्तावेजों के झंझट से मुक्ति दिलाना, ताकि किसी को परेशान ना होना पड़े, इधर उधर भागना ना पड़े। सिर्फ एक कार्ड बन जाएगा तो हर जगह उनका डाटा रहेगा। इसके मुख्य लाभ और विशेषताएं भी आपको बता देती हूँ। एक सिंगल डॉक्यूमेंट है। विभिन्न सरकारी लाभों का लाभ उठाने के लिए कई प्रमाण पत्र प्रतियां साथ रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कार्ड में सभी आवश्यक जानकारियां डिजिटल रूप से दर्ज की जाएंगी। राष्ट्रव्यापी मान्यता है इसको। ये कार्ड भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समान रूप से स्वीकार्य है, इसलिए एक कार्ड आपकी बहुत सारी चीजों की मुश्किलों को कम कर देगा। इसके माध्यम से योजनाओं के वितरण में पारदर्शिता आती है और लाभार्थियों को भौतिक और वित्तीय प्रगति को ट्रैक किया जा सकता है, बताया जा सकता है उन्हें, और उन्हें भी ट्रेस किया जा सकता है। सुगम प्रमाणीकरण भी है। सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और अस्पतालों में दिव्यांगता के प्रकार और स्तर के त्वरित सत्यापन में मदद मिलती है, वेरिफिकेशन हो जाता है कि क्या चाहिए आपको। इस पर और भी बात करेंगे इस गीत के बाद।

मेले लुक छुप लुक छुप लुक छुप लुक छुप लुक छुप गाड़ी चली लुक छुप छुप छुप छुप छुप मैं नोकी गाड़ी चली छुप छुप छुप छुप छुप ओ दिल वाले मत वाले तेरे दिल के स्टेशन पे गाड़ी गई रुक रुक रुक गाड़ी चली छुप छुप छुप छुप छुप मैं नोकी गाड़ी चली छुप छुप

मोम की गुड़िया, इस फिल्म में अभी आपने सुना आशा भोसले को। हम बात कर रहे थे स्वावलंबन कार्ड की। जी हाँ, यूडीआईडी कार्ड, इससे बहुत सारे लाभ हमारे दिव्यांगजनों को मिल जाते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति के पास 40% या उससे अधिक दिव्यांगता का यूडीआईडी कार्ड है तो बहुत सारे उसे लाभ मिलते हैं। यात्रा में छूट मिलती है, स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं, उपकरण भी मिलते हैं, शिक्षा में छात्रवृत्ति मिलती है, वित्तीय सहायता भी दी जाती है। और अगर सरकार ने दिव्यांगजनों की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए दो बड़ी कल्याणकारी योजनाएं संचालित की हैं, बता दूं आपको। जी हाँ, एक है दिव्यांगजन कौशल योजना। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को आईटी, एनिमेशन, गेमिंग और हॉस्पिटैलिटी जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों में आधुनिक और उद्योग अनुकूल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि उन्हें गरिमापूर्ण रोजगार जो है वो मिल सके। दिव्यांग सहारा योजना। इस योजना के तहत अत्याधुनिक सहायक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाने और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को एकीकृत करने के लिए भारी निवेश किया जा रहा है, जिसका संचालन किया जा रहा है। इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो शामिल हैं। तो आप स्वावलंबन आईडी कार्ड अगर बनवाना चाहते हैं तो बनवा लीजिए। अब कहते हैं ना, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में, जिनके हुनर बोलते हैं। प्रांजल पाटिल, भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला IAS अधिकारी। जी हाँ, बचपन में बहुत संघर्ष किया। अब प्रेरणादायक कहानियाँ जो होती हैं ना, जो व्यक्तित्व होते हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र के उल्हासनगर की रहने वाली प्रांजल ने मात्र 6 वर्ष की उम्र में अपनी आँखों की रोशनी पूरी तरह गंवा दी थी। एक स्कूल के साथी ने गलती से उनकी आँख में पेंसिल मार दी थी, जिससे उनकी एक आँख खराब हो गई थी। बाद में उनकी दूसरी आँख की रोशनी भी चली गई, लेकिन इस दृष्टिहीनता के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई की और दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इंटरनेशनल रिलेशंस में MPhil और PhD की। प्रांजल ने बिना किसी कोचिंग के केवल सॉफ्टवेयर की मदद से किताबें सुनकर UPSC की तैयारी की। उन्हें पहले ही प्रयास में 773वीं रैंक हासिल हुई। उन्हें भारतीय रेलवे लेखा सेवा आवंटित की गई, लेकिन रेलवे विभाग ने उनकी 100% दृष्टिहीनता का हवाला देकर उन्हें नौकरी नहीं दी। उन्होंने 2017 में फिर से कड़ी मेहनत करके 77वीं रैंक हासिल की और देश की पहली दृष्टिबाधित महिला IAS अधिकारी बनी। इसलिए तो मैंने कहा कि वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में, उनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। यहीं तो ये साबित होता है कि अगर मेहनत हो, लगन हो, आत्मविश्वास हो तो कुछ भी किया जा सकता है। प्रांजल पाटिल को केरल कैडर मिला। उन्हें तिरुवनंतपुरम में उप कलेक्टर के रूप में अपना कार्यभार संभालकर देश की सेवा शुरू की। हम सलाम करते हैं ऐसे व्यक्तित्व को।

हम अपने साथियों से, अपनी बहनों से, क्योंकि हमारा घर आंगन जो कार्यक्रम है वो खास महिलाओं के लिए है, बार बार कहते हैं कि योग बहुत ज़रूरी है। हम ये भी कहते हैं कि अपने लिए समय निकालिए, और समय तो निकालना ही पड़ेगा। अब मन और शरीर दोनों के स्वास्थ्य के लिए योग बहुत ज़रूरी है। अब योग दिवस भी आने वाला है, तो क्यों ना अब हर बार ये सोच कर कि कल करेंगे कल करेंगे ये ना करते हुए योग शुरू किया जाए। और योग बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार आप शुरुआत करेंगे तो आपके शरीर और मन दोनों की इसकी आदत हो जाएगी। बहुत आसान से थोड़े से आसन मैं आज आपको बता रही हूँ, ताड़ासन। इसे कहते हैं माउंटेन पोज। सीधे खड़े हो जाएं, हाथों को ऊपर उठाएं, उंगलियों को आपस में फंसा कर ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, यानी स्ट्रेचिंग करनी है आपको अपने शरीर को। नीचे पैरों से खड़े होकर, सीधे खड़े होकर, हाथों को ऊपर करके, इससे क्या होता है शरीर का पोस्चर सुधरता है और लंबाई भी बढ़ती है, अगर बच्चे युवा कर रहे हैं तो। वृक्षासन यानी ट्री पोज। एक पैर पर सीधे खड़े हों, दूसरे पैर के तलवे को जांघ से टकराएं, हाथों को नमस्कार मुद्रा में ऊपर ले जाएं। इसका जो लाभ है वो बताऊं,

शरीर पर बैलेंस बना रहता है और एकाग्रता भी आती है। सुखासन यानी इजी पोज जो होता है वो है जमीन पर पालथी मारकर बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आंखें बंद करके गहरी सांस लें, धीरे धीरे गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। मानसिक टेंशन दूर होती है, मन शांत रहता है। देखिए सांसों पर आप जितना कंट्रोल कर पाएंगे योग के जरिए आपकी बीमारियां भी दूर होंगी और आपका मन और तन दोनों स्वस्थ रहेगा। भुजंगासन कोबरा पोज कहते हैं इसको, पेट के बल लेट जाएं, हथेलियों को छाती के पास रखकर शरीर के अगले हिस्से को ऊपर उठाएं, इससे पीठ और कमर का दर्द दूर होता है। मार्जरी आसन यानी कैटकाउ पोज, घुटनों और हाथों के बल बिल्ली की तरह, जैसे बिल्ली चलती है या गायें चलती है वैसे हो जाएं। सांस लेते हुए पीठ को नीचे करें, सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर करें गोल, इससे रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। बालासन यानी चाइल्ड पोज, घुटनों के बल बैठ जाएं, वज्रासन जिसे कहते हैं, अब आगे की ओर झुकते हुए सिर को जमीन से छुएं और हाथों को आगे फैलाएं, इससे थकान और तनाव तुरंत दूर हो जाता है। देखिए मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात ये बता दूं कि ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें, शरीर को जितना आराम से आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना ही करें, दर्द होने पर रुक जाएं, सांसों पर ध्यान दें। आसन करते समय सांस को रोकना नहीं है बल्कि सामान्य रूप से गर्मी को शांत करता है। बेल की पत्तियों का रस या इसका कच्चा पाउडर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मददगार है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है, इसलिए कहते हैं गुड़कारी बेल।

फिल्म में आप ये सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज। बात चल रही थी बेल की, यहाँ गुणकारी और चमत्कारी बेल की। अब पाचन तंत्र में इसमें सुधार होता है ये मैंने आपको बताया। क्रोनिक डायरिया और जो होता है ना दस्त लग जाते हैं वो भी ठीक करता है, कब्ज भी ठीक करता है अगर इसे ठीक सिखाया जाए। इसके फल और पत्तों के अर्क में फंगस और बैक्टीरिया से लड़ने की गजब की क्षमता होती है। अगर किसी को लगता है ना कि उसे फंगस की बीमारी है, जैसे उंगलियां फट जाती हैं, कई बार पैरों की उंगलियों में फंगस हो जाती है, तो बेल का इस्तेमाल कीजिए। सूजन को कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, आंतरिक अंगों की सूजन और जोड़ों के दर्द में आराम देता है। अगर आपको पुरानी कॉन्स्टिपेशन है तो पके हुए बेल का गूदा खाएं और शाम को इसका शरबत पिएं। कच्चे बेल को आग में भूनकर या सुखाकर बनाएंगे। बेलगिरी का जो चूर्ण होता है उसे मट्ठे के साथ खाया जा सकता है तो जो दस्त होते हैं ना वो रुक जाते हैं। डायबिटीज़ अगर आपको है तो बेल के 4-5 ताज़े पत्तों को पीसकर सुबह खाली पेट इसका रस पिएं। अगर आपको गर्मी लग रही है या डिहाइड्रेशन हो गया है तो पके बेल के गूदों को, जो गूदा होता है

उसे पानी में मैश कर लीजिए, मैश करके उसे छान लीजिए, उसमें मिश्री और भुना जीरा मिलाकर शरबत बनाइए, इसे कहते हैं बेल का ठंडा ठंडा शरबत, और वो पीजिए, पेट की गर्मी को शांत करता है। लेकिन एक चीज़ है कि गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को बेल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ना ही उसका शरबत पीना चाहिए। और अगर आप थायराइड की दवाई ले रहे हैं तो भी डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप बेल ले सकते हैं। इसलिए हर चीज़ को इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मगर ध्यान से।

शोर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। और अपने जीवन में छोटे छोटे बदलावों से आप अपनी जिंदगी को मजबूती दे सकते हैं। इसी संदेश के साथ कार्यक्रम घर आंगन से मुझे यानी राधा को दे इजाजत। सुनते रहिए ये गीत।

0: आंगन।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद के बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल, सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि के रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा में भारत में निर्मित पहले एयरबेस C-295 के प्रथम परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। ताज़ा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 74,301 और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 23,297 पर था। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. The meeting will deliberate on measures to promote entrepreneurship, enhance skilling, and create sustainable employment opportunities across the country. Discussions will also focus on collectively charting an implementation roadmap that leverages key enablers, including governance, digital public infrastructure, and partnerships, while ensuring accountability and measurable impact. In a social media post, Mr. Modi said, guided by the spirit of cooperative federalism, center and states are working together to accelerate India's development journey. He added that the collective efforts of the center and states will play a pivotal role in realizing the shared vision of Viksit Bharat. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, which emphasizes the well-being and development of every Indian regardless of age, region, gender or socio-economic background. The government has waived excise duty on certain variants of ethanol-blended petrol. In a notification, the Finance Ministry announced that petrol blended with 22, 25, 27 and 30% ethanol has been exempted from central excise duty. The Ministry said all four fuel grades will now attract a nil rate of excise duty. The move is aimed at strengthening India's ethanol blending program, which seeks to reduce dependence on imported crude oil, cut carbon emissions and enhance demand for domestically produced ethanol. Union Minister for Railways and Information and Broadcasting Ashwini Vaishnav virtually inaugurated a 20-kilowatt FM transmitter at Ramgarh in Jaisalmer district of Rajasthan during a program held at the Akashvani premises in Jaipur today. The event was attended by Jaipur MP Manju Sharma, Prasar Bharati Chairman Prasoon Joshi and Akashvani Director General Rajiv Kumar Jain, among other senior officials. Addressing the gathering, Union Minister Vaishnav, focusing on strategic infrastructure, highlighted the government's commitment to strengthening communication in border regions. He said today, a major initiative to cover border areas has commenced in Rajasthan. The minister said the plan is to provide comprehensive coverage across the entire border belt of the country, stretching all the way from Kashmir.
3: Today, our new 20-kilowatt FM transmitter was launched in Jaisalmer, which will cover not only the district but also surrounding regions. About an 80-kilometer radius and nearly 20,000 square kilometers. This is a significant step forward.
2: All three Indian seafarers who were initially reported missing after the tragic incident aboard the commercial vessel Palau-flagged MT Sotobelo have now been confirmed dead. The tanker was hit off the coast of Oman in a suspected US missile strike. In a social media post, Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Sarbananda Sonowal said the bodies of three seafarers have been located and identified. Trinamool Congress MP Prakash Chigbaraik has resigned as a member of the Rajya Sabha. He has sent his resignation letter to Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan. Earlier, Trinamool Congress leaders and Rajya Sabha members Shukhendu Shekhar Rai and Sushmita Dev had resigned from both the Rajya Sabha and the party. The United States carried out a new round of military strikes on Iranian targets, prompting Tehran to announce the closure of the strategically vital Strait of Hormuz and launch retaliatory actions against regional locations hosting U.S. forces. U.S. Central Command said it had completed a second consecutive day of self-defense strikes targeting Iranian air defense systems, radar installations, communications infrastructure, and surveillance capabilities in response to what Washington called continued Iranian aggression. Sports fans across the world are set for a month-long football spectacle as the 2026 FIFA World Cup kicks off tonight at the historic Estadio Azteca in Mexico City. In the opening match, hosts Mexico will take on South Africa in a Group A clash. The match begins at 12:30 a.m. Indian Standard Time. And with that, we end this news bulletin.
4: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है दोपहर के 1:10 और ये समय है आपके पसंदीदा प्रोग्राम नाम है जिसका एक ही फिल्म से। प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आज हम आपके लिए चुनकर लाए हैं एक ऐसी फिल्म जिसने 46वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए चुना गया था इस फिल्म को। और ये फिल्म जो कि नरेंद्रनाथ मित्रा की बंगाली कहानी रस पर आधारित है, राजश्री प्रोडक्शन में तारा चंद बरजात्या द्वारा प्रोड्यूस और कला निर्देशक से निर्देशक बने सुधेंद्र रॉय द्वारा लिखी और डायरेक्ट की गई ये खूबसूरत सी फिल्म, जिसके संवाद लिखे थे पीएल संतोषी यानी कि राजकुमार संतोषी के पिता ने, और छायांकन था दिलीप रंजन का, दिलीप रंजन मुखोपाध्याय, जिनमें मुख्य भूमिका में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, नूतन और पद्मा खन्ना। फिल्म के सभी गीत हिट थे और हिट हैं। तो पहले आप इस गीत को सुनिए, अंदाजा लगाइए कि आज की फिल्म कौन सी है। फिलहाल आपको बता देती हूँ कि आज प्रोग्राम एक ही फिल्म लेकर हाजिर हूँ मैं,

आपके ढेर सारे संदेश हमें बता रहे हैं कि आपने हमेशा की तरह फिल्म पहचान ली, कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1973 की वो फिल्म जो सुपर डुपर हिट थी, सौदागर। जी हाँ, और ये फिल्म 131 मिनट की अवधि वाली फिल्म जो कि मोती की कहानी पर आधारित थी। मोती जो खजूर का रस निकालकर अपना जीवन यापन करता है। नरेंद्रनाथ मित्रा की बंगाली लघु कहानी रस पर आधारित ये फिल्म संदेश छोड़ती है कि किसी दूसरे को दुखी करके खुशी हासिल नहीं की जा सकती। फिल्म में मुख्य भूमिका में थे अमिताभ बच्चन, जिन्होंने अपने एंग्री यंग मैन की छवि से निकलकर खजूर के रस से बने गुड़ को बेचने वाले मोती की भूमिका निभाई थी। नूतन, जिन्होंने महजुबीन नामक एक गरीब विधवा और मोती की व्यापारिक साझेदारी की एक सशक्त भूमिका निभाई थी। वहीं पद्मा खन्ना, जिन्होंने अपनी खलनायिका वाली छवि से हटकर फूलबानो की भूमिका निभाई, जिनके अभिनय की सभी ने तारीफ की।

फिल्म का संगीत तैयार किया था रविंद्र जैन ने और गीत भी रविंद्र जैन ने ही लिखे थे, जिन्हें अपनी आवाज़ दी थी किशोर कुमार, आशा भोसले, लता मंगेशकर, मन्ना डे और मोहम्मद रफ़ी साहब ने। फिल्म का सबसे हिट सॉन्ग रहा सजना है मुझे सजना के लिए, जो आज भी लड़कियां, महिलाएं इन सब की जुआ पर रटा हुआ है। किशोर दा की आवाज़ में अभी आप जो गीत सुन रहे थे हसीन चीज़ का, और लता दी की आवाज़ में तेरा मेरा साथ रहे जैसे गीतों ने फिल्म सौदागर को यादगार बना दिया। फिल्म में पद्मा खन्ना ने खूब नाम कमाया। सजना है मुझे सजना के लिए गीत इन्हीं पर फिल्माया गया था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लगी थी। आपको याद होगा पद्मा खन्ना, जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण में केकई का रोल प्ले किया था और दर्शकों की खूब वाहवाही भी लूटी थी, और इन्हीं पर ये हिट सॉन्ग भी पिक्चराइज किया था। तो चलिए सुनते हैं इसी गीत को आशा जी की आवाज़ में।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही फिल्म से। आज हम लेकर आए हैं 1973 की एक सुपरहिट फिल्म सौदागर। आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। और आपको बता दूं कि आप हमारे इस चैनल पर, जी हां, आपके अपने इंद्रप्रस्थ चैनल पर हर रोज दोपहर 3 बजे से 3:30 बजे तक एक और नया प्रोग्राम सुन सकते हैं फिल्मी गीतों का। तो इस बार भी आप हमेशा की तरह अपने संदेशों के जरिए उस प्रोग्राम में भी जुड़ सकते हैं। तो आपके साथ 3:30 बजे तक एक बार फिर मैं आपके साथ रहूंगी। फिलहाल इसी फिल्म का एक और गीत आप तक पहुंचा रही हूं।

फिल्म सौदागर जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन अमिताभ बच्चन और नूतन की जोड़ी ने दर्शकों को जरूर इम्प्रेस किया। अमिताभ बच्चन का मोती का किरदार आज भी हिट है। यह अमिताभ बच्चन के करियर की पहली फिल्म थी जिसे 46वें एकेडमी अवार्ड्स में भारत की ओर से ऑफिशियली एंट्री ली थी। फिल्म बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी के लिए चुनी गई थी, लेकिन इसे ऑस्कर में नॉमिनेशन नहीं मिल पाया था। फिल्म की शूटिंग पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के गांव में हुई थी।

आपको बता दें कि 1969 में ये फिल्म नूतन और संजीव कुमार के साथ बनाई जानी थी, लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसमें कुछ तकरार, कुछ अनबन और नूतन और संजीव कुमार का कुछ ऐसा झगड़ा हो गया जिसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे के साथ फिल्में नहीं की। मगर 1972 में अमिताभ बच्चन को लेकर ये फिल्म बनाई गई। प्रेम, विश्वासघात, लालच, पितृसत्ता और लैंगिक पूर्वाग्रह जैसे विषयों को उजागर करती ये फिल्म सौदागर आज भी लोगों की पसंदीदा फिल्म की लिस्ट में शामिल है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये फिल्म हमेशा की तरह ज़रूर पसंद आई होगी। ढेर सारे संदेश भी आपके पहुँचे हैं, उन्हें बस मैं शामिल कर रही हूँ।

रोशन लाल देवनगन, कौशला हेमलता डिंपल जी विलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, पिंकी सोनकार, मुन्ना भाई शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हमारे साथ हैं, राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोटसिन गिल, दलजीत राजदीप गुरनूल गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से हमारे साथ हैं, और नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत लखन, पहांदा पलारी छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं, अजीत भापसर जी वीरनगांव गुजरात से, प्रमीला भापसर और सनी जी के साथ जुड़े हुए हैं। हमेशा की तरह ढेर सारी जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। पटियाला पंजाब से सोमदत्त केरब ज्योति रानी गुरमीत हमारे साथ हैं, निसार अली नौशाद जी के साथ घनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, सुदर्शन मुखी अनीता सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से साथ में हैं, फलिस्का पंजाब खेड़ा परिवार भूषण खेड़ा विष्णु विशाल जी हमारे साथ हैं, मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हैं, सुनील पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। ये संदेश समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा अदिति राधे गुप्ता का है, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी जी हैं, देवशंकर तामुरिया जी देव जी कबीर रेडियो श्रोता संगडोंजी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से हैं, जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गंगनेजा।

और सुरेश जागव अनीता जी हमारे साथ नेहरू चौक पैठण से जुड़े हैं, ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैद अब्बासी निगत, परवीन शेरवास, फरदीन सुहान, अरजान अबान और परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ हैं। डीवी राणा जी नेहरू विहार दिल्ली से हैं, संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर जी हमारे साथ पिंगा वाला चौक गौरग जालंधर से जुड़े हैं, पोचियल गला कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू जी हमारे साथ हैं। ये संदेश भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, पूजा परिहार का है। पहाड़गढ़ मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, चिलू नायक, मधु नायक जी हमारे साथ हैं, मुकेश भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला संदेश बबलेश पवार जी का आया है और उन्होंने भी ढेर सारी जानकारी हम तक पहुंचाई है। डैनी पवार और मनीष जी इनके साथ जुड़े हुए हैं। कुछ और संदेश भी हमारे पास पहुंचे हैं, हम उनको भी शामिल कर लेते हैं। हीरामणि वर्मा दत्रेंगी भाटापारा से हमारे साथ हैं और छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेरी से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम और उनके परिवार के सदस्य हैं। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप लोगा ठाकुरवाला से हैं। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना हर्षित खुशी जी हमारे साथ हैं। नागरकोला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा आराध्या जी हमारे साथ हैं। सुदर्शन मुखी जी का एक बार फिर संदेश आया है, तो आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे सफ़र में हम सफ़र बनने के लिए। और आपसे इतना ही हमेशा की तरह कहेंगे कि अगर आपने अभी तक फिल्म सौदागर को मिस किया है, नहीं देखा है, तो वक्त निकालिए। बहुत खूबसूरत सी फिल्म है और भले ही उस वक्त ये फिल्म हिट नहीं रही, लेकिन उसके बाद लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। दो अब हम आपकी और मेरी मुलाकात 3 बजे होगी। जी हाँ, आज दोपहर 3 बजे खूबसूरत गीतों के साथ एक महफिल सजेगी जिसमें आप होंगे, हम होंगे और हमारी खूबसूरत जो फिल्मी दुनिया है उसके गीत होंगे। तब तक अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली दे राष्ट्रपति भवन विखे नीति आयोग दी 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग दी प्रधानगी कर रहे ने। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भारत बुल्गेरिया संबंधा नूं होर गतिशील ते अगाह वत बनाउण दा सद्दा दित्ता है। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कश्मीर तो कच्छ तक देश दे सरहदी इलाकियां विच आकाशवाणी अते

0: दूरदर्शन कवरेज नूं मजबूत करने लई विशेष प्रबंध विकसित कीते जा रहे ने। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल दियां कुछ किस्मा ते एक्साइज ड्यूटी माफ कर दिती है ते एक महीने तक चलन वाला फुटबॉल मुकाबला 2026 फीफा विश्व कप आज रात मैक्सिको सिटी दे इतिहासक एस्टाडियो एस्टेका विखे शुरू हो रहा है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली दे राष्ट्रपति भवन विखे नीति आयोग दी 11वीं गवर्निंग कौंसिल मीटिंग दी प्रधानगी कर रहे ने। मीटिंग विच उद्यमता नूं उत्साहित करन, हुनर वधाउण अते देश भर विच निरंतर रहणयोग रोजगार दे मौके पैदा करन दे उपावां ते विचार वटांदरा कीता जा रहा है। विचार वटांदरे समूहक तौर ते इक लागूकरण रोडमैप तैयार करन ते वी केंद्रित होणगे जो जवाबदेही अते मापणयोग प्रभाव नूं यकीनी बणाउंदे होए शासन डिजिटल जनतक बुनियादी ढांचा अते भाईवाली समेत मुख समर्थकां नूं लाभ पहुंचाउण वाला होवे। मीटिंग विच देश भर दे मुख्यमंत्री अते उपराज्यपाल चार मुख थम्मां दे आले दुआले जुड़े समावेशी मनुखी विकास ढांचे ते चर्चा करन लई कतर होए ने। इन्हां च बुनियादी मनुखी पूंजी अते भविख लई तैयार हुनर, उत्पादक रोजगार, उद्यमशीलता अते विकेंद्रीकृत विकास, सेहत, पोषण ते तंदुरुस्ती अते सारे लई समानता ते माण शामिल ए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सहकारी संघवाद की भावना राही संचालित केंद्र अते राज भारत की विकास यात्रा नूं तेज करने लई रल के काम कर रहे ने। उन्होंने अगे कहा कि केंद्र अते राजां दे समूहक यतन विकास विकसित भारत के सांझे दृष्टिकोण नूं साकार करन विच इक महत्वपूर्ण भूमिका निभाउणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानां दी भलाई सरकार दीआं प्रमुख तरजीहां विचों एक है ते सरकार उन्हां दे जीवन नूं सुखाला बनाउण लई हर संभव यतन कर रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान देश दी खुराक सुरक्षा पोषण ते खुशहाली दी रीढ़ ने। प्रधानमंत्री ने इस गल ते भी जोर दिता कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अते फसल बीमा योजना वर्गियां पहलकदमियां ना सिर्फ किसानां दी आमदन दी राखी कर रही ने सगों खेतीबाड़ी नूं भी मजबूत बना रही ने। किसान क्रेडिट कार्ड दी महत्ता ते जोर दिंदे होए उन्हां दस्सिया कि यह कार्ड किसानां पशु पालकां ते मछेरियां नूं खेती अते होर जरूरी जरूरतां लई बहुत घट्ट ब्याज दरां ते कर्जे तक आसान पहुंच प्रदान करदा है। उन्होंने कहा कि सरकार दी बीज तो बाजार पहल फसलों लई उचित कीमतों नूं यकीनी बनाउण विच बेहद प्रभावशाली साबित हो रही है। उन्होंने भी कहा कि सरकार ने देश के किसानों नूं आधुनिक खेतीबाड़ी सहूलतां प्रदान करन ते लगातार जोर दिता है। श्री मोदी ने कहा कि खेतीबाड़ी सिर्फ उपजीविका का साधन नहीं सगो समाज अते राष्ट्र दे पोषण का मूल आधार है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ते बुल्गेरिया नाल संबंध लंबे समय तो चल रहे अते इकसार ने अते हुण दोवां देशां दा काम उन्हां नूं होर गतिशील अते गांह वधू संबंधां विच मुड़ नुहार देना है। उन्हां ने गल बुल्गेरिया विच अपने बुल्गेरियाई हमरुतबा वेलिसलावा पैत्रोवा चामोवा नाल मुलाकात तो बाद कही। डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्हां दी चर्चा दे तीन पहलू सन। पहला भारत ते बुल्गेरिया विचकार दवला सहयोग, दूजा भारत यूरोपियन यूनियन विचकार भाईवाली अते आखिर ए कि किवें मजबूत देश विश्व स्थिरता ते तरक्की लई रल के काम कर सकदे ने।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला भारत और बुल्गेरिया के बीच आपसी सहयोग, दूसरा भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी और तीसरा वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने जोर देके कहा कि भारत दी आर्थिक सुरक्षा विघन ते हालिया अनुभवां अते दहशतगर्दी ते वध रहे खतरे बारे स्पष्ट स्थिति ए। उन्हां अगे कहा कि भारत दा मनना है कि यह जंग दा युग नहीं है ते टकरावां दा इक्को इक हल गलबात अते कूटनीति विच ए। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अज राजस्थान दे जैसलमेर जिले दे रामगढ़ विखे जयपुर दे आकाशवाणी कॉम्पलैक्स च कराए गए प्रोग्राम दौरान 20 किलोवाट FM ट्रांसमीटर दा वर्चुअल उद्घाटन कीता। इस वादे दे नाल राज विच FM ट्रांसमीटरां दी कुल गिणती 39 हो गई है। नवा ट्रांसमीटर सरहदी खेतरां विच 80 किलोमीटर दे घेरे विच रेडियो कवरेज प्रदान करेगा जिस नाल लोकां नूं जानकारी विद्यक समग्री अते मनोरंजन प्रोग्रामां दी विशाल श्रेणी तक पहुंच मिलेगी। इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कश्मीर तों कच्छ तक देश दे सरहदी इलाकें विच आकाशवाणी अते दूरदर्शन कवरेज नूं मजबूत करन लई विशेष प्रबंध विकसित किए जा रहे ने, जिस विच नवे एफएम ट्रांसमीटर और प्रसारण बुनियादी ढांचा कायम किया जा रहा है। उन्होंने भी कहा कि अज राजस्थान विच सरहदी इलाकों नूं कवर करने लई एक वड्डी पहल शुरू हो गई है। मंत्री ने कहा कि यह योजना देश की पूरी सरहदी पट्टी विच व्यापक कवरेज प्रदान करन दी है, जो कि कश्मीर तो लैके सारे पासे फैली हुई है। श्री वैष्णव ने प्रसार भारती के समुचे ढांचे नूं बदलण दा सद्दा दिंदिआं तकनालोजी युग विच रेडियो नूं प्रसंगिक रखण लई डिजिटल फर्स्ट ते हाइपर लोकल पहुंच की लोड़ ते जोर दिता। उन्हां स्थानक कलाकारां ते कारीगरां नूं प्रसारण प्लेटफार्मां नाल जोड़न दी महत्ता ते भी जोर दिता। श्री वैष्णव ने जयपुर विच आउण वाले एआई डेटा सेंटर दा भी जिक्र कीता। इस नूं भविख दीआं तकनालोजीआं वाले इक महत्वपूर्ण कदम दस्या। इस समागम विच जयपुर दे संसद मैंबर मंजू शर्मा, प्रसार भारती दे चेयरमैन प्रसून जोशी ते आकाशवाणी दे डायरैक्टर जनरल राजीव कुमार जैन समेत होर सीनियर अधिकारियां ने शिरकत कीती। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बाद विच एमएनआईटी जयपुर दा दौरा कीता, जिथे उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, सैमीकंडक्टर और क्वांटम तकनालोजी विच नवीआं मेकर लैबां ते सहूलतां दा उद्घाटन कीता। एह खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल ए @EIRRN जलंधर। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल दी कुछ किस्मां ते एक्साइज ड्यूटी माफ कर दित्ती है। केंद्रीय खजाना मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन राही 22, 25, 27 और 30% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल ते केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी तो पूरी तरह छोट देने का ऐलान किया है। मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य भारत के इथेनॉल मिश्रण प्रोग्राम नूं मजबूत करना है, जिसका टीचा दरामद किए कच्चे तेल ते निर्भरता घटाना, कार्बन निकासी च कटौती करना अते घरेलू तौर ते विकसित किए इथेनॉल की मंग वधाउणा है। पलाऊ दे झंडे वाले व्यापारक जहाज एमटी सेटेबुल ते वापरी दुखदाई घटना तो बाद शुरू विच लापता हुए तीन भारतीय नाविका दी हुण मौत दी पुष्टि हो गई है।

0: नाविका दिया देहा मिल गई ने ते उन्हां दी पछाण कर ली गई है। श्री सोनोवाल ने इस दुखदाई घटना ते दुख जाहिर कीता ते इस नूं समुद्री भाईचारे लई इक डूंघा नुकसान दस्सिया है। उन्हां कहा कि सरकार इस मुश्किल समय दौरान दुखी परिवारां नाल मजबूती नाल खड़ी है। उन्हां भरोसा दिता कि मृतकां दे रिश्तेदारां नूं हर जरूरी सहायता दित्ती जाएगी। ओमान विच भारतीय दूतघर ने कहा कि उसनू अज सवेरे ओमान दे शिनास बंदरगाह दे नेड़े एक जहाज नाल संबंधित एक होर घटना बारे जानकारी मिली है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच दूतघर ने कहा कि उस स्थिति ते नेड़े नजर रख रहा है ते होर वेरवे लई स्थानक अधिकारियां नाल तालमेल कीता जा रहा है। सरकार ने 29 केंद्रीय किरत कानूनों नूं तर्कसंगत अते सरल बनाया अते उन्हां नूं चार व्यापक किरत जाब्तियां विच जोड़िया है। इसका उद्देश पालना नूं सरल बनाउणा, कामियां दी सुरक्षा अते समाजिक सुरक्षा नूं मजबूत करना अते कारोबार करन विच आसानी नूं उत्साहित करना है। किरत अते रोजगार राज मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड दे जिनेवा विच अंतरराष्ट्रीय किरत सम्मेलन दे पूर्ण सैशन नूं संबोधन करदे होए यह गल कही। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सरहद नेड़े भारतीय हवाई फौज के जहाज से हादसाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह गुमराहकुन है। प्रेस सूचना ब्यूरो की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह दावा झूठा है ते वीडियो पाकिस्तानी दुरप्रचार खात्या वालों प्रसारित किया जा रहा है। पीआईबी ने नागरिकों को अपील की है कि वह जनता को गुमराह करने के उद्देश्य सरहद पार तो चलाई जा रही दुरप्रचार मुहिमों तो सावधान रहें। दुनिया भर के खेड प्रेमी एक महीने तक चलने वाले फुटबॉल मुकाबले लिए तैयार ने। 2026 फीफा विश्व कप अज रात मैक्सिको सिटी के इतिहासिक एस्टाडियो एस्टेका विखे शुरू हो जा रहा है। उद्घाटनी मैच में मेजबान मैक्सिको ग्रुप ए के मुकाबले में दक्षिणी अफ्रीका खिलाफ मैदान च उतरेगा। यह मैच भारतीय समय मुताबिक दोपहर बाद 12:30 बजे शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली के राष्ट्रपति भवन विखे नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की प्रधानगी कर रहे हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भारत बुल्गेरिया संबंधा नूं होर गतिशील ते अगां वधू बनाउण दा सदा दिता है। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कश्मीर तो कच्छ तक देश के सरहदी इलाकों में आकाशवाणी ते दूरदर्शन कवरेज नूं मजबूत करने लई विशेष प्रबंध विकसित किए जा रहे ने। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म होंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 ते होएगा। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरकज़ और रियासतों की इज्तिमाई कोशिशें विकसित भारत के नज़रिए को हकीकत में बदलने में अहम साबित होंगी। इत्तिलात और नशरियात के वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हुकूमत भारत के सरहदी खितों में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कवरेज को मजबूत करने के लिए कोशिशें कर रही है। जनाब वैष्णव ने राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में 20 किलोवैट एफएम ट्रांसमीटर का इफ्तिताह किया। मरकज़ ने इथेनॉल की आमेजिश वाले पेट्रोल की कुछ अकसाम पर एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी है। टीएमसी रुकन पार्लियामेंट प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के रुकन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। पहले मेड इन इंडिया एयरबस C295 तैयारे ने वडोदरा में अपनी पहली परवाज मुकम्मल की। अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने आबनाए हुरमुज बंद करने का ऐलान किया है। और आज रात मैक्सिको में शुरू होने वाले एक महीना तवील फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा आलमी कप के लिए दुनिया भर के फुटबॉल मद्दा तैयार हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में कारोबार को फरोग देने, हुनरमंदी में इजाफा करने और रोजगार के मौके पैदा करने के इकदाम पर गौर खोज किया जाएगा। तबादला ख्याल के दौरान इज्तिमाई तौर पर अमलावरी का खाका तैयार करने पर भी तवज्जो मरकूज की जाएगी ताकि जवाबदेही को यकीनी बनाते हुए हुक्मरानी, डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे और साझेदारी को फाल बनाया जा सके। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि तआवुन पर मबनी वफाकी निज़ाम के जज्बे से रहनुमाई हासिल करते हुए मरकज़ और रियासतें भारत की तरक्की के सफ़र में तेज़ी लाने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मरकज़ और रियासतों की इज्तिमाई कोशिशें विकसित भारत के मुश्तरक विजन की तकमील में अहम किरदार अदा करेंगी। इस साल की मीटिंग का मौजू है विकसित भारत 2047 के लिए सबकी शमूलियत वाली इंसानी तरक्की।

0: reported interceptions of incoming drones. Reports.
1: Sports fans across the world are set for a month-long football spectacle as the 2026 FIFA World Cup kicks off tonight at the historic Estadio Azteca in Mexico City.
2: This edition of the World Cup will be the biggest in history, with an expansion from 32 to 48 teams. A record 104 matches will be played, with 72 in the group stage and 32 in the knockout rounds across host nations, United States, Canada and Mexico. The three host nations qualified automatically, while 45 teams earned their places through a demanding two-year qualification journey. The competition features 12 groups of four teams each. The top two teams from every group, along with the eight best third-place teams, will advance to the round of 32. This expands the knockout stage to 32 teams for the first time in tournament history. The grand final is scheduled for 19th of July, promising a thrilling conclusion to football's greatest celebration. This World Cup is also expected to be one of the most challenging in history, with teams facing demanding conditions across three countries, including long travel distances, varying climates, different altitudes, and shifting time zones. Over the decades, only eight nations have lifted the FIFA World Cup trophy: Brazil, Italy, Germany, Spain, Argentina, England, France and Uruguay, the inaugural champions. Among the most unfortunate sides in World Cup history remain the Netherlands, who have reached three finals but are yet to win the title despite producing generations of world-class talent. From history to high stakes, from legends to new challengers, the stage is set for football's ultimate battle. Shagun Chopra from Sports Desk.
1: And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi stresses collective efforts of centre and states key to realising Vikasit Bharat vision, chairs 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav inaugurates 20 kilowatt FM transmitter in Rajasthan's Jaisalmer. Centre waives excise duty on certain variants of ethanol blended petrol. First made-in-India Airbus C-295 aircraft completes maiden test flight from Vadodara. And with that, we end the midday news.
3: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Lavleen Nigam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
4: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर DG साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
3: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
4: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, मतलब जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
3: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewzOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
5: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
3: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
5: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला

0: श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
1: ओमान की खाड़ी में पलाऊ ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमरीकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
2: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जोर्दा में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जोर्दान के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है, लेकिन जोर्दान या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स एट AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए AI द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या SMS सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
0: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने

0: भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं, प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।
1: सच कह रहा है दीवाना।
0: नमस्कार दोस्तों, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मनोज, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कलाकार की, ऐसे एक्टर की, जिसने अपनी मोहक मुस्कान और कमाल की एक्टिंग से उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर दिल पर राज किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे अपने मैडी यानी आर माधवन साहब की। जमशेदपुर के एक साधारण परिवार से निकलकर नेशनल अवार्ड विनर बनने तक का ये सफ़र कैसा रहा, आज जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं उनकी उस फिल्म से जिसने उन्हें रातों रात एक लड़की का क्रश बना दिया और हजारों युवाओं के दिल में उन्हें मशहूर कर दिया।

सच कह रहा है दीवाना। जी हाँ, मैडी और रीना की वो लव स्टोरी आंखों के सामने आ जाती है जब हम ये गीत सुनते हैं। लेकिन श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि माधवन कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे? वो तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर चुके थे और इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, मगर किस्मत उन्हें मुंबई ले आई और टीवी सीरियल जैसे बनेगी अपनी बात और सी हॉक से उन्होंने शुरुआत की। फिर मणिरत्नम की फिल्म अलाई पायुथे, जिसने साउथ में तहलका मचा दिया, और उसी का हिंदी रीमेक था रहना है तेरे दिल में। चलिए आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का एक और बेहद ही खूबसूरत गाना और यादें ताज़ा करते हैं।

वेलकम बैक दोस्तों। और एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं आर माधवन साहब की। बेड़ी की खासियत ये है कि वो सिर्फ रोमांटिक किरदारों में नहीं बंधे। बात करें साल 2006 में आई उनकी फिल्म रंग दे बसंती की, उनका रोल सिर्फ 9 मिनट का था, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौर का। लेकिन उस 9 मिनट के रोल में उन्होंने जो किरदार निभाया वो बहुत ही ख़ास था और जिसने करोड़ों दर्शकों को भावुक कर दिया, या ये यूँ कहें कि रुला दिया। इसके बाद मणि रत्नम साहब की फिल्म आई गुरु, जिसमें उन्होंने अभिषेक बच्चन के सामने के ईमानदार पत्रकार श्याम सक्सेना का किरदार निभाया। और रंग दे बसंती में जो उन्होंने किरदार निभाया, आज भी जब हम उस फिल्म को देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए आपको इसी फिल्म का एक गीत आपको सुनवाते हैं ताकि आप भी एंजॉय करें।

0: एक ही कलाकार हमारे श्रोता सुन रहे हैं आज ये कार्यक्रम, और आपका एक बार फिर स्वागत है। और अब बात उस फिल्म की जिसने भारतीय सिनेमा के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए, साल 2009 की फिल्म। ये फिल्म थी थ्री इडियट्स। माधवन साहब ने निभाया फरहान कुरैशी का दमदार किरदार, जो इंजीनियरिंग तो कर रहा है पर उसकी असली दिली ख्वाहिश वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने की है। श्रोताओं, वो सीन आपको याद ही होगा जहाँ पर वो अपने अब्बा को समझाते हुए कहता है, अब्बा अगर मैं फोटोग्राफर बन गया तो क्या होगा, कम पैसे कमाऊँगा, छोटी गाड़ी होगी, लेकिन मैं खुश रहूँगा अब्बा। इस एक सीन ने देश के लाखों युवाओं को अपने सपने जीने की हिम्मत दी। तो चलिए कॉलेज के उन दिनों को याद करते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत गाना।
1: जाने नहीं देंगे तुझे

श्रोताओं, अभी तक हमने माधवन साहब को चुलबुले और सीरियस लोन में देखा है, लेकिन 2011 में आनंद एल राय लेकर आए तनु वेट्समैन हूं, लंदन रिटर्न सीधे साधे डॉक्टर यानी मनु के रोल में माधवन ने कमाल कर दिया। कंगना रनौत की तनु के नखरों के बीच मनु की सादगी ने सबका दिल जीता। ये फिल्म और इसका सीक्वल तनु वेट्स मनु रिटर्न ब्लॉकबस्टर रही। चले इसी देसी शादी के माहौल का मजा लेते हैं और सुनते हैं ये सुपरहिट गाना।

श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत गाना है और हम बात कर रहे हैं आर माधवन साहब की। माधवन साहब की तो उम्र बढ़ी लेकिन माधवन जी का हुनर निखरता गया। साल 2022 में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। इसरो के महान वैज्ञानिक नंबी नारायणन के जीवन पर फिल्म बनानी और उस फिल्म का नाम था रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। माधवन ने इस फिल्म को सिर्फ एक्ट ही नहीं किया बल्कि इसे लिखा और डायरेक्ट भी किया। इसके लिए उन्हें बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला। एक ऐसा

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के हमारे कलाकार थे आर माधवन साहब। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर।

60 का दशक वो दौर था जब रोशन, ओपी नैयर, कल्याण जी आनंद जी और आरडी बर्मन ने नई ताजगी भरी गीतों को हम तक पहुंचाया। कुछ ऐसे गीत थे जो अमर हो गए, जिनमें से अभी आप ये गीत सुन रहे थे। और अगला गीत हमने आपके लिए चुनकर लिया है फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से, आवाज लता मंगेशकर की। तो चलिए इस गीत को सुनिए और आपके जो संदेश हैं उनको भी हम शामिल करेंगे। कुछ खास याद है तो वो भी आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।

50 और 60 के दशक में अधिकांश गीत एक ही माइक्रोफोन के सामने पूरी ऑर्केस्ट्रा और गायकों द्वारा एक साथ रिकॉर्ड किए जाते थे। गलती होने पर पूरा गीत फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता था। शायद यही वजह है उन गीतों में आज भी एक अलग ही जीवंत और आत्मीयता महसूस होती है।

रफ़ी और लता जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म कोहिनूर से ये खूबसूरत सा गीत। और आपको बता दें कि ये वो दौर था जब उस खूबसूरत इमारत की नींव खड़ी की थी, जिसमें खूबसूरत से आज हम गीतों के एक सागर को देखते हैं, एक बगीचे को हम देखते हैं। वो समय था जब राजेश खन्ना का दौर शुरू होने वाला था, लेकिन पर्दे पर राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद और शमी कपूर का जादू छाया हुआ था। गायकी में मोहम्मद रफ़ी अपने स्वर्णिम दौर में थे, वहीं लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ हर नायिका की पहचान बन चुकी थी। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत जिसे हमने लिया है फिल्म

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज़। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 3:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

आप पेश है प्रोग्राम अंदाज़े नज़र। सामईन, हमारा मुल्क तकरीबन 200 साल बाद अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ। हिंदुस्तान के बहुत से बहादुर जवानों ने आज़ादी हासिल करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई और लाखों ने जेल की सख्तियां बर्दाश्त कीं। बहुत से जवानों ने आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। उन्हीं में एक नाम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का भी है। आज उनका यौम पैदाइश है, कौम उनके बलिदान को याद कर रही है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल 11 जून सन 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पैदा हुए। वो मर्द मुजाहिद के साथ एक अच्छे अदीब, शायर और तारीख़दा थे। उन्होंने कई किताबें लिखीं। उन्होंने अपनी तहरीरों से लोगों को आज़ादी के लिए बेदार किया। कई इनकलाबी नज़में लिखीं। वतन को आज़ाद कराने की उनके दिल में तड़प और लगन थी। उनके साथियों में अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, भगवती सरन और राजगुरु वगैरह थे। बरतानिया हुकूमत उनसे ख़ासा परेशान थी। उनका सबसे अहम काम काकोरी ट्रेन डकैती में हिस्सा लेना और पंजाब असेंबली पर बम फेंकना था। वो हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के मेंबर भी थे। बरतानिया हुकूमत ने उन्हें 19 दिसंबर सन 1927 को फांसी की सज़ा सुनाई। तख्तायदार की तरफ वो खुशी खुशी गए और मौत को गले लगा लिया। उनके अशार मुलायजा हों, रवा है बुलबुले शैदा चमन के वास्ते मरना, रवा है बुलबुले शैदा चमन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते जीना वतन के वास्ते मरना, वतन से दूर क्या परदे। सामीन, मुजाहिद आज़ादी की बात हो रही है तो जंग आज़ादी में उर्दू सहाफ़त ने एक अहम रोल अदा किया है। उर्दू सहाफ़त की तारीख बहुत पुरानी है। यह हमारी तहजीबी, अदबी और समाजी ज़िंदगी का अहम हिस्सा रही है। इसने न सिर्फ आवाम को ख़बरें फराहम की बल्कि कौम में शऊर, बेदारी और इत्तेहाद पैदा करने में नुमाया किरदार अदा किया है। वक्त के साथ साथ उर्दू सहाफ़त में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। अपने रिवायती अंदाज से आगे बढ़कर इसने डिजिटल दुनिया में कदम रखा है। अब ख़बरें सिर्फ कागज़ तक महदूद नहीं बल्कि सोशल मीडिया के ज़रिए लम्हों में दुनिया भर में पहुंच जाती हैं। तो आइए सामेईन, इसी सिलसिले में एक मुबाहिसा सुनते हैं। मौजू है उर्दू सहाफ़त में बदलता चेहरा, रिवायत से डिजिटल तक। निज़ाम

हमारे साथ है डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद साहब, जो कि डीन है स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मानू यूनिवर्सिटी के, मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, और काफ़ी लंबा तजुर्बा फरियाद साहब का रहा है। मुंसिफ टीवी के एडिटर खुर्शीद रब्बानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुंसिफ टीवी से पहले वो कई और चैनल में भी काम कर चुके हैं, और सीनियर सहाफ़ी मारूफ रज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कई टीवी चैनलों में और अखबारों में काम कर चुके हैं, काफ़ी लंबा तजुर्बा इनका है।

0: उतार चढ़ाव आए हैं, मगर वो मशाल जारी है। उसके साथ ये भी सच है कि जब मुल्क आज़ाद हो गया तो उर्दू ज़बान के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुईं कि जो शायद उसको, जो मशाल की उसकी ताकत थी या जिस मिशन के साथ ये उर्दू सहाफत आगे बढ़ रही थी, उसमें थोड़ा ब्रेक लगा। और शायद बहुत बड़ी वजह ये थी क्योंकि मुल्क दो हिस्सों में बंट चुका था, और शायद बहुत बड़ी वजह ये थी चूँकि जो मुल्क दूसरा बना था एक मज़हब के नाम पर, उसकी ज़बान भी, जो उसकी कौमी ज़बान या फिर जो उसकी नेशनल लैंग्वेज या सरकारी ज़बान जो बनी, वो उर्दू थी। तो उस वक्त शिद्दत के साथ जो एडिटर्स थे उन्होंने ये इस बात को महसूस किया कि जो उसका रोल आज़ादी से पहले था, उस रोल में कुछ कमियाँ देखने को मिली। और कई बार मजबूती ज़रूर मिली, मगर वक्त के साथ हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता जो उर्दू सहाफ़त है वो, अगर ये कहा जाए कि जवाल पजीर होगी, तो मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति, अगर मैं हिंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, नहीं होगी, क्योंकि ये बात सच है। और पिछले अगर हम 10-11 बरसों की बात करें तो बहुत सारी शिकायतें उर्दू तबके की और जो उर्दू अखबार निकालने वाले हैं, जो मालिकान हैं या जो एडिटर्स हैं, उनके साथ बंदिशें भी हैं और बहुत सारी दुश्वारियाँ भी उनके सामने हैं। शायद यही वजह है कि जो एक मकाम था, ठीक है 1857 की क्रांति भी है, उससे पहले भी है, 1857 तक मुझे लगता है कि 1822 में पहला अखबार शुरू हुआ, ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, आज़ादी के बाद भी अगर आप देखें हिंदुस्तान में, और ख़ास तौर से पिछले 25 वर्षों में, कहीं ना कहीं जहनों में इसको रखने की ज़रूरत है, इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि क्या वजह है कि जो बात 47 से पहले थी वो 47 के बाद क्यों नहीं रही। और आज ये आलम है कि सबसे पहली बात ये होती है कि एक्सेप्टेंसी क्या है समाज में, सिस्टम आपकी सहाफत को कैसे देख रहा है। तो मुझे लगता है कि मोटे तौर पर बहुत ज़्यादा वैल्यू आज की डेट में मोटे तौर पर नहीं रही। कुछ स्टेट्स की बात अगर हम छोड़ दें, मगर नेशनल लेवल पर वो बात नहीं है जो आज़ादी से पहले थी।
1: मरूफ साहब, जैसा कि अभी खुर्शीद रब्बानी साहब ने बताया कि आज़ादी के बाद उर्दू के साथ कहीं ना कहीं लोगों की दिलचस्पी भी उर्दू पढ़ने में, पढ़ाने में अपने बच्चों को काफ़ी कम हो गई, तो अगर हम आज़ादी के बाद के कई मरहलों को देखें, भाई शुरुआत के अगर हम 15-20 साल की बात करें, तो उस वक्त उर्दू के कई बड़े अखबार निकलते थे, अल जमियत था, प्रताप था, मिलाप था, कौमी
2: आवाज़,
1: उसके एडिटर लंबे समय तक मोहन चरागी रहे, तो वो जो एक सिलसिला था। तो क्या हम ये माने कि भाई उर्दू के प्रति जो लोगों की दिलचस्पी उसमें कम हो गई, आज़ादी के बाद से उर्दू सहाफत पर एक तरह से जवाल आया, तो क्या वजह हो सकती है इसकी कि क्यों उर्दू पढ़ने में और अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाने में लोगों की दिलचस्पी कम हो गई? उसी वजह से ये रहा कि भाई हम खुद देखते हैं कि हमने खुद बचपन में उर्दू भी पढ़ी और नर्सरी स्कूल में भी हम लोग पढ़े, लेकिन हमारे बच्चों को उर्दू पढ़ाने के लिए घर अलग से उस्ताद नहीं है, तो ये क्या वजह इसकी हो सकती है?
2: घर को आग लगा दी घर के चिराग ने, यह एहसास कमतरी और कुछ भी नहीं। अगर हम नहीं चाहेंगे तो हमें कौन कहेगा? सर सैयद अहमद ख़ान हमेशा कहते थे कि जो कौम खुद को बदलना नहीं चाहती उसे कोई बदल नहीं सकता। ऑफिशियल लैंग्वेज ठीक है पड़ोस ने अनाउंस की, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं था कि आप अपनी ज़बान को गिरवी रख दें, बेच दें, बोलना छोड़ दें, लिखना छोड़ दें, पढ़ना छोड़ दें या सुनना छोड़ दें। अगर हम इस बात को करें तो आज हमारे इस खूबसूरत मुल्क में बहुत सारी ज़ुबानें हैं। कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले दो कोस पर बानी, तो आप देखें क्या हम कहेंगे कि बंगाली जो है वो बंगाली छोड़ दी उसने, या जो तमिल में बात करता है उसने तमिल छोड़ दी, या जो कन्नड़ है वो बात नहीं करता, या पंजाबी फ़ख्र से अपनी पंजाबियत का इजहार नहीं करता। यह एहसास कमतरी हमारे अपने अंदर है जिससे हमें बाहर निकलने की सख्त ज़रूरत है। हम खुद देख लें, कॉन्वेंट के इस ज़माने में हमने अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी कर दिया, मशरूफ कर दिया कि हमारे बच्चे कितनी अच्छी अंग्रेज़ी बोल लें उस पर बड़ा जोर है। कितना खूबसूरत तरीके से हमारा बच्चा स्पीच बोल लें अंग्रेज़ी में वो बहुत फ़ख्र से बोलते, लेकिन कितनी अच्छी वो उर्दू बोल ले इसकी फिक्र हमारे अंदर से निकल गई। मैं यूँ कहूँ कि आज के इस माशरे में अगर हम मुहासबा करें तो हमारे अपने घरों में उर्दू अखबार की रसाई नहीं है, हम ख़रीदते नहीं हैं, हम पढ़ते नहीं हैं। हम बात कर रहे थे जंग आज़ादी की, जंग आज़ादी में एक से एक कारनामे थे, वो अखबारात नहीं थे, वो मुजाहिदे थे जिनके असरात आज है कि हम आज़ाद फ़ज़ा में, इस आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। वो टूल्स थे, वो टूल्स थे उस बरतानवी सरकार के खिलाफ, वो प्रोफेशन नहीं था, वो पेशेंस थे, जज्बात थे जिनको उकेरा जाता था। अक्सर वहाँ पर एक वैकेंसीज निकलती थी जिसमें लिखा जाता था कि एक एडिटर चाहिए, उसकी तनख्वाह क्या होगी कि एक कटोरा पानी और काले पानी की सज़ा। और आप यकीन मानिए कि कितने लोग उसमें बाकायदा ज्वाइन करते थे, एडिटोरियल लिखते थे, और एडिटोरियल लिखते ही उनको काले पानी की सजाएं हो जाती थी। वो जज्बा इस हिंद की मिट्टी ने दिया था। आप देखिए गोपीचंद नारंग, आप आज भी देखिए, आज के ज़माने में भी जितने भी मैं कहूँ कि बुलंद मर्तबा जो उर्दू

0: तहफ़ुज़ करने वाले लोग हैं उनमें हमारे दूसरे हजरात भी हैं, तो उनको यह एहसास कमतरी नहीं होता है, हमें ही होता है। ज़रूरत यह है कि ठीक है, जैसे खुर्शीद रब्बानी साहब ने कहा और बड़ी अच्छी मिसालें दी, और ये गंगा जमुनी तहजीब हमारे देश की मिसाल है कि हम जब ईटीवी में थे, ईटीवी उर्दू शुरू करने वाले, तेलुगु चलाने वाले, काम करने वाले सारे उर्दू, हम आप। लेकिन ये शुरुआत हमारी तंजीमों ने क्यों नहीं की? आपके पास ज़राए हैं, आपके पास अशासे हैं, आपके पास माल भी है, आपके पास कुव्वत भी है, लेकिन वो सोच क्यों डेवलप नहीं होती? या तो हम उसको जानबूझ के नहीं करना चाहते, या सिर्फ हम बार बार रोना रोना चाहते हैं। बच्चे को दूध भी माँ तभी दूध पिलाती है जब तक वो रोता नहीं है। तो पहले हमें अपने अंदर से उस एहसास से कमतरी को निकालना होगा। जैसे कहते हैं कि अभी एक शख्स निकला है, एक खुशबू सी आई है, लगता है शायद वो उर्दू बोलता है। तो वाकई उर्दू वो मीठी वो सीधी ज़बान है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बोली जाती है। जब तहजीब और तमद्दुन का जिक्र होता है तो जाहिर सी बात है जब उर्दू वाला बोलता है तो कान खड़े होते हैं और धड़कनें तेज़ हो जाती है कि हाँ वाकई कोई बोल रहा है, चलो उसको सुना जाए। तो इस एहसास कमतरी के औरा से हमें बाहर निकलना होगा। सहाफत आज भी जिंदा है, लिखने वाले आप जैसे, हम जैसे, खुर्शीद रब्बानी जैसे, डॉक्टर फरियाज साहब जैसे और बहुत सारे हैं जो मौजूद हैं। तो हमें इस अंडर एस्टिमेट जो एरा है उससे निकल के बाहर आना है ताकि उर्दू को उस उरूज को वापस जिंदा किया जा सके।
1: मारूफ रजा साहब ने बहुत ही अहम बातें बताई हैं, और उनका जो एक जोर है कि भाई उर्दू बोलने वाले, उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोगों की दिलचस्पी खुद ही कम हो गई है। और तो उसमें हमने देखा कि साहब जो बड़े इदारे चल रहे थे, जैसे एक बड़ा अखबार बॉम्बे से निकलता था, बाद में उसे उन्होंने बेच दिया। अब क्यों बेचा, क्या हुआ, वो भी बता रही हो।
0: यूसुफ, मैं कथा कलाजी यहाँ पर, खुर्शीद साहब, फरियाद साहब, आपसे की तवज्जो चाहूँगा। यहाँ पर हमारे पंजाबी अकेडमी है, वो हमसे कम तादाद में है, वो तो रोना नहीं रोते। तमिल है, बाकी मराठी, सब जाए जितने भी लैंग्वेजेस को देख लें, क्या कभी उनका रोना सुना हमने कभी?
1: जी बिल्कुल।
0: क्या उनकी तंजीमों में कमी आई, उनके अखबारात या जो चैनल्स हैं उनमें कमी आई, उनके स्टैंडर्ड में कमी आई? नहीं। तो हमारे क्यों कमी आई?
1: नहीं, बहुत अहम बात उन्होंने उठाई। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उर्दू सहाफत के सामने खासकर आज़ादी के बाद क्या चैलेंजेस रहे? जैसे एक तो हमारी समझ में आता है कि जब हम छोटे थे, हम देखते थे उर्दू अखबार निकलता था तो वहाँ पर वो हाथ से लिखा जाता था, टाइप मशीन शायद नहीं थी। लेकिन आज जो क्रांति हुई है इलेक्ट्रॉनिक आईटी में, उसमें फोनेटिक आ गया है, यूनिकोड आ गया है, यूनिकोड में तमाम भाषाएं हैं, उसमें उर्दू भी है। कि एक चीज़ मैं ये देख पा रहा हूँ कि कुछ साल में, पिछले कुछ साल में, वो हालांकि एक अलग डिबेट है कि सब उर्दू को पर्शियन लिपि में लिखा जाए कि देवनागरी में लिखा जाए, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। तो आप इस मुद्दे पे ज़रा रोशनी डालिए कि आज़ादी के बाद से उर्दू सहाफत को ज़िंदा रखने के लिए क्या क्या चैलेंजेस थे, और आज के दौर में वो चैलेंजेस बढ़े हैं या कम हुए हैं।
2: देखिए, जैसा कि अभी जनाब मारूफ साहब ने पहले ही बताया कि जंग आज़ादी मुकम्मल हो गई, आज़ादी हासिल हो गई, उस वक्त तक वो मिशन था, प्रोफेशन नहीं था। हर किसी का बस एक ही मकसद था कि हमारा मुल्क आज़ाद हो, हिंदुस्तान आज़ाद हो और हम सब खुली फ़ज़ा में सांस ले सकें। ठीक है, 1947 में हमें वो अचीव हो गया, हमें हासिल हो गया। उसके बाद क्या? उसके बाद उर्दू सहाफत के सामने एक बड़ा मसला था कि अब हम आज़ाद तो हो गए, अब क्या करें? जाहिर से बात है, उसके बाद टेक्नोलॉजी भी बहुत बदली, नई नई चीज़ें आई। उर्दू सहाफत का जो एक अलमिया है कि मैं इस बात को मानता हूँ कि हम उर्दू वाले शायद एहसास कम तरीके शिकार रहे। हमने जो वक्त के बदलते हालात थे उसको देर से समझा, हमने टेक्नोलॉजी को थोड़ा देर से अपनाया, हमने अपनाया लेकिन थोड़ा देर से, ताखीर की। शायद यही वजह है कि हम दूसरों से थोड़े पीछे रह गए। आज भी जैसे आप सब वाकिफ़ हैं कि आज तमाम उर्दू के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है जितने बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंग्लिश में हैं, हिंदी में हैं, उर्दू में वो टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा आम फहम नहीं है। एक ये वजह हो सकती है। दूसरा, उर्दू अखबारों के सामने एक जो बड़ा मसला था वो मसला ये था कि उर्दू सहाफ़त किसी वजह से वो रेवेन्यू हासिल नहीं कर पा रही थी, वो कमाई उर्दू सहाफत के सामने नहीं थी जो दिगर ज़बानों के सामने थी। और ये वही वक्त था जब अंग्रेज़ी फ़रोग पा रही थी हिंदुस्तान में, और कहीं ना कहीं सरकारी कामकाज में अंग्रेज़ी की थोड़ी फोकियत थी, पूरी दुनिया में अंग्रेज़ी फैल रही थी तो हिंदुस्तान में भी उसका असर दिख रहा था। शायद यही वजह है कि उस वक्त तक उर्दू थोड़ा एक पसमानदा ज़बान समझी जा रही थी, और इसका असर हमारे अखबार या जो भी दूसरे बाद में जो टीवी चैनल्स वगैरह आए उसमें भी देखने को मिलता था कि जो मवाद है, जो कंटेंट है, वो उतना अपडेटेड नहीं था जितना अंग्रेज़ी चैनल्स में या अखबारात में था। और बाद में हिंदी ने भी बहुत अच्छी तरक्की की, और एक मुहिम

0: मैं देखता हूँ आज़ादी के 20-25 बरस बाद हिंदी को लेके जो जज्बा पैदा हुआ, और उसकी वजह ये रही कि और हमारे मुल्क में कहीं ना कहीं जो लिटरेसी रेट है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ी हमें आज़ादी हासिल होने के बाद। इसकी वजह से अखबारात तो बहुत बढ़े, तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ, लेकिन उर्दू अखबारात थोड़ा पीछे रह गए। आपने जैसे जिक्र किया अभी कि वो हाथ से जो उनकी हुआ करती थी, तब तक कंप्यूटर नहीं आया था, और जब कंप्यूटर भी आ गया तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, शायद ये वजह रही हमने इसको अपनाया थोड़ी देर से। दूसरी एक बात जो अहम दिखती है, मतलब मेरा अपना ये मानना है, मैं चूँकि यूनिवर्सिटी में भी मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि हम सब उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम हिंदी से भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसी वक्त हमें अंग्रेज़ी सीखना भी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ ख़ुद बनारस से है और पिछले 18-20 सालों से हैदराबाद में हूँ, मैं खुद तेलुगु सीख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जितनी ज़्यादा ज़बानें सीखेंगे हम उतना ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे सहाफ़त में। उर्दू वालों के साथ एक अलमिया ये रहा कि वो सिर्फ़ उर्दू तक महदूद रहना चाहते थे, शायद इसकी वजह से भी उर्दू महदूद होती चली जा रही है। अगर उर्दू वाले उर्दू के साथ साथ अंग्रेज़ी भी सीखें, दूसरी हिंदुस्तान की जो दीगर ज़बानें हैं, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मराठी है, वो भी सीखते हैं, बैरूनी मुल्क की ज़बान फ्रेंच, रशियन, इटालियन भी सीखते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका मुस्तकबिल ज़्यादा ताबनाक होगा, ज़्यादा रोशन होगा, वो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। अच्छा, उर्दू के साथ एक और अच्छी बात यह है कि उर्दू लश्करी ज़बान है, तमाम ज़बानों से मिल के बनी हुई है, दूसरे ज़बानों के असरात इसमें मुरतब होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें इस बात पे कराहियत नहीं होनी चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें जो अंग्रेज़ी की हैं उसको हम कबूल करें, हिंदी के बहुत सारे जो जुमले हैं, अल्फाज हैं, जो वो है वो भी हम कबूल करें और उर्दू को हम आगे बढ़ाएं। आज के दौर में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है उर्दू सहाफ़त में, आज देखिए आज डिजिटल मीडिया पर उर्दू की अच्छी मौजूदगी है, लेकिन अभी भी कहीं जो मवाद है वो थोड़ा सा उतना अपडेटेड नहीं है जितना अपडेटेड अंग्रेज़ी के कंटेंट मिलेगा। और आज हमें लगता है कि हम बड़े फ़ख्र के साथ ये बात कहते हैं कि हिंदी सहाफ़त भी बहुत अच्छा कर रही है, मतलब अंग्रेज़ी से बहुत कमतर नहीं रहेगी, अंग्रेज़ी के बराबर है और कहीं कहीं मुझे लगता है उनसे ज़्यादा अपडेटेड है। तो हमें लगता है उर्दू के साथ भी हमें कुछ इसी तरह का सलूक करना चाहिए, हम थोड़े रिसर्च बेस्ड काम नहीं हुए, चाहे वो टेक्नोलॉजी के एतबार से। उर्दू के जो सॉफ्टवेयर्स आए जो इनका इस्तेमाल मीडिया में होता रहा वो काफ़ी ताखीर से आए। अगर हम बात करें कि टाइपिंग की भी बात करें, ठीक है आज गूगल वर्ड्स पे भी आप टाइप कर सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आज हम बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं, मैं कभी मना नहीं करता, बिल्कुल अंग्रेज़ी पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, लेकिन साथ साथ उर्दू भी उनको पढ़ाइए। मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान की हर शख्स को हिंदुस्तान का जो तीन ज़बानों का जो फार्मूला था उसे अपनाना चाहिए कि अगर हम अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो एक साउथ की ज़बान भी पढ़ाएं, अगर हम उर्दू पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो एक ज़बान और सीखें। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हमें मदद करेगा उर्दू सहाफ़त को उसका जो मकसद है उसे हासिल करने में।
1: डॉक्टर फरियाद साहब, आपने बहुत ही अहम बातें बताई और कई जो चैलेंजेस थे उनको, एक मुझे लगता है क्योंकि मैं भी सहाफ़त में करीब करीब 30 साल हो गए हैं, मैंने जो बात नोट की है और बाकी हमारे साथी खुर्शीद रब्बानी साहब, मारूफ रजा साहब उस पर रोशनी डालेंगे, मुझे लगता है कंटेंट की जो आपने बात कही, उर्दू में अक्सर ये देखा गया है कि ओरिजिनल कंटेंट की कमी उर्दू सहाफत में शुरू से रही है। उन पर तो उर्दू में बड़ा ओरिजिनल कंटेंट मिलता है, लेकिन बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं, मेन स्ट्रीम है, वहाँ ओरिजिनल कंटेंट नहीं आता, वो अंग्रेज़ी से शुरू होता है, अंग्रेज़ी से ट्रांसलेट होकर हिंदी में भी आता है, फिर वो उर्दू में भी आता है। आज भी बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो ओरिजिनली तो अंग्रेज़ी में लिखते हैं, बाद में उसका तर्जुमा वो। रब्बानी साहब, आप ने चूँकि अखबार में भी काम किया है, टीवी में भी काम किया है और डिजिटल में भी आपने काम किया है, तो इस मुद्दे पर आप किस तरह से सोचते हैं कि आखिर क्या वजह है कि उर्दू जर्नलिज्म में ओरिजिनल कंटेंट की कमी रही है और डिजिटल के दौर में क्या उस कमी को दूर किया जा सकता है?
2: बिल्कुल, दो तीन चीज़ें हैं जिनके ऊपर गौर व फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। जैसे शुरू में बात हुई कि मिशन से कब प्रोफेशन में बदल गई कोई एक चीज़, और शायद ये बड़ी वजह है कि फिर उसके साथ चूँकि हर एक चीज़ के लिए रेवेन्यू की ज़रूरत है, ये भी सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये भी सच्चाई है कि तहकीकी जो ख़बरें हैं वो उर्दू सहाफ़त में कम मिलती हैं। अक्सर जब हम उर्दूदा तबके के बीच बैठते हैं, ख़ासतौर से उर्दू सहाफ़ियों के बीच बैठते हैं, तो वहाँ पर इस बात का बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ जिक्र होता है कि अगर आपके पास कोई प्रेस नोट आ गया तो उसमें उस प्रेस नोट को एज इट इज़ पब्लिश कर देंगे, अगर किसी की मौत की भी खबर आ गई तो ये तहकीक किए या एक फ़ोन घुमाए बगैर ही उसको छाप दिया जाएगा, भले ही कोई आपका टेस्ट ले रहा हो। तो ये एक बड़ा मसला है। ये भी सच्चाई है कि आप कम से कम, मैं 15 से 20 साल का ये एग्जांपल दे सकता हूँ कि आप अखबारात उर्दू के उठा करके देख लीजिए, फिर अंग्रेज़ी और हिंदी के अखबार उठा करके देख लीजिए कि कितनी उर्दू की खबरें, एक्सक्लूसिव खबरें, ओरिजिनल कंटेंट जो उर्दू का था वो अंग्रेज़ी या हिंदी ने लिया है। फिर ये देखिए कि अंग्रेज़ी

0: का और हिंदी का कितना कंटेंट उर्दू वालों ने लिया है, तो इसी से तय हो जाएगा कि उर्दू सहाफ़ियों ने, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मतलब अगर हम आईना देख रहे हैं और उसमें कुछ हमें हमारी कमियां नज़र आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये एहसास कमतरी नहीं है, बल्कि अपनी कमियों को, खामियों को देख करके उसे दुरुस्त करने का एक बेहतर वक्त हो सकता है। मैं दो तीन एग्जाम्पल आपको दूंगा कि कैसे हम तकनीक अपनाने में उर्दू का तबका थोड़ा सा पीछे रहता है। देखिए, आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि हमने छपाई की मशीन को अपनाने में कितना वक्त लगा दिया, बाकी चीज़ों को हो सकता है तकनीकी चीज़ें हों जो है वो आपके साथ तकनीक उतनी ज़्यादा मेल जोल ना खाती हो, तो उसमें भी हम पीछे रहे हैं। तो मैं दो तीन एग्जांपल आपको देता हूँ। देखिए, न्यूज़ 18 उर्दू 15 अगस्त 2001 में स्टार्ट हुआ, उसका यूट्यूब चैनल यानी डिजिटल पर वो कब आया, 2010 में, तकरीबन 10 साल बाद। ठीक, क्या वजह है? जी सलाम, 2010 में शुरू हुआ और 2017 में वो यूट्यूब पर आया, फेसबुक पर भी आया होगा, ट्विटर पर अभी है, मतलब पिछले 5-7 साल से एक्स जिसको कह बना दिया गया है। ठीक है, आलमी सहारा 2010 में आया और 2010 के बाद यूट्यूब पे 13 में आया, 3-4 साल के बाद आ गया। डीडी उर्दू 2006 में शुरू हुआ और 2013 में वो यूट्यूब पर आया। तो अब यहाँ पर इस बात को समझने की ज़रूरत है कि टेलीविज़न जो है वो सिर्फ अब टेलीविज़न नहीं रह गया, बल्कि उसके बहुत सारी शक्लो सूरत होगी, बहुत सारे रास्ते होंगे देखने के। उसमें FB भी है, उसमें X भी है, उसमें YouTube भी है, उसमें जो है इंस्टा भी है, उसमें दीगर और बहुत सारे ज़राए हैं, OTTs भी हैं। तो वहाँ वक्त के साथ बदलाव क्यों नहीं आया? तो फिर अगेन बात यही होगी, क्या सोचो फिक्र की कमी है, क्या विज़न की कमी है, या फिर वसाइल का इशू है? और वसाइल का इशू अगेन रेवेन्यू से कहीं ना कहीं है। तो बहुत सारे बड़े घराने हैं, मीडिया घराने, जिन्होंने उर्दू चैनल शुरू किए और उर्दू चैनल के साथ अच्छा सलूक किया, ये भी सच्चाई है, मगर फिर भी कुछ ना कुछ कमियां और खामियां रही हैं, तो उन्हें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ये खुद उर्दू सहाफ़ियों की जिम्मेदारी है, उसमें हम सब लोग शामिल हैं कि हम कैसे कम से कम वसाइल में, कम से कम सुख सुविधाओं में हम बेहतर करने की कोशिश करें। सच्चाई है ये कि बहुत सारी इश्यूज़ हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, मगर उन परेशानियों से निकलने के रास्ते भी हमें कहीं ना कहीं तलाश करने होंगे और आगे बढ़ने के लिए भी जद्दोजहद हमें ही करनी होगी।
1: मारूफ रजा साहब, जो खुर्शीद रब्बानी साहब ने एक बुनियादी सवाल उठाया कि आखिर क्या वजह है कि हम कंटेंट के मामले में पिछड़े रहे हैं, मुकाबला नहीं कर पाते हैं अंग्रेज़ी का या हिंदी वालों का, इसके पीछे क्या वजह आप देखते हैं?
2: देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम पढ़े लिखे समाज में रहते हैं और हमारा पेशा भी पढ़ने लिखने का है। जब हम पढ़ने की आदत डाल लेंगे तो जाहिर सी बात है तस्दीक का, तहकीक का मादा अपने आप आ जाएगा और चीज़ें आती हैं। इनोवेशन घर बैठे नहीं आते, आपको उस पर तदब्बुर करना पड़ता है, सोच लगानी पड़ती है, तब जाके आता। और ऐसा भी नहीं है, बहुत सारी उर्दू जो सहाफ़ियों की जो खबरें हैं वो पीक पे रही हैं, उन पर खबरें बनी हैं, सुर्खियाँ बनी हैं, तब्दीलियाँ हुई हैं, बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। दिक्कत ये कि हम दो चीज़ें ले रहे हैं, कंटेंट और टेक्नोलॉजी। कंटेंट पे पैसा खर्च नहीं होता, कंटेंट आप भी बड़ा अच्छा लिख सकते हैं, जो एक रिक्शा चलाने वाला उर्दू दा है वो भी अच्छा लिख सकता है, वो आपकी कलम कितनी अच्छी, सोच कितनी अच्छी आप लिख सकते हैं। टेक्नोलॉजी की बात है, पहले बड़ी महंगी थी, अब इतनी आसान हो गई, आप मोबाइल लीजिए और कुछ भी कर लीजिए। खुर्शीद रब्बानी साहब ने इसका जिक्र किया, सोशल मीडिया, तो अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको 50-100 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं, आपके पास एक अच्छा मोबाइल है, अच्छा कंटेंट है, अच्छी शक्ल सूरत है, आप कर दीजिए। अगर आप 30 सेकंड में भी अगर आपने कुछ अच्छा कर दिया, यू कैन डू ब्लंडर, और नहीं तो आप यू कैन डू वंडर। तो इसलिए लैंग्वेज, पहली बात तो मज़हब के दायरे में कैद नहीं है, ये ज़ुबान है, ये ज़ुबान हिंदुस्तान की ज़ुबान है। तो इसमें जिस तरीके से सरकारें आगे आ रही हैं, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रमोशन दिए हैं उर्दू को लेकर के लगातार, गुज़िश्ता 10 सालों की बात करूं तो वाकई वो काबिले तारीफ है। तो मुझे लगता है कि उर्दू वाकई अपने उरूज पर होगी और फिर दोबारा से आफ्ताब की तरह रोशन होगी।
1: मारूफ रजा साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि और इस उम्मीद के साथ अपनी बात खत्म की कि उर्दू एक बार फिर उरूज पर होगी और उर्दू जर्नलिज्म का यानी उर्दू सहाफ़त का फिर एक बार जलवा कायम होगा, और जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस से निपटने के लिए मुझे एक राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ रहा है कि ना हम सफ़र से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का काटा हम ही से निकलेगा।
2: बिल्कुल।
1: तो इसी के साथ हम इस बातचीत को यहाँ ख़त्म करते हैं और सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मारूफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुर्शीद रब्बानी साहब आपका भी शुक्रिया, और डॉक्टर फरियाद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
3: सामीन, अभी आप मुबाहिसा सुन रहे थे, मौजू था उर्दू सहाफ़त में बदलता चेहरा, रिवायत से डिजिटल तक, निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे जनाब यूसुफ अंसारी। तो सामीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अंदाज़े नज़र। इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपनी मेज़बान नसरीन बेगम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू मजलिस, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। बैठक में देश भर के उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार की स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में भाग लिया। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीति आयोग भारत को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। उन्होंने कहा कि आयोग विकास के प्रत्येक पहलू में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए देश को तैयार करने के सरकार के दृष्टिकोण को कार्यान्वित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने के प्रयास कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर बल दिया।
2: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
1: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 % एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करना है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन को भेजा है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, राडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा। PV सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में भारत की ही

0: Across the world are set for a month-long football spectacle as the 2026 FIFA World Cup kicks off tonight at the historic Estadio Azteca in Mexico City. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोता स्टूडियो खड़ी में शाम के 4:10 हुए हैं। आइए आपको कुछ गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना दे दें। सबसे पहले गुमशुदा व्यक्ति हैं कशिश पुत्री धर्मवीर। कशिश लड़की हैं, इनकी उम्र है 18 साल, कद 5 फुट 5 इंच, इनका रंग गेहुआ है, चेहरा सामान्य। ये 3 जनवरी 2026 को ग्राम भूड़बराल मेरठ यूपी से लापता हैं। अगले गुमशुदा हैं गुड्डू कुमार पुत्र ब्रह्मपाल। गुड्डू पुरुष हैं, इनकी उम्र है 23 वर्ष, कद 167 सेंटीमीटर, रंग गोरा है, शरीर सामान्य है। ये 26 मार्च 2026 को ग्राम सलावा मेरठ यूपी से लापता हैं। जन्नत खान पुत्री इस्लाम खान, ये महिला हैं, इनकी उम्र है 20 वर्ष, कद 5 फुट 3 इंच, चेहरा गोल, रंगे हुआ। ये 17 अप्रैल 2026 से SRC लाइन मेरठ कैंट यूपी से लापता हैं। अगले गुमशुदा व्यक्ति हैं हरेंद्र मलिक। ये पुरुष हैं, इनकी उम्र है 31 साल, कद 170.18 सेंटीमीटर, चेहरा सामान्य, रंग गोरा है, शरीर मध्यम। ये 11 अप्रैल 2026 से नेहरू नगर मेरठ यूपी से लापता हैं। उदय भारद्वाज, ये एक पुरुष हैं जिनकी उम्र है 33 साल, कद 5 फुट 11 इंच, चेहरा गोल है, रंग गोरा, शरीर दोहरा। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये 14 अप्रैल 2026 को मोहनपुरी कॉलोनी मेरठ यूपी से लापता हैं। अगली गुमशुदा हैं अश्वनी उर्फ नितिन राणा पुत्र महेश राणा। इनकी उम्र है 30 वर्ष, ये पुरुष हैं, कद 5 फुट 6 इंच, रंगे हुआ, शरीर सामान्य है। ये 13 अप्रैल 2026 से ग्राम मैथना मेरठ यूपी से लापता हैं।

अगली गुमशुदा हैं मीनाक्षी पत्नी अजीत, ये महिला हैं। इनकी उम्र है 28 साल, कद 5 फुट, चेहरा गोल है, रंग सांवला, शरीर सामान्य। ये 1 अप्रैल 2026 से ग्राम पांचली मेरठ यूपी से लापता हैं। और अंतिम गुमशुदा व्यक्ति का नाम है चांद, ये पुत्र हैं फारूक के, चांद पुरुष हैं, जिनकी उम्र है 32 साल, कद है 5 फुट 3 इंच, चेहरा सामान्य, रंग सांवला, शरीर मजबूत है। और ये 11 अप्रैल 2026 से कस्बा हर्रा मेरठ यूपी से लापता है। श्रोताओं, इन गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में कोई भी जानकारी आपके पास है या कोई भी जानकारी यदि मिले तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन या फिर टोल फ्री नंबर 112 यानी कि 112 पर डायल कर सकते हैं और सूचना साझा कर सकते हैं। अभी हमारे श्रोता गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 4:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवाणी।

0: कुछ सपने हैं जो आंखों में पलते हैं, कुछ सपने दिल में मचलते हैं, और जब कोई ठान ले तो वही सपने एक दिन दुनिया बदलते हैं। नमस्कार दोस्तों, इन्हीं सपनों, इरादों और नई सोच के साथ हम शुरू करते हैं आज का युवावाणी कार्यक्रम। मैं हूं आपकी दोस्त डिम्पल, और आज मेरे साथ है मेरे को होस्ट शशांक।
1: हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू युववाणी, एक ऐसा कार्यक्रम जो है हिंदुस्तान के युवाओं की आवाज़, जहां बात होती है हम युवाओं की, विचारों की, सपनों की और जुनून की।
0: बिल्कुल शशांक, और अक्सर लोग कहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी बहुत मॉडर्न हो गई है, हमारी सोच बदल गई है, हमारे तौर तरीके बदल गए हैं। और अगर बात करें आज की जनरेशन की, तो पहले के कंपैरिजन में हमारी युवा जनरेशन काफ़ी अलग है।
1: हाँ, और ये सच भी है डिंपल, वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है, लेकिन एक चीज़ आज भी नहीं बदली, चाहे युवा देश के किसी भी कोने में हो, चाहे हमारे सपनों की उड़ान कितनी भी ऊंची क्यों ना हो जाए, हमारे दिल में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान हमेशा बसता है।
0: वाह, और आपकी इसी बात ने मुझे एक बहुत ही प्यारे गीत की याद दिला दी। तो आइए सुनते हैं मुकेश जी की आवाज़ में एक सदाबहार नगमा, मेरा जूता है जापानी।

0: क्या अमेजिंग सॉन्ग था। उम्मीद है आप सबको भी पसंद आया होगा। एंड विद दिस वी आर मूविंग टू आवर फर्स्ट सेगमेंट टुडेज टॉक।
1: जी हाँ दोस्तों, आज है 11 जून। आज का हमारा विषय है स्पोर्ट्स। पहले के समय में बड़े बुजुर्गों की एक कहावत थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। यह कहावत आज के समय में बिल्कुल गलत साबित हो चुकी है। खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना का भी प्रतीक है।
0: यकीनन, और भारत के युवा आज हर खेल में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, बैडमिंटन, एथलेटिक्स या फिर शतरंज। हमारे युवा खिलाड़ी हर जगह हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, और इसी खेल भावना को सलाम करता है हमारा अगला गीत, चक दे इंडिया।

0: क्या जोश से भर देने वाला गीत था।
1: बिल्कुल सही कहा शशांक। खेल हमें सिखाते हैं कि बड़ी से बड़ी जीत किसी एक खिलाड़ी की नहीं, पूरी टीम की मेहनत का नतीजा होती है। और टीम वर्क की बात चली है तो मुझे वो कहावत याद आ गई कि एक और एक 11 होते हैं।
0: वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। आज की तारीख पर अगर नजर डालें तो वो भी 11 है। क्या आपने कभी गौर किया है कि संख्या 11 खेलों की दुनिया में कितनी खास है?
1: हाँ, सच में अगर गौर करें तो क्रिकेट की टीम में भी 11 ही खिलाड़ी होते हैं, और अगर बात करें फुटबॉल की तो फुटबॉल की टीम में भी 11 ही खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं। यानी खेलों में भी 11 नंबर टीम वर्क और संतुलन का प्रतीक माना जाता है।
0: और शायद यही वजह है कि खेलों के बाहर भी इस संख्या को लेकर लोगों के अंदर एक अलग ही जज्बा देखने को मिलता है। कई लोग 11 को लकी नंबर मानते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये जब घड़ी में 11-11 बजते हैं तब उस समय दिल से कोई इच्छा मांग लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और जब इच्छाओं की बात हो रही है तो मेरी भी एक इच्छा है जो मैं पूरी करना चाहूंगी।
0: अच्छा, तो क्या है आपकी इच्छा?
1: मेरी इच्छा है कि मैं अपने सभी श्रोताओं को एक प्यारा सा गाना सुनाऊं, यूं ही चला चल राही फ्रॉम मूवी स्वदेश।

0: वाह, क्या खूबसूरत गीत था।
1: बिल्कुल डिंपल, और वैसे भी खुशी का रिश्ता सिर्फ परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारी सोच से होता है। अक्सर कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है फिर भी वे खुश नहीं रहते।
0: सही बात है। और वहीं कुछ लोग जीवन में कितनी भी चुनौती और संघर्षों का सामना क्यों ना कर रहे हों, उनके चेहरे की मुस्कान हमेशा बनी रहती है। और इसी खूबसूरत खूबसूरत विचार के साथ अब वक्त आ गया है हमारे अगले सेगमेंट मन से माइक्रोफोन तक का।
1: दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे व्यक्तित्व की है जिसने अपने जुनून और मेहनत से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के करोड़ों दिलों में अपनी खास पहचान बनाई है।
0: जी बिल्कुल। और ये जो कहानी अभी आप सुन रहे हैं ना, ये किसी फिल्मी किरदार की नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स की है जिन्हें क्रिकेट प्रेमी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट जगत के सितारे
1: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान
0: विराट
1: विराट
0: कोहली
1: कोहली
0: की।
1: की।
0: दिल्ली की गलियों से शुरू हुआ उनका सफर भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी तक पहुंचा। अपने करियर में विराट ने कई उतार चढ़ाव देखे, आलोचनाओं का सामना किया, लेकिन फिर भी हर बार वह मजबूत बनकर लौटे।
1: और यही बात उन्हें युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनाती है। विराट हमेशा कहते रहे कि प्रतिभा महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है

0: वाह, क्या सुंदर गीत था।
1: आई अग्री विद यू शशांक।
0: दोस्तों, किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी में परिवार और अपने लोगों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है।
1: बिल्कुल शशांक, और जब हम विराट कोहली की बात करते हैं तो अनुष्का शर्मा का जिक्र किए बिना ये बात अधूरी रह जाती है।
0: डिंपल, पता है, कई मौकों पर विराट ने अधिकतर कहा है कि अनुष्का ने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कठिन समय में उनका साथ दिया और उन्हें संतुलित रहने में मदद की।
1: बिल्कुल सही कहा शशांक। इनफैक्ट हम बहुत सारे मैचेस में भी देखते हैं जब स्टेडियम पे विराट मैच जीतकर सबसे पहले अनुष्का शर्मा के पास जाते हैं, और शायद यही किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है, जब दो लोग एक दूसरे को बेहतर इंसान बनाने के लिए प्रेरित करें।
0: और आइए इसी परफेक्ट रिलेशनशिप को हम समर्पित करते हैं एक परफेक्ट गाना।

0: व्हाट एन अमेजिंग सॉन्ग डिम्पल। तो अब वक्त हो गया है रफ्तार बढ़ाने का और जानने का खेल जगत और युवाओं से जुड़ी कुछ रोचक दिलचस्प बातें।
1: जी बिल्कुल शशांक, अब शुरू होता है हमारा अगला सेगमेंट जहां बातें होंगी फटाफट और जानकारी होगी झटपट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विक बज।
0: सबसे पहले बात करते हैं भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी की, जिन्होंने 15 साल की उम्र में ही अपनी शानदार बल्लेबाजी से क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और यह साबित कर दिया है कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं है।
1: सचमुच शशांक। और अब बात आती है हॉकी की। भारतीय अंडर 18 मेल हॉकी टीम ने हाल ही में शानदार प्रदर्शन करते हुए जापान को हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। यह जीत न केवल खिलाड़ियों की मेहनत का परिणाम है, ये देश भर के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है।
0: और अब चलते हैं शतरंज की दुनिया में। भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने इतिहास रचते हुए नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीत लिया है। वे इस टूर्नामेंट को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उनकी इस उपलब्धि ने बार फिर दुनिया में भारतीय युवाओं की प्रतिभा का परिचय दिया है।
1: बिल्कुल, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो या शतरंज, भारत के युवा हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। और इसी जोश, इसी भावना के साथ अब समय है एक और शानदार गीत का।
0: अब पेश है फिल्म MS धोनी का गीत बेसब्रिया।

0: वाह, क्या शानदार गीत था। और अब समय हो गया है हमारे अगले सेगमेंट टुडे इन हिस्ट्री का।
1: वैसे डिंपल, आज पूरे कार्यक्रम में हम 11 जून और संख्या 11 की बात कर रहे हैं। 11 खिलाड़ी, 11:11 और सपनों की बातें। उसी से मुझे याद आया, मेरा जन्मदिन भी 11 को ही पड़ता है।
0: अरे वाह शशांक, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। वाकई में 11 नंबर काफी चीजों से जुड़ा है। वैसे कब आता है आपका बर्थडे शशांक?
1: अरे अभी तो दूर है, इट्स इन दिसंबर।
0: ओ बाय द वे, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। वैसे अगर बर्थडे की बात हो रही है तो आज भी किसी स्पेशल पर्सन का बर्थडे है, डू यू नो?
1: आज किसका?
0: ऑन 11 जून 1897, वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशनरी पोएट एंड फ्रीडम फाइटर, राम प्रसाद बिस्मिल वॉज बॉर्न। राम प्रसाद बिस्मिल वॉज नॉट जस्ट अ रेवोल्यूशनरी पोएट, ही डेडिकेटेड हिज एंटायर लाइफ टू द सर्विस ऑफ द नेशन।
1: इन पंक्तियों को ध्यान से सुनिएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इन पंक्तियों को लिखा है बिस्मिल आजिम आबादी ने, लेकिन इन पंक्तियों को लोकप्रिय बनाया राम प्रसाद बिस्मिल जी ने।
0: वाह, क्या जोश भर देने वाली पंक्तियां थी। कौन जानता है कि आज का दिन यानी कि 11 जून किसी युवा खिलाड़ी के जीवन में भी एक ऐसा ही दिन हो जब वह अपने सपने की ओर पहला कदम बढ़ा रहा हो।
1: बिल्कुल, और इतिहास भी हमें यही सिखाता है कि किसी भी बड़ी उपलब्धि के पीछे एक दिन, एक फैसला या एक कदम जरूर होता है, और जो सब कुछ बदल कर रख देता है।
0: सही कहा शशांक आपने, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बनता, इतिहास तो हर दिन बनता है।
1: तो दोस्तों, इस 11 जून पर बस इतना याद रखिए, आपका छोटा सा प्रयास ही कल का इतिहास बन सकता है।
0: और इसी सोच के साथ हमें अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्तों से नहीं बल्कि अपने हौसलों से अपनी पहचान बनाते हैं।
1: हमें उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया और इससे आपको कुछ नया सीखने और आगे बढ़ते रहने का प्रेरणा मिला होगा। अब जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं एक आखिरी गीत के साथ।
0: तो हमें दीजिए अनुमति, कल फिर मिलते हैं इसी समय पर एक नए विषय के साथ।
1: तब तक के लिए विदा लेते हैं मैं शशांक और मेरी को होस्ट डिंपल, और आप सब लोग जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए युववाणी।
0: युववाणी।

0: अभी आप सुन रहे थे युववाणी, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने को है, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में भाग लिया। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीति आयोग भारत को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है, जिसमें 3 भारतीय नागरिकों की जान चली गई। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। खाड़ी क्षेत्र के अपर सचिव असीम आर महाजन ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री महाजन ने बताया कि 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जा रहे जहाज MT मारिवेक्स को 8 जून को ओमान के तट पर निशाना बनाया गया था। चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने फारस की खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नाविकों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और

0: और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर बल दिया।
1: नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन को भेजा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। PV सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में भारत की ही ईशा रानी बरुआ और तन्वी शर्मा ने मालविका बंसोड को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर 5:10 हुए हैं। आइए लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी का आनंद लेते हैं।

0: लोकरंजनी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को हमारी
1: नमस्कार।
0: तो प्रीति बहन हम हाजिर हो गए हैं लोकरंजनी कार्यक्रम
1: जी। बिल्कुल अतुल भाई, और कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। कार्यक्रम में लोकगीत तो है ही, और लोकगीतों की क्या बात है, क्या खास बात है कि भाई सारी बातें हंसी ठिठोली सारी लोकगीतों में ही है।
0: बिल्कुल, देखिए लोकगीतों का आनंद ही ये है
1: हाँ।
0: भाई, कहीं शादियों में, कहीं विवाह में, और भाई कहीं किसी के जन्मदिन में,
1: किसी के रूठने में, किसी के मनाने में,
0: बस
1: किसी की
0: यही,
1: शिकायत में,
0: इसी को तो लोकगीत कहते हैं। तो आइए लोकगीतों को आनंद लेते हैं और सुनवाते हैं सविता शर्मा की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत।
1: और ये एक शिकायत लेकर आया है।
0: बिल्कुल।

0: हमसे बलम की ऐसी बिगड़ी मेरी कतरी सुपारी ना खाई। बहुत ही अच्छा लोकगीत अभी है, हमारे सभी बहन भाइयों ने सुना। एक पत्नी अपने पति से किस प्रकार से कह रही है,
1: और कह भी कितने अच्छे अंदाज में रही है कि पता
0: बिल्कुल
1: नहीं कैसे वो पति नाराज भी होगा।
0: जी।
1: चलिए आइए सुनते हैं अगला अगला ये लोकगीत बबीता चौधरी की आवाज में।

0: मेरी एड़ ही रोज खुजाए, मुझे नजर लगी कावरंडवा की। भाई देखिए, कई बार कहते हैं ना कि भाई हाथ खुजा रहा है, भाई कुछ पैसे आने की संभावना होती है, भाई एड़ ही खुजा रही है या पैर खुजा रहा है कि भाई भाई बाहर भी जाना है। और देखो इसमें कितनी बड़ी वो दी गई है कि
1: नजर
0: भाई
1: लग गई
0: नजर
1: है
0: लग
1: और
0: गई
1: नजर उतारनी है, और नजर कौन उतारेगा?
0: भाई ये सुनते हैं भाई एक और लोकगीत, पुष्पा गुसाई और उनके साथी की आवाज।

0: अभी आप सुन रहे थे पुष्पा गोसाई और उनकी उनके साथियों द्वारा ये लोकगीत। और इस लोकगीत में हमने कितने अच्छे से सुना कि भाई भक्ति की शक्ति बहुत बड़ी होती
1: बिल्कुल
0: है ना। तो वो जो कह रही हैं पुष्पा गोसाई उसमें बहुत ही सच है।
1: बिल्कुल। और अब अपने भाइयों का मनोरंजन करवाते हैं और सुनवाते हैं सुधा श्रीवास्तव की आवाज़ में ये लोकगीत, यशोदा नंद को छलिया रे।

0: तो अभी आप सुन रहे थे सुधा श्रीवास्तव की आवाज़ में ये लोकगीत, और इसी के साथ कार्यक्रम लोक रंजनी यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को राम राम।
1: इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पारासर।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं अनु गुप्ता और मेरे साथ हैं
3: धर्मेंद्र मणि राजेश, मेरा भी नमस्कार।
2: जी हाँ, और आप सुन रहे हैं खेल खिलाड़ी, जहां हम लेकर आते हैं खेल जगत की हर छोटी बड़ी खबर बिल्कुल आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि फुटबॉल की दुनिया में क्या हलचल है, क्रिकेट के मैदान पर कौन छाया हुआ है, बैडमिंटन कोर्ट से क्या खबर आ रही है और एथलेटिक्स ट्रैक पर किसने मारी बाजी, तो अगले आधे घंटे हमारे साथ ही रहिए, क्योंकि खेलों का पूरा अपडेट अब मिलेगा एक ही जगह। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले बात होगी स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट्स के दिलों की धड़कन बढ़ाने वाला फीफा विश्व कप 2026 और सुनेंगे उससे जुड़ा एक खास कर्टिन रेजर। इसके बाद करेंगे ICC महिला T20 विश्व कप 2026 की उल्टी गिनती और जानेंगे तैयारियों का हाल। रुख करेंगे तुर्की के अंताल्या का, जहां तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय तीरंदाज अपना निशाना साध रहे हैं, और बात होगी ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की, साथ ही क्रिकेट में भारत ए और अफगानिस्तान ए के बीच खेले गए मुकाबले की भी। सुनेंगे ओस्लो डायमंड लीग की खास झलकियां भी, और चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं खेल खिलाड़ी कार्यक्रम। और मैं लेकर चलना चाहूंगी फीफा वर्ल्ड कप के कर्टन रेजर की तरफ, तो आइए धर्मेंद्र क्या है जानते हैं।

0: फुटबॉल मतलब एक ऐसा खेल जो पीढ़ियों और सदियों से पूरी दुनिया में अपनी बेमिसाल सादगी और बेपनाह जुनून के दम पर लोकप्रियता के शीर्ष पर बना हुआ है। महज 90 मिनट का यह खेल स्टेडियम में हर मूव के साथ गूंजती फुटबॉल के दीवानों की दहाड़ और अपनी टीम के प्रति गहरी वफादारी का नायाब नमूना रहा है। सच कहें तो इस खेल में युद्धों को रोकने और राष्ट्रों को एकजुट करने की ताकत भी है। फीफा वर्ल्ड कप राष्ट्रीय टीमों के लिए फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। 1930 में शुरू हुए टूर्नामेंट का 23वां वर्ल्ड कप बस कुछ घंटे में शुरू होने वाला है। पिछले 96 सालों से यह टूर्नामेंट हर 4 साल में आयोजित किया जा रहा है, सिवाय 1942 और 1946 के, जब दूसरे विश्व युद्ध के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। लेकिन इस बार का फीफा वर्ल्ड कप अपने इतिहास के सबसे बड़े और अभूतपूर्व सांस्कृतिक बदलाव के दौर से गुजरने वाला है। अमेरिका इस बार न केवल फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रहा है, बल्कि वह इसे नए हॉलीवुड पैकेज में ढालकर दुनिया के सामने पेश करने जा रहा है। कॉर्पोरेट थीम वाले फैन फेस्टिवल से लेकर मशहूर हस्तियों के हाफ टाइम शो और हॉलीवुड शैली की ब्रांडिंग तक, अमेरिका ने फुटबॉल को एक लार्जर देन लाइफ इवेंट बना दिया है। पहली बार मल्टी सिटी काउंटडाउन कॉन्सर्ट आयोजित किया जा रहा है। केवल एक ओपनिंग समारोह के बजाय अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में 3 अलग अलग समारोह होने जा रहे हैं। इसके अलावा कई जगहों पर मेगा कॉन्सर्ट भी होंगे जिनमें ग्लोबल स्टार्स परफॉर्म करेंगे। इन बदलावों ने वर्ल्ड कप जैसे पारंपरिक फुटबॉल टूर्नामेंट के अनुभव को पूरी तरह से एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट इवेंट में बदल दिया है। वैसे फीफा विश्व कप 2026 की पहली विसिल भारतीय समय के अनुसार आज आधी रात को बजने वाली है। इसके साथ ही फुटबॉल प्रेमियों का 4 साल का लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। अमेरिका के साथ मैक्सिको और कनाडा इसकी सह मेजबानी कर रहे हैं। मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबले से विश्व कप का जुनून परवान चढ़ने वाला है और फिर 19 जुलाई तक सारे जहान पर फुटबॉल फीवर तारी हो जाएगा। मैच से 90 मिनट पहले रंगारंग उद्घाटन समारोह होगा, उसी दौरान विश्व कप 2026 के औपचारिक शुरुआत की घोषणा होगी और फिर इतिहास के सबसे बड़े और भव्य संस्करण में अपनी बादशाहत साबित करने की जद्दोजहद शुरू हो जाएगी। हम आपको बता दें कि पहली बार विश्व कप में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और पूरे टूर्नामेंट के दौरान 104 मैच खेले जाएंगे। इससे पहले 32 टीमों वाला प्रारूप लागू था, लेकिन फीफा ने वैश्विक भागीदारी बढ़ाने और अधिक देशों को मौका देने के मकसद से इसका विस्तार किया है। वैसे हम आपको ये भी बता दें कि फीफा पुरुष विश्व कप में ये पहली बार हो रहा है जब 3 देश साझा मेजबानी कर रहे हैं। कुल 16 शहर मैचों को होस्ट करेंगे, जिनमें वैंकूवर से लेकर मैक्सिको सिटी और मियामी तक शामिल हैं। अमेरिका सबसे ज्यादा मैच कराएगा, खासकर क्वार्टर फाइनल से आगे के सभी नॉकआउट मैच उसी के स्टेडियमों में होंगे। मैक्सिको सिटी का प्रसिद्ध एस्टेका स्टेडियम 3 अलग अलग विश्व कप में मैच होस्ट करने वाला पहला स्टेडियम बनेगा। यहाँ 1970 और 1986 में भी मैच हुए थे। 2026 में टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच भी यहीं खेला जाने वाला है। इस स्टेडियम में पेले की ब्राजील ने 1970 और मैराडोना की अर्जेंटीना ने 1986 में विश्व कप फाइनल जीते थे। पेले की याद में स्टेडियम के बाहर हाल ही में उनकी बड़ी प्रतिमा भी लगाई गई है। खास बात यह है कि पहली बार विश्व कप में 48 टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं और 39 दिनों तक चलने वाले टूर्नामेंट के दौरान 104 मैच खेले जाएंगे। इससे पहले 32 टीमों वाला प्रारूप लागू था। 48 टीमों को 12 समूहों में बांटा गया, जिनमें प्रत्येक समूह से 4-4 टीमें शामिल हैं। हर समूह से शीर्ष 2 टीमें सीधे नॉकआउट चरण में पहुंचेंगी। इसके अलावा एक और खास बात यह है कि सभी समूहों में तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों में से टॉप 8 टीमों को भी अगले दौर का टिकट मिलेगा। इस बदलाव के साथ नॉकआउट चरण में पहली बार राउंड ऑफ 32 खेला जाएगा, जिसके बाद प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले आयोजित होंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में क्या खास है, ये बता रहे हैं फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो।
1: We are kicking off the 23rd FIFA World Cup, so it's a moment of joy, it's a moment of celebration, it's a moment of happiness, and I am very, very happy to see this ball rolling in a few hours' time, and this trophy being awarded in a few weeks, the most iconic trophy in the world, the most incredible cup, a trophy and a ball that makes people dream all over the world. The 23rd World Cup in the history of FIFA is a World Cup which is breaking records. And for this we are very happy, and for this, before we kick off, I want to say thank you. I want to say thank you to the media for relating, for transporting, for bringing to the homes of people the emotion of the game. You know, from all over the world, what it means to be part of a World Cup, what it means for people to participate, to live a World Cup back home, and you bring it to them, so I thank you for that.

0: मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। अब कुछ फेवरेट टीमों और खिलाड़ियों की भी बात कर लेते हैं। अर्जेंटीना मौजूदा फीफा वर्ल्ड चैंपियन है। लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने 2022 का वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। उसने कतर में खेले गए फाइनल में फ्रांस को हराकर विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था। पिछला फाइनल मैच 3-3 पर खत्म हुआ और उसके बाद अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूट आउट में कमाल किया और 4-2 से मैच को अपने नाम किया था।
1: Incredible scenes here. And in 2022, the world champions are Argentina.
0: इस बार भी ये टीम सबसे मजबूत दावेदारों में शुमार है। उसके अलावा फ्रांस, ब्राजील, स्पेन और इंग्लैंड पर भी नजरें होंगी। इन सभी पांच टीमों के पास वर्ल्ड क्लास स्क्वाड है और वे टूर्नामेंट में पसंदीदा टीमों के तौर पर उतर रही हैं। जहां तक खिलाड़ियों की बात है, संभवतः अपना अंतिम विश्व कप खेल रहे अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, पुर्तगाली दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो और फ्रांस के कैलियन एम्बापे सबसे बड़े आकर्षण होंगे। ब्राजील के नेमार जूनियर, इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम, स्पेन के लामिन यमल, नॉर्वे के अर्लिंग हॉलैंड और ब्राजील के विनिसियस जूनियर के प्रदर्शन पर भी फुटबॉल दुनिया की निगाह रहेगी। वैसे तो टूर्नामेंट में इस बार फिर सीधे तौर पर भारतीय टीम की सहभागिता नहीं होगी, लेकिन भारतीय मूल के चार खिलाड़ी अलग अलग टीमों के लिए फुटबॉल की अपनी स्किल का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। सरप्रीत सिंह न्यूजीलैंड के लिए मिडफील्ड में कमाल की ड्रिबलिंग के जरिए अपना जलवा दिखाते नजर आएंगे। उधर पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया में निशान वेलुपिल्लई फॉरवर्ड और विंगर के तौर पर अपनी छाप छोड़ेंगे। कतर के लिए 19 साल के वंडर किड तहसीन मोहम्मद जावेद का जादू देखने को मिलेगा। वो अपनी टीम के लिए विंगर और स्ट्राइकर की भूमिका निभाते हैं। उधर डीआर कांगो के लिए सैमुअल मोतोसामी मिडफील्ड में अपने पैरों का जलवा दिखाएंगे। जब इन चारों खिलाड़ियों का पैर फुटबॉल के साथ कदम ताल करेगा तो निश्चित ही हर भारतीय का दिल भी धड़केगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की संभावनाओं के बारे में, फेवरेट टीम के बारे में और फेवरेट खिलाड़ियों के बारे में क्या कहते हैं भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अनादि बरुआ?
2: कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी टीम आएगी, लेकिन हाँ ये बता सकते हैं कि ये लास्ट 8 तक आ सकती है। अर्जेंटीना आ सकती है, बेल्जियम, जर्मनी भी अच्छी है, इस बार ब्राजील भी अच्छी है, स्पेन भी बहुत अच्छी टीम है, तो कम आंकना बड़ा मुश्किल है। बोल नहीं सकती कौन ऊपर आएगा, लेकिन जब तक क्वार्टर फाइनल मैच नहीं होगा तब तक पता नहीं चल पाएगा। जो अच्छे प्लेयर होते हैं उनके ऊपर निगाह टिकी रहती है। अगर आप मेसी लो, रोनाल्डो लो या आप ब्राजीलियन लो, नेमार लो, उनके ऊपर मैन टू मैन मार्किंग करते तो उनको खेलने का मौका नहीं दिया जाता। लेकिन लास्ट वर्ल्ड कप में मेसी ने 6 गोल भी किए और 3 असिस्ट भी किए। इस बार अच्छा खेल के जाते हैं, छाप छोड़ के जाते हैं, तो याद रहेगा। क्योंकि इसके पहले जब मेक्सिको में वर्ल्ड कप हुआ था तो मैराडोना ने, माइकल प्लैटिनी ने, इन्होंने छाप छोड़ के गए हैं 86 मेक्सिको फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था। तो ये अगर लास्ट वर्ल्ड कप भी खेलते तो अपना छाप छोड़ के जाएंगे।

कर लेते हैं अब तक के विजेताओं की। जहां तक चैंपियन टीमों की बात है, ब्राजील ने सबसे अधिक 5 बार फुटबॉल विश्व कप विजेता बनने का गौरव हासिल किया है। जर्मनी और इटली 4-4 विश्व खिताब जीतकर दूसरे नंबर पर हैं। अर्जेंटीना 3, फ्रांस 2, उरुग्वे 2 और इंग्लैंड स्पेन अब तक 1-1 बार चैंपियन बने हैं। कुछ देश इस बार अपना पहला वर्ल्ड कप भी खेल रहे हैं, जिनमें केप वर्डे, कुरुकाओ, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान शामिल हैं।

तो चलिए आप भी अपने बूट कसकर वार्म अप कर लीजिए, क्योंकि शिद्दत के साथ अपनी फेवरेट टीम को चीयर जो करना है, अपने पसंदीदा खिलाड़ी के हर मुंह पर ताली जो बजानी है और हर गोल पर शोर से अपने घर और मोहल्ले को फुटबॉल के जोश से लबरेज जो करना है।

0: जी हाँ श्रोताओं, जहां इतने जबरदस्त जोश के साथ आज फुटबॉल का महाकुंभ शुरू हो रहा है, वहीं कल विमेंस क्रिकेट का भी महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, जहां भारत अपने अभियान की शुरुआत 14 जून को अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। आइए जानें अपने साथी धर्मेंद्र से कि क्या तैयारियां हैं क्रिकेट के मैदान में।
1: एक तरफ फुटबॉल का रोमांच सिर चढ़कर बोलने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ फटाफट क्रिकेट की खुमारी भी छाने वाली है। फुटबॉल विश्व कप में दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ टीमें दम झोंकेंगी, तो महिला टी20 विश्व कप 2026 में भी विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीमों की किस्मत दांव पर होगी। दुनिया की दिग्गज टीमों के बीच भारत का भी तगड़ा दावा होगा। पिछले साल 50 ओवरों का महिला ICC विश्व कप जीतने वाली भारतीय लड़कियां डबल की तैयारी में हैं, लेकिन मुकाम तक पहुंचना मुश्किल होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को ग्रुप ए में रखा गया है, जिसे ग्रुप ऑफ डेथ भी कहा जा रहा है। इस ग्रुप में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नीदरलैंड की टीमें शामिल हैं। जाहिर है ग्रुप में इतनी मजबूत टीमों की मौजूदगी से किसी भी एक मैच का उल्टा परिणाम पूरे अभियान को पटरी से उतार सकता है। भारत अपना पहला मुकाबला 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। इसके बाद उसका सामना नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालिया प्रदर्शन की बात करें तो विश्व कप की तैयारियों को लेकर इंग्लैंड में खेले गए वार्म अप मैचों में टीम इंडिया का प्रदर्शन मिला जुला रहा है। भारत ने वार्म अप मुकाबले में वेस्टइंडीज को 26 रनों से हराया था। इस मैच में भारतीय फुलमाली की नाबाद 56 रन की पारी और स्पिनर श्रियंका पाटिल के 4 विकेट शामिल थे, लेकिन मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे अभ्यास मैच में टीम इंडिया 5 रनों से हार गई थी, जिसमें ऋचा घोष ने तूफानी 68 रन बनाए थे। इससे पहले अप्रैल मई में टीम ने दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेली थी, जहां टीम को हार मिली थी। हालांकि सीरीज की हार के बीच कुछ शानदार जीत उम्मीद की किरण जगाने वाली भी रही। फिर भी हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप जीतने से टीम का मनोबल बेहद ऊंचा है। टीम के पास स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष के रूप में विश्व स्तरीय खिलाड़ी मौजूद हैं। हमेशा की तरह एक बार फिर खिताब की दावेदार ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप में भारत के लिए खासा परेशानी खड़ी कर सकती है, तो दक्षिण अफ्रीका की मजबूत टीम से पार पाना भी आसान नहीं होगा। इस फॉर्मेट में 6-6 टीमों के 2 ग्रुप बनाए गए हैं। ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। भारतीय टीम की संभावनाओं के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ जीत दर्ज करने के साथ साथ मजबूत टीमों के खिलाफ नेट रन रेट को बेहतर रखना जरूरी है। जहां तक टीम की बात है, हरमनप्रीत कौर कप्तान है, स्मृति मंधाना के हाथों में उपकप्तानी है, ऋचा घोष और यास्तिका भाटिया विकेट कीपर के रूप में टीम में शामिल हैं, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिगेज, दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़, शिचरणी, श्रियंका पाटिल, भारती फुलमाली, राधा यादव और नंदिनी शर्मा टीम की अन्य सदस्य हैं। कप्तान हरमनप्रीत कौर को भरोसा है कि वनडे विश्व कप की तरह ही T20 विश्व कप में भी उनकी टीम कमाल करेगी।
2: We were waiting for that moment for so many years and good to see that you know after years hard work paid off and this tournament is equally important and everyone is shaping really well and hopefully we'll play our best cricket. T20 cricket is all about you know adapting as soon as possible because it's quite fast and you don't have that much time and it's all about you know playing your best cricket and going fearless.
1: तो फिर तैयार हो जाइए क्रिकेट की आसमानी परवाज के लिए। टीम इंडिया के लिए दुआओं का दौर शुरू कीजिए। आखिर हमें एक और विश्व ट्रॉफी अपने घर चलाना है। फुटबॉल का रोमांच, क्रिकेट की बात और अब खबर बैडमिंटन की, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट चल रहा है। भारत की वहां पर भी ढेर सारी उम्मीदें हैं। क्या कुछ प्रदर्शन आज रहा है मेलबर्न में भारतीय खिलाड़ियों का, बताइए अनु।
0: धन्यवाद धर्मेंद्र। सिडनी के में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन 2026 टूर्नामेंट के राउंड ऑफ 16 प्री क्वार्टर फाइनल में भारत की स्टार शटलर और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। महिला एकल के इस कड़े मुकाबले में तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने अपनी हमवतन खिलाड़ी इशारानी बरुआ को सीधे गेमों में 22-20, 21-12 से शिकस्त दी। खेल के पहले गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच नेट पर कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन सिंधु ने अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए अहम अंक बटोरे और

0: दूसरे गेम में पूरी तरह से दबदबा बनाए रखा। दूसरी ओर भारत की 17 वर्षीय उभरती हुई खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने भी अपनी शानदार लय जारी रखते हुए भारत की ही मालविका बंसोड को सीधे गेमों में 21-13, 21-15 से हराकर अंतिम आठ में अपनी जगह सुरक्षित की। पुरुष एकल में चीन के डोंग तियान याओ ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए शीर्ष वरीयता प्राप्त चौ तियन चेन को 3 गेम के बेहद रोमांचक मैच में 20-21, 21-16 और 25-23 से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके साथ ही भारतीय शटलर तान्या हेमंत को थाईलैंड की पोर्णपावी चोचुवोंग के हाथों 12-21, 15-21 से हार का सामना करना पड़ा और उनका सफर यहीं समाप्त हो गया।
1: तो ये थी बात बैडमिंटन की, और अब बात कर लेते हैं तीरंदाजी की, क्योंकि तीसरा तीरंदाजी विश्व कप तुर्की के अंताल्या में चल रहा है और वहां से भारत के लिए मिली जुली खबर है। पुरुष रिकर्व वर्ग की बात करते हैं तो वहां पर पहले राउंड में भारत के यशदीप भोगे अतानु दास बाई के सहारे दूसरे दौर में पहुंचे। इसके अलावा धीरज बोम्बा देवरा और नीरज चौहान को पहले दौर में बाई मिली। दूसरे राउंड में यशदीप और अतानु की चुनौती समाप्त हो गई, उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन नीरज चौहान तीसरे राउंड में पहुंचे। बोम्बा देवरा को दूसरे राउंड में भी बाई मिली। तीसरा राउंड कल खेला जाएगा। महिला रिकर्व की बात कर लेते हैं। पहले राउंड में अंकिता भगत को बाई मिली, दीपिका कुमारी कुमकुम महोत को भी बाई मिली। कीर्ति ने 7-3 से जीत दर्ज की और दूसरे राउंड में जगह बनाई। दूसरे राउंड में अंकिता ने 6000 से जीत हासिल की। कीर्ति ने चीन की प्रतिद्वंदी को 6-0 से हराया और अगले दौर में प्रवेश किया। दीपिका कुमकुम को दूसरे राउंड में बाई मिली और इस तरह से चारों जो भारत की महिला रिकर्व टीम में शामिल खिलाड़ी हैं उन्होंने व्यक्तिगत वर्ग में तीसरे राउंड में जगह बना ली है जो कल होगा। रिकर्व टीम एलिमिनेशन जो पुरुष वर्ग है उसमें पहले दौर में भारत को बाई मिली, दूसरे राउंड में चुनौती आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि 4-5 से अमरीकी टीम ने भारत की टीम को पराजित कर दिया और यहीं पर भारत की चुनौती खत्म हो गई। रिकर्व महिला टीम को पहले राउंड में बाई मिली, दूसरे राउंड में नीदरलैंड को 6-0 से हराया, लेकिन क्वार्टर फाइनल में तगड़ा मुकाबला हुआ मेजबान तुर्की के साथ और वहां पर भारत को एक तरफा हार मिली 1-5 से। मिक्स टीम पहले राउंड में जीती और दूसरे राउंड में अब से कुछ देर बाद यानी करीब 6:30 जो भारतीय समय है उसके अनुसार भारत का मुकाबला होगा। टीम कौन सी होगी ये अभी तय होना है। कंपाउंड मिक्स टीम में भारत का मुकाबला इटली से होना है। और इतनी सारी बातें हो गई तो एथलेटिक्स कैसे पीछे रह सकता है। एथलेटिक्स यानी रफ्तार यानी ऊंचाई, और वहां पर डायमंड लीग जब हो रहा हो तो दुनिया के टॉप एथलीट एक दूसरे से आगे निकलने के लिए पूरा जोर लगाते हैं, वहां क्या कुछ परिणाम रहा है बता रही हैं अनु।
0: धन्यवाद धर्मेंद्र। नॉर्वे के ऐतिहासिक बिल्सेड स्टेडियम में आयोजित मुकाबला साल 2026 के डायमंड लीग सीजन का छठा संस्करण था जहां दुनिया भर के एथलीटों ने अपना दमखम दिखाया। इस छठे चरण का सबसे बड़ा आकर्षण पुरुषों का पोल वॉल्ट मुकाबला रहा जिसके निर्विवाद विजेता ऑस्ट्रेलिया के कर्टिस मार्शल बने। कर्टिस मार्शल ने अपने इसी शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए जिसमें दम पर उन्होंने डायमंड लीग का पिछला संस्करण भी अपने नाम किया था और लगातार 2 सीजन से इस वैश्विक मंच पर अपना दबदबा बनाए रखा है। इस ऐतिहासिक रात में अन्य श्रेणियों के विजेताओं की बात करें तो पुरुष वर्ग में बोत्सवाना के लेट्सिली तेवोगो ने 200 मीटर दौड़ में, अमेरिका के कूपर लुटकनहाउस ने 800 मीटर, पुर्तगाल के जॉस कार्लोस पिंटो ने 1500 मीटर नेशनल और कीनिया के टिमथी चेरुइयट ने ड्रीम माइल रेस जीती। वहीं इथोपिया के आदिसु यहुने ने 5000 मीटर, नॉर्वे के एंथनी ओमडन सेन जॉनसन ने 110 मीटर हर्डल्स, ब्राजील के एलिसन डॉस सेंटोस ने 400 मीटर हर्डल्स, जमैका के जॉर्डन स्कॉट ने ट्रिपल जंप, नॉर्वे के पर टीनियस फ्रेमस्टैड वॉल्ड्रॉन ने 100 मीटर नेशनल, नॉर्वे के एड्रियास ग्रिमरूड ने 400 मीटर नेशनल और ब्रिटेन के हेनरी जोनास ने 800 मीटर नेशनल में बाजी मारी। महिला वर्ग में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिला जहां सेंट लुइसा की जूलियन अल्फ्रेड ने 100 मीटर दौड़, नॉर्वे की मारेन बक्के अमुंडसेन ने 200 मीटर नेशनल, नॉर्वे की हेनरिएट जेगर ने 400 मीटर, पुर्तगाल की पेट्रिसिया सिल्वा ने 1500 मीटर नेशनल और इथोपिया की फ्रेवेनी हाइलू ने 3000 मीटर दौड़ अपने नाम की। इनके अलावा नॉर्वे की एलिया जॉर्जस्टेड बाक ने

0: 100 मीटर हर्डल्स स्लोवाकिया की एम्मा जाप लेतालोवा ने, 400 मीटर हर्डल्स क्यूबा की डेविस लेडी वालास्को ने, ट्रिपल जंप अमेरिका की चेज जैक्सन ने, शॉर्ट पुट चीन की यान जी ने, जेवलिन थ्रो नॉर्वे की अमांडा मैरी फोयस ने, 800 मीटर नेशनल ब्रिटेन की नताशा हैरिसन ने, 400 मीटर नेशनल आयरलैंड की ओरला कामरफोर्ड ने 100 मीटर पैरा रेस और नॉर्वे की विदार टीम ने 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले जीती। अंत में भारतीय खेल प्रशंसकों के लिए एक जरूरी अपडेट। ओस्लो में आयोजित डायमंड लीग के इस छठे चरण में किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने भाग नहीं लिया था। हालांकि इस सीजन के आगामी चरणों में हमारे भारतीय स्टार एथलीटों से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद बनी हुई है।
1: जी, उम्मीद क्यों न हो, भारत के एथलीट हमेशा अच्छा करते रहे हैं और उसके लिए हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं, और इसके लिए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ भी तो कोशिश करता रहा है। इसी की एक कोशिश होने वाली है 20 जून को, ताकि भारतीय एथलीट बढ़िया प्रदर्शन जो करते हैं उनके लिए उनको पुरस्कृत किया जा सके। भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कारों के पहले संस्करण की मेजबानी 20 जून को दिल्ली में होने वाली है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI इसकी मेजबानी करने वाला है। ये एक ऐतिहासिक पहल है जिसका उद्देश्य भारतीय एथलेटिक्स में उत्कृष्टता को मान्यता देना और उन व्यक्तियों को सम्मानित करना है जो इस खेल को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। इन पुरस्कारों की परिकल्पना वर्तमान और पूर्व एथलीटों, कोचों, तकनीकी अधिकारियों, सलाहकारों, राज्य संघों, प्रायोजकों और अन्य सभी हितधारकों को सम्मानित करने के लिए एक मंच के रूप में की गई है, जिनका योगदान वैश्विक एथलेटिक्स मंच पर भारत की बढ़ती सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के अधिकांश प्रमुख वर्तमान और पूर्व एथलीटों के इस आयोजन में शामिल होने की उम्मीद है, जिससे ये भारतीय एथलेटिक्स जगत के लिए एक महत्वपूर्ण सम्मेलन और देश में खेल के तीव्र विकास का उत्सव बन जाएगा। इस तरह की पहल भारतीय एथलीटों, विशेष रूप से युवा और उभरते हुए खिलाड़ियों के मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, साथ ही खेल के भीतर पहचान और प्रेरणा की एक मजबूत संस्कृति बनाने में भी मदद करेगी। इस समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरुष और महिला, सर्वश्रेष्ठ कोच, सर्वश्रेष्ठ तकनीकी अधिकारी, सर्वश्रेष्ठ राज्य संघ और एथलेटिक्स का समर्थन करने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य सहित 10 पुरस्कार श्रेणियों में उत्कृष्टता को सम्मानित किया जाएगा। अनु, और अनु अब हम बात कर लेते हैं फिर से क्रिकेट की, क्योंकि क्रिकेट का रोमांच तो भारत में सिर चढ़कर बोलता है। बताइए क्या है क्रिकेट की खबर।
0: जी हाँ धर्मेंद्र, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं अपने श्रोताओं को एक बार फिर से क्रिकेट के पिच पर लेकर जाना चाहूंगी। दाम्बुला में खेले जा रहे ट्राई नेशन ए सीरीज 2026 के दूसरे मुकाबले में भारत ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 349 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। भारत की ओर से प्रभ सिमरन सिंह ने 59 गेंदों में 84 रनों की तूफानी पारी खेली, जबकि वैभव सूर्यवंशी ने 22 गेंदों पर 44 रन बनाकर टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाई। कप्तान तिलक वर्मा ने भी जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए अर्धशतक जड़ा। ऋतुराज गायकवाड़ ने 80 गेंदों में 66 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। बारिश के कारण मैच को 38 ओवर का कर दिया गया, और डकवर्थ लुईस नियम के तहत अफगानिस्तान ए को 38 ओवर में 294 रन का संशोधित लक्ष्य मिला। लक्ष्य की पीछा करते उत्तरी अफगानिस्तान ए की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने शुरुआती 2 विकेट जल्दी गंवा दिए। हालांकि इसके बाद इमरान मीर और बहीर शाह ने पारी को संभालते हुए तीसरे विकेट के लिए तेज साझेदारी निभाई। समाचार लिखे जाने तक अफगानिस्तान ए ने 20.2 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 148 रन बना लिए हैं। इमरान मीर 53 गेंदों में 61 रन बनाकर नाबाद है, जबकि बहीर शाह 36 गेंदों पर 36 रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं। आइए लेकर चलते हैं धर्मेंद्र के पास आपको।
1: जी हाँ, और क्रिकेट की खबर है तो हम भी एक क्रिकेट की जानकारी आपको पहुंचा दें। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI की जूनियर क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी ने आज श्रीलंका के आगामी दौरे के लिए इंडिया की मेंस अंडर 19 टीम का ऐलान किया है। इस दौरे पर भारत की अंडर 19 टीम को 3 वनडे मैच और 2 बहुदिवसीय मैच खेलने हैं। इस टीम की कप्तानी BCCI ने यशवर्धन सिंह चौहान को दी है, जबकि लक्ष्य रायचंदानी को टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। इस सिलेक्शन की सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के पूर्व कप्तान और कोच रहे राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ को वनडे टीम में शामिल किया गया है। द्रविड़ के बेटे ने टीनेज क्रिकेट में कमाल का प्रदर्शन अब तक किया है। एक दिवसीय टीम में विकेट कीपर के तौर पर रजत बघेल और अन्वय द्रविड़ को शामिल किया गया है, जबकि बहुदिवसीय मुकाबलों के लिए विकेट कीपिंग के लिए मानव कृष्णा और आर्यन संदेश सकपाल को टीम में चुना गया है। अगर भारत की टीम की बात करते हैं तो यशवर्धन सिंह चौहान कप्तान है दोनों मुकाबलों के लिए, वनडे के लिए भी और बहुदिवसीय मुकाबलों के लिए भी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीसीसीआई की जूनियर सिलेक्शन कमेटी ने जिस टीम का चयन किया उसमें उन खिलाड़ियों को तरजीह नहीं दी गई है जिन्होंने हाल ही में अंडर 19 विश्व कप जीता था। बीसीसीआई की चयन समिति ने नए खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है और उन्हें इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर देने का फैसला किया है। तो ये जानकारी अहम है हमारे लिए और ये जानकारी बहुत ही उपयोगी है। एक और खबर ये है कि राष्ट्रमंडल खेल 2030 और ओलंपिक 2036 के लिए भारत की बेंच स्ट्रेंथ यानी बैकअप खिलाड़ियों की क्षमता को मजबूत करने के मकसद से खेल मंत्रालय की टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टॉप्स में टेबल टेनिस खिलाड़ियों के शामिल होने की उम्र सीमा 17 साल से घटाकर 13 साल कर दी गई है। बहुत ही अहम ये जानकारी है और बहुत ही बढ़िया कदम है। इस फैसले के बाद 13 साल के दो खिलाड़ियों रिशान चट्टोपाध्याय और तनिष्का कालभैरव को टॉप्स डेवलपमेंटल समूह में शामिल किया गया है। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं अनु कि आज के हमारे खेल खिलाड़ी कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो जाने से पहले कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान और उनके साथ साथ धर्मेंद्र मणि राजेश और
0: मैं अनु गुप्ता
1: आप सभी को कहना चाहेंगे
0: नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं।
1: We attach high importance to the welfare and well-being.
2: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। हमने कल ओमान तट पर हुए जहाज पर हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें दुर्भाग्यवश हमने 3 भारतीय नागरिकों को खो दिया। हमने इस घटना के विरोध में भारत अमेरिकी मिशन उपप्रमुख को तलब किया था। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
0: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलो के 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जलक्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। इससे पहले 8 जून को एमटी मारिवेक्स इसी समुद्री क्षेत्र में अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते

मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी दूरदर्शनयोः प्रसारण सेवायाः विशिष्टाः लाभाः प्राप्स्यन्ते।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेब्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
0: प्रशासनेन एथोनॉल मिश्रित पेट्रोल उत्पाद शुल्कम अपसारितम्। वित्त मंत्रालयेन एकया अधिसूचनया प्रकाशितम् यत् द्वाविंशतितः 30% एथोनॉल मिश्रित पेट्रोल उत्पादम केंद्रीय उत्पाद शुल्क श्रेण्यात् पूर्णतया विमुक्तम्। मंत्रालयेन उक्तम् यत् अस्य शैथिल्यस्य उद्देश्यं भारतीय एथोनॉल मिश्रण कार्यक्रमं सुदृढीकरणमस्ति। 26,000 वर्षस्य फीफा विश्व चषक क्रीडायाः आरम्भः अद्य रात्रौ मेक्सिको नगरस्य ऐतिहासिके एस्टाडियो एर्जेटेका क्रीड़ा गृहे आरभ्यते। इति वार्ताः।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को हमारी
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। तो प्रीति बहन हम हाजिर हो गए हैं ग्राम संसार कार्यक्रम लेकर।
1: जी बिल्कुल अतुल भाई, और हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे जितने भी भाई बहन हैं जो कार्यक्रम सुन रहे हैं वो इस कार्यक्रम को सुनकर कुछ तो नई जानकारी उन्हें मिले, और साथ
0: बिल्कुल
1: में मनोरंजन तो हमारा हिस्सा रहता ही
0: बिल्कुल।
1: है।
0: देखिए मनोरंजन क्या, आज का जो हमारा प्रोग्राम होता है गुरुवार का दिन है, गुरुवार के दिन होता है हमारा SMS पर आधारित लोक संगीत का
1: जिसका
0: फरमाइशी
1: इंतजार भी बहुत
0: कार्यक्रम,
1: रहता है
0: जिसका इंतजार
1: हमारे
0: रहता है हमारे सभी दर्शकों को,
1: श्रोताओं को।
0: श्रोताओं को।
1: और क्योंकि आज एक ख़ास दिन है, वैसे तो हमारे देश में हमारी जो मातृभूमि है उसमें कई ऐसी शख्सियत रही हैं जिन्होंने बलिदान दिया हमारे देश को बचाने के लिए, और आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, हमेशा ही करते हैं, लेकिन आज है राम प्रसाद बिस्मिल जी का दिन, जो कि एक बड़े क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने मैनपुरी और काकोरी घटना में शामिल होकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बिगुल फूंका था आज़ादी का।
0: बिल्कुल। और देखिए एक स्वतंत्रता संग्रामी होने के साथ साथ प्रीति बहन ये कवि भी थे, और देखिए राम अज्ञात व बिस्मिल के तखल्लुस से लिखते थे, उनके लेखन को सर्वाधिक लोकप्रियता जो बिस्मिल के नाम से मिली। और देखिए पेश है शहीद क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की लिखी कुछ
1: कुछ
0: कविताएं भी
1: कविताएं हैं
0: यहीं
1: जो आपके दिलो दिमाग में एक जोश भरने
0: बसी
1: का
0: हुई
1: काम
0: हैं।
1: करती हैं। अब वैसे तो वो लाइन आपको मुझे बहुत ही बताते हुए हर्ष होता है कि बहुत जानकारी वाली लाइन है। सब लोग बोलते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
0: बिल्कुल
1: हालांकि ये जो लाइन थी ये बिस्मिल अजीमाबादी की थी, लेकिन ये जो चर्चित हुई थी ये पंक्तियाँ ये हुई थी राम प्रसाद बिस्मिल की बदौलत।
0: बिल्कुल। तो ये तो रही जानकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में।
1: जी,
0: और
1: और
0: देखिए
1: इसके
0: आज
1: अलावा
0: अंतर्राष्ट्रीय
1: भी,
0: खेल दिवस भी है आज।
1: जी बिल्कुल, और क्योंकि खेल जो हैं वो हमारे जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं, और क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है जो कि प्रतिवर्ष 11 जून को मनाया जाता है, और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित दिवस है जिससे कि बच्चों में, आज जो बच्चे हैं जो घर से बाहर खेलते कूदते हैं वो अब एक वैश्विक मंच पर भी जा चुका है।
0: बिल्कुल। देखिए बच्चों के विकास, सीखने, शारीरिक कल्याण और उनके अधिकारों के लिए अनौपचारिक खेलों के महत्व को उजागर करने पर यह केंद्रित होता है। और दूसरे देखिए यह दिवस खेल को उस सकारात्मक और परिवर्तनकारी शक्ति को मान्यता देता
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल, और कहते हैं ना खेल अब खेल नहीं रहा, वो अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है, और वो एक करियर का बहुत अच्छा विकल्प भी है।
0: बिल्कुल। तो ये तो रही जानकारी भाई अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में। और देखिए आपकी जो हमारे कलाकार हैं भाई, वो हैं रोशन लाल और उनके साथी, उनके लिए भी हमारे पास में SMS आ चुके हैं।
1: जी
0: ये SMS हमारे पास में आया है पलारी छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले हैं नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद और उनका पूरा परिवार। वडिंगड़ा
1: और
0: पंजाब से हमारे पास में SMS आया है प्रीति बहन, भेजने वाले हैं मिंटू टॉम्स और इनका पूरा परिवार।
1: गांव फरासी जिला हिसार से राम कुमार टूडी, प्रमोद कुमार टूडी, पुष्पेंद्र कुमार टूडी ने भी हमें एक रागनी की फरमाइश की है।
0: बिल्कुल। और देखिए हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलरा टीकमगढ़ से फरमाइश भेज रहे हैं विजेंद्र विश्वकर्मा और इनका पूरा परिवार।
1: जी, इसके अलावा गांधीनगर गुजरात से भी हमारे पास मैसेज आया है, सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल निशा।
0: और इन्हीं के लिए SMS आया है वही ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, भेजने वाले हैं रामशरण विश्वकर्मा और इनका पूरा परिवार।
1: जी
0: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से भी हमारे पास में SMS आया प्रीति बहन, भेजने वाले हैं रोशन लाल देवांगन और इनका पूरा परिवार।
1: जी और उत्तर प्रदेश से भी आया है, और ये हैं उदय भान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और उनका परिवार।
0: और देखिए दुर्गा कॉलोनी हांसी से हमारे पास में SMS आया है, भेजने वाले हैं राजू मिगलानी और इनका पूरा परिवार।
1: जी, और इसके अलावा अगर हम बात करें गांव चौहलदा बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, इन्होंने भी मैसेज किया है।
0: और ये फरमाइश हमारे पास में आई है भाई, भेजने वाले हैं ताज मोहम्मद अंसारी और उनका पूरा परिवार, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से।
1: जी
0: और ये फरमाइश हमारे पास में आई है भाई MLB रोड ग्वालियर से, भेजने वाले हैं सुरेश खुराना पप्पी और इनका पूरा परिवार।
1: इसके अलावा अगर हम बात करें कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से भी हमारे पास SMS आया है, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से भी संदेश आया है, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय।
0: और ये फरमाइश हमारे पास में ये रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, भेजने वाले लालगिरी गोस्वामी उनका पूरा परिवार। और ये आई है कलानौर से, भेजने वाले नरेंद्र शर्मा और उनका पूरा परिवार। पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से भी फरमाइश आई है, भेजने वाले अनिल मोहन और उनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, भेजने वाले हैं अभिजीत गवाहकर राही और उनका पूरा परिवार।
1: इसके अलावा है सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, ये आई है एकता कॉलोनी रोहतक से, ये संदेश आया है।
0: ये फरमाइश हमारे पास में आई है चंडीगढ़ से, भेजने वाले हैं सतीश अनेजा और उनका पूरा परिवार। दादरी गेट भिवानी से भी हमारे पास में फरमाइश आई है प्रीति बहन, भेजने वाले हैं कृष्ण मेहरा और उनका पूरा परिवार।
1: इसके अलावा गांव खोखरा वाली श्री गंगानगर, वहां से हमारे पास ये फरमाइश आई है, विनोद बारासा ने की है, विशाल बारासा, विकास बारासा और रोशनी बारासा, शगुन बारासा।
0: और देखिए पिंगा वाला चौक से गोरैया जालंधर से फरमाइश भेज रहे हैं संदीप मक्कड़ और उनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से भेजने वाले हैं अखिलेश कुमार शाहू और उनका पूरा परिवार।
1: इसके अलावा भोपालगढ़ राजस्थान से भी फरमाइश आई है, धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार।
0: ये फरमाइश हमारे पास आई है गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से भेजने वाले हैं विक्रम कटवासरा और उनका पूरा परिवार। जनकपुरी सहारनपुर से फरमाइश भेज रहे हैं जॉन डिकेस्टो और उनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से भेजने वाले हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी और इनका पूरा परिवार।
1: इसके अलावा ये अगली जो फरमाइश आई है वो नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका से आई है, रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
0: और ये फरमाइश हमारे पास में आई है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से भेजने वाले हैं मोहम्मद सईद अब्बासी और उनका पूरा परिवार। बक्सर बिहार से फरमाइश भेज रहे हैं सरफुद्दीन अंसारी और उनका पूरा परिवार। डुमराव बिहार से भी फरमाइश भेज रहे हैं डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी और उनका पूरा परिवार। सारिमपुर बक्सर से फरमाइश भेज रहे हैं राज एस डी अंसारी और इनका पूरा परिवार। चक 5 MD पतरोड़ा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं मंगल जनागल और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है छत्तीसगढ़ हसदा नंबर 2 से भेजने वाले कमलेश कुमार शाहू और इनका पूरा परिवार। तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर रोशनलाल और उनके साथी की आवाज़ में ये रागनी।
2: और सत्यानासी नागे

0: तो प्रीति बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे रोशन लाल और उनके साथी की आवाज़ में ये रागनी, और किस्सा था भाई नौबहार धर्म देवी का। और अगले जो हमारे कलाकार हैं वो हैं इंद्रपाल शर्मा और उनके साथी, और इनके लिए भी हमारे पास में SMS आ गई है। ये SMS हमारे पास में आया है पटेल नगर मलौट से, भेजने वाले हैं रमेश कुमार जाजौरिया और इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश आई है बटिंडा रोड मंडी डबवाली से, भेजने वाले हैं राजेंद्र नारंग और इनका पूरा परिवार।
1: और यही फरमाइश के लिए दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से भी हमारे पास संदेश आया है। और इसके अलावा गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर

0: छिंदा और उनका परिवार।
1: गांव गोविंदगढ़ मांझी वाला श्री करणपुर से फरमाइश भेज रहे हैं भाई, राजस्थान से राजू टूटेजा और उनका पूरा परिवार। सादुल शहर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं राम कुमार रेवाड़ और उनका पूरा परिवार। गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से फरमाइश भेज रहे हैं राजेंद्र कुमार और इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश आई है गांव चौधरीवास हरियाणा से, भेजने वाले हैं मांगेराम सतौड़ और इनका पूरा परिवार।
0: भारत कॉलोनी घरोंडा जिला करनाल से भी फरमाइश आई है बिजेंद्र कुमार जयवान, कांता रानी और परिवार।
1: और छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से फरमाइश भेजने राजपाल गजबी और उनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास में आई है भाई मेरठ से, भेजने वाले हैं दिग्दर्शन और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश आई है जलालाबाद वेस्ट से, भेजने वाले हैं सुरेश गगनेजा और इनका पूरा परिवार। ये आई है फरमाइश भाई GTB मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से, भेजने वाले हैं मोहम्मद अनवर अंसारी और इनका पूरा परिवार। जटवाड़ा गाजियाबाद से भी फरमाइश भेज रहे हैं प्रीति बहन शीशपाल अकेला और इनका पूरा परिवार।
0: गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से रमेश कुमार कंबोज ने भी फरमाइश की है। इसके अलावा हैं नालेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नवारकर और सोपान तायड़े।
1: और ये फरमाइश हमारे पास में आई है भाई गांव बड़दू चैना जिला भिवानी हरियाणा से, भेजने वाले हैं महिपाल शौरान और इनका पूरा परिवार। बेहर वाला खुर्द सिरसा से फरमाइश भेज रहे हैं बलवंत जाखड़ और इनका पूरा परिवार। ये SMS हमारे पास में आया है प्रीति बहन हनुमानगढ़ टाउन से, भेजने वाले हैं सुल्तान सिंह ताड़ और इनका पूरा परिवार। और ये ढाना नारसन भिवानी से भी हमारे पास में SMS आया है, भेजने वाले हैं जगदीश चिंडालिया और इनका पूरा परिवार। गाँव लेलौड़ा जिला बागपत से फरमाइश भेज रहे हैं जगमोहन सिंह प्रजापत और इनका पूरा परिवार। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से फरमाइश भेज रहे हैं रवि कुमार राहुल और इनका पूरा परिवार।
0: करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति और श्रीमती सुमन देवी ने इसी रागिनी की फरमाइश की है।
1: कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेज रहे हैं देवशंकर तामुरिया और इनका पूरा परिवार। कनेरा मोहल्ला पटियाला से फरमाइश भेज रहे हैं मुकेश बत्ता और इनका पूरा परिवार।
0: जसपुर उत्तराखंड से भी फरमाइश आई है रियासत हुसैन सिद्दीकी और नाजमा बेगम सिद्दीकी और उनका परिवार।
1: ये फरमाइश हमारे पास में आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले हैं दिनेश वर्मा उनका पूरा परिवार। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से फरमाइश भेज रहे हैं सुनील पाठक और इनका पूरा परिवार। गुलाम रोड हरगोविंद नगर नवा शहर पंजाब से फरमाइश भेज रहे हैं सुरेंद्र संधु और इनका पूरा परिवार।
0: बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से सुरेश ग्रोवर बेबी ग्रोवर और परिवार, उन्होंने भी इसी रागिनी की फरमाइश की है।
1: और भाई इंद्रपाल शर्मा को ही सुनना चाहा है जलालपुरा जिला सरनपुर उत्तर प्रदेश से, भेजने वाले हैं सरवण कुमार प्रजापति और उनका पूरा परिवार। सूरतगढ़ राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं भूपेंद्र मिशन और इनका पूरा परिवार। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेज रहे हैं बलकरण वर्मा और इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास में आई है गाँव माए चागरी टोडा गौतम बुद्ध नगर से, भेजने वाले हैं कंची शर्मा सतपाल शर्मा मास्टर बनी सिंह देवेंद्र सिंह सर्वेश गिरी महाराज कुमारी तनु और शिव कुमार शर्मा और पवन शर्मा की। तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर इंद्रपाल शर्मा और उनके साथी की आवाज़ में ये रागनी।
0: और किस्सा रहेगा महाभारत से।

तो प्रीति बहन अभी हमारे भाइयों ने सुनी इंद्रपाल शर्मा उनके साथी की आवाज में भाई ये रागनी, और किस्सा था महाभारत का, मौका भी भाई कर्ण कुंती संवाद से। और अगले जो हमारे कलाकार

0: हैं वो हैं ज्ञानेंद्र सरदारन के लिए भी हमारे पास में एसएमएस आ गया। ये एसएमएस हमारे पास में आया है आदर्श नगर मेलोट पंजाब से भेजने वाले हैं राज शर्मा और इनका पूरा परिवार। मेहर अरोड़ा हमें फरमाइश भेज रहे हैं पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से।
1: चौधरी वास हिसार से राजू अग्रवाल ने हमें संदेश भेजा है इसी फरमाइश के लिए।
0: और देखिए गांव रावत खेड़ा जिला हिसार हरियाणा से फरमाइश भेज रहे हैं सियाराम भादू और इनका पूरा परिवार।
1: जी गांव हांडी खेड़ा से राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा ने इस रागिनी की फरमाइश की है।
0: और ज्ञानेंद्र सरदाना को सुनना चाहे गांव महाराजपुर करकोरा से भेजने वाले हैं भाई जितेंद्र सिंह सोलंकी और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में ये धनौरी तेली वाला उत्तराखंड से भेजने वाले हैं निसार सलमानी और इनका पूरा परिवार। रामगढ़ कैंट से फरमाइश भेज रहे हैं महेंद्र मोदी और इनका पूरा परिवार। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से फरमाइश भेज रहे हैं सुदर्शन शाह और इनका पूरा परिवार।
1: गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर शाइना हसन अक्सा नाजिया आफिया ने भी इसी कलाकार की रागिनी की फरमाइश की है।
0: कुबदा छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेज रहे हैं बलराम बया उनका पूरा परिवार। गांव नलोई तहसील शिवानी मंडी जिला हिसार से फरमाइश भेज रहे हैं सज्जन कुमार जांगड़ा और इनका पूरा परिवार। तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर ज्ञानेंद्र सरधाना की आवाज़ में ये रागिनी।
1: किस्सा रहेगा हीर रांझे से।

0: तो अभी आपने सुनी ज्ञानेंद्र सरदाना की आवाज़ में ये रागिनी और किस्सा था हीर रांझे से।
1: बिल्कुल, और घड़ी की सुई भी इशारा कर रही है प्रीति बहन अपने सभी बहन भाइयों से विदा लेने का।
0: इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले हमारे सभी भाई बहनों को
1: राम राम, राम, राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: ग्राम संसार, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 809 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 7 बजने को है, थोड़ी देर में हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
2: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
1: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ओमान के अधिकारी राहत और आपातकालीन समन्वय के प्रयासों में जुटे हैं। टैंकर में आग लगने के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। 8 जून को एमटी मारिवेक्स अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 % एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर आकाशवाणी में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। श्री वैष्णव ने

0: सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को राम राम, राम। अतुल भाई कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और कार्यक्रम में जानकारी होगी, मनोरंजन भी होगा, जानकारी ज़्यादा होगी आज।
1: बिल्कुल, देखिए जानकारी ये है कि देखिए हमारे जीवन में और जीवन में क्या हमारे स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी है कि देखिए सब्जियों का और हमारे खान पान का, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, सभी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान।
0: एक संतुलन बहुत जरूरी है, बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं, है ना, संतुलित
1: आहार। बड़े बड़े तो कहते हैं कि जो समय के अनुसार सब्जियां चलती हैं, फल मौसमी चलते हैं, मौसमी फल, ये बात
0: जी,
1: वो हमेशा हमें अपने जो है भोजन में इस्तेमाल करने चाहिए,
0: क्योंकि ना प्रकृति वही देती है जिस वक्त आपको, जब जिसकी जरूरत हो, है ना। आम सर्दियों में नहीं होता, गर्मियों में होता है और उसको गर्मियों में ही खाना है। तो कई बार क्या होता है, बेमौसमी चीज़ें जो हम खाने लग जाते हैं ना, तो फिर हमारा शरीर कहता है कि यह गलत है, तो रुक जाओ।
1: तो ऐसी एक जानकारी हम भी लेकर के आए हैं, वर्तमान समय में सब्जियों की देखभाल एवं सब्जी उत्पादन और आगे की उनकी तैयारी, और इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर गोगरा सिंह जाट और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल। तो प्रीति बहन लेते हैं ये जानकारी।
2: किसान भाइयों नमस्कार। जिस तरीके से इस समय गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी में जो हमारे सब्जियां होते हैं उनकी आवक कम हो जाती है, और कारण ये रहता है कि हमारे किसान भाई तो पूरी मेहनत से उगाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गर्मी का प्रभाव सब्जियों पर पड़ता है, और ये उत्पादन पे ज़्यादा प्रभाव न पड़े उसकी किस तरीके से देखभाल की जाए, कौन से उसमें किसी क्रियाएं की जाएं और किस तरीके से उसकी तैयारी की जाए, इसके लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर गोगराज सिंह जाट जी को। और आप हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक शाकीय विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में स्वागत है।
3: जी धन्यवाद।
2: तो डॉक्टर साहब, इस समय जो मौसम है, ऐसे मौसम में हमारे किसान भाइयों की जो सब्जियां लगी हुई हैं, क्या उनको आप उपयुक्त सलाह देना चाहेंगे?
3: अभी आप देख रहे हैं कि तापमान निरंतर बढ़ रहा है और लू चल रही है, गर्मी अधिक पड़ रही है, तो इस मौसम में अभी जो किसानों के खेत में अगर सब्जियां हैं तो उनमें प्रमुख सब्जियां हैं जो बेल वाली सब्जियां हैं, जिनमें करेला, तोरई, लौकी, कद्दू और भी अन्य जो बेलदार सब्जियां हैं वो खेतों में किसानों के लगी हुई है। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनकी तुड़ाई हो चुकी है और वो समाप्त हो चुकी है, कुछ वो हैं जो मार्च और अप्रैल में जिनकी बुआई की गई थी, किसान जो अच्छी आमदनी लेने के लिए जो लेट लगाते हैं वो सब्जियां अभी भी चल रही है, लेकिन अधिक तापमान की वजह से उनमें उत्पादन जरूर कम होता है, लेकिन उत्पादन जो कम होता है वो महंगे दाम पर बेचकर किसान उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन सबसे बात यह है कि अभी उत्पादन को अच्छे से बनाए रखने के लिए किसानों को क्या क्या करना चाहिए इन सब्जियों में, क्योंकि लू अधिक हो रही है, गर्मी अधिक हो रही है, तो बेलदार जो सब्जियां हैं इनमें जो नर पुष्प है उनकी संख्या बढ़ जाती है और मादा पुष्प की जो संख्या

0: कम हो जाती है अधिक तापमान होने की वजह से, जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जब तापमान जाता है तो इसके लिए किसानों को सबसे जो प्रमुख है कि निरंतर सिंचाई करें, हर दूसरे दिन बेलदार सब्जियों में इस समय सिंचाई करते रहें। अगर ड्रिप में है तो 3 से 4 घंटे तक वो ड्रिप जो प्रणाली से सिंचाई कर रहे हैं वो लगा करते रहें। अगर नालियां है तो 2 दिन के अंतराल से नालियों को पूरा पानी से भरकर सिंचाई करते रहें, और इसके साथ साथ उनमें जो प्रत्येक तुड़ाई होती है उसके बाद में जो उर्वरक है, जैसे रासायनिक उर्वरकों में बात करें तो जैसे DAP की कुछ मात्रा पोटास की मिलाकर नालियों में डालकर हल्की मिट्टी चढ़ा दें, उसके बाद में फिर सिंचाई कर दें, तो लगभग ये कार्य करने से जो फल है उनकी लंबाई बढ़ जाएगी और उनका आकार भी अच्छा रहेगा और गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ जो दूसरा कार्य है वो यह है कि जो फल मक्खी है, क्योंकि फल मक्खी छोटे फलों में अंडे देती है जिसे लार्वा उनके अंदर जाकर पूरे फल को खराब कर देते हैं, और ये मुख्यतः समस्या आती है जैसे खरबूजा है, करेला है, और इसके साथ साथ जो पंपकिन है जिसको हम कद्दू बोलते हैं। तो फल मक्खी के नियंत्रण के लिए एक तो जो फेरोमोन ट्रैप बाजार में आजकल आसानी से उपलब्ध होते हैं, ये ट्रैप लगभग 1 एकड़ में 3 से 4 ट्रैप ये लगा दें, जिससे कि उसमें मक्खी फंस जाती है और फिर वो उसी में मर जाती है, तो फलों को बहुत कम नुकसान होता है। इसके साथ साथ अगर किसी किसान भाई ने अगर लेट ये फसलें लगाई है और अभी बढ़वार की अवस्था में है और अभी 1 या 2 तुड़ाई की है, तो उनमें रेड पंपकिन जो बिटल है, कद्दू का जो लाल भ्रंग कीड़ा है, उसकी बीमारी भी कीट उसमें आता है। तो इसके नियंत्रण के लिए सुबह के समय अगर आप खेत में निरंतर विजिट करते हैं तो वो सतरंगी रंग का एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसको आप आसानी से हाथ से पकड़ के उसको नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए आप जो रासायनिक दवाएं हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यही सलाह देते हैं कि कम से कम दवाएं हैं उनका कम से कम प्रयोग करना चाहिए, जो ये दोनों कीट है इनका आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। और इसके साथ साथ आगे भी किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि जब इस मौसम में अगर कोई लगाना चाहता है तो वो मचान पे या ट्रेलिंग पर बेलदार सब्जियों की खेती करे, जिनसे उनका उत्पादन 20% तक आराम से बढ़ जाता है। क्योंकि इस मौसम में हम देखते हैं नालियों में जब बुआई करते हैं और नालियों से बाहर पौधे निकलते हैं तो वहां पर पानी नहीं पहुंचता है, तो जो फल होता है वो मृदा के सीधे संपर्क में आता है और उसका रंग थोड़ा लाइट ग्रीन हो जाता है और वो खराब भी होने लग जाता है, तो वो गलती ना करे किसान भाई।
1: और डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई सब्जियां तो हमेशा ज़रूरत पड़ती हैं
0: जी,
1: और आगे की तैयारी कर रहे हैं
0: जी,
1: तो आगे इस समय क्या तैयारी कर सकते
0: जी हैं? तो इस समय जो भी किसान सब्जियां लगाना चाहते हैं तो उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन थोड़ा यह है कि पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए किसान के पास में। अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तो वो किसान अभी थोड़ा और इंतजार करें बारिश का। तो इस समय जैसे ही पहली बारिश हो तो जो खाली खेत पड़े हैं उनमें ढेंचा लगा दें। ढेंचा लगभग 6 से 7 सप्ताह का जब हो जाता है तो उसको अच्छी प्रकार से मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे कि उसमें प्रति हेक्टेयर लगभग 70 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन उस खेत में आ जाती है। तो ढेंचा लगाने के लिए पहले अच्छे से ठीक ठाक उसमें पलेवा कर दें और फिर ढेंचा का बीज बिखेर कर लगभग 15 से 20 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के दर से फिर उसमें पाटा चलाकर समतल कर दें, और जब लगभग 1 से 1.25 महीने की फसल हो जाए ढेंचे की उसको मिला दें। उस समय क्या होगा, जैसे जुलाई का महीना आ जाएगा तो फिर उपयुक्त समय आ जाएगा बेलदार सब्जियों को लगाने का। लेकिन जिन किसानों के पास में अगर पानी की अच्छी उपलब्धता है तो वो लगभग 15 से 20 जून के आसपास या उसके बाद में बेलदार सब्जियों की दोबारा बुआई शुरू कर सकते हैं, और इनकी बुआई करने के लिए जो ऐसी किस्मों का चयन करें जो अच्छा उत्पादन दें और कीट व बीमारियां जिनमें कम लगे। जैसे अगर हम बात करें किस्मों की तो पूसा संस्थान में भी इनका बीज उपलब्ध है, जैसे लौकी में पूसा नवीन ले सकते हैं, पूसा संदेश ले सकते हैं, पूसा समृद्धि ले सकते हैं, पूसा संतुष्टि ले सकते हैं। अगर कद्दू की बात करें तो पूसा विश्वास ले सकते हैं, पूसा विकास ले सकते हैं। करेले की भी हमारे पास ऐसी किस्में हैं जो इस मौसम में अच्छी चलती है बारिश के मौसम में, जिनमें पूसा 2 मौसमी और पूसा विशेष प्रमुख है। अगर तोरई की खेती करना तो पूसा स्नेहा, पूसा चिकनी ले सकते हैं। तो ये किस्में किसान अभी अगर लगाना चाहते हैं तो उनका चयन कर सकते हैं, लेकिन वैसे मैं कहूंगा जहां पर पानी की उपलब्धता कम है या व्यवस्था नहीं है अभी किसान को इंतजार करना चाहिए बारिश का, और 15-20 जुलाई के लगभग वो इन फसलों की बिजाई जारी रख सकते हैं और लगभग 15 से 20 अगस्त तक इनकी बिजाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो किसानों के पास में अभी लगाने का ऑप्शन है, जैसे बैंगन की फसल है, तो बैंगन की फसल की अभी नर्सरी किसान भाई डाल सकते हैं। तो नर्सरी डालने के लिए नर्सरी की जो भी तैयारियां हैं, अगर बैंगन का कितना बीज लगेगा प्रति हेक्टर के दर से, उस हिसाब से 300 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टर के दर से बैंगन का सफिशियंट होता है, तो उसके हिसाब से किसान भाई नर्सरी डाल सकते हैं। नर्सरी का ऐसे स्थान पर चयन करना चाहिए जहां पर जमीन उठी हुई हो, क्योंकि हम देख रहे हैं आगे मानसून आने वाला है, और लगभग 15 सेंटीमीटर के बेड बनाकर मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरी कर अभी उसमें लगभग फॉर्मेलडिहाइड जो दवा होती है उसका 25 ml दवा को 1 लीटर पानी में घोलकर जो नर्सरी का एरिया है उसके ऊपर अच्छे से छिटक कर पूरा उसको मिलाकर मिक्स करके जमीन में उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट जो पॉलीथीन है वो बिछा दें लगभग 10 से 12 दिन के लिए। उसके बाद में उसको हटाकर उस स्थान पर नर्सरी बनाएंगे तो जो फंगल बीमारी आती है, जो फफूंदनाशक बीमारी आती है, डैम्पिंग ऑफ है, इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है, ऐसी बीमारियां नहीं आती है। और नर्सरी तैयार करने के लिए बीजों को अच्छी प्रकार से उपचारित करें, फफूंदनाशक दवा है चाहे उसमें थायरम हो, बाविस्टिन हो, केप्टान हो, केप्टाफ हो, 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से, अगर आपको 500 ग्राम बीज अगर चाहिए 1 हेक्टेयर में तो लगभग उसमें 1 ग्राम दवा को मिलाकर अच्छे से सूखा उपचार कर फिर ही पौधशाला में बुआई करें। और पौधशाला में जब भी बीजों की आप बुआई करते हैं ये जरूर ध्यान रखें बीज की जो गहराई है वो 1.5 से 2 सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो। और जैसे ही बुआई करें उसके बाद में उसके ऊपर अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद और मिट्टी दोनों मिलाकर उसके ऊपर एक परत बना दें और फैला दें और उसके ऊपर एक सूखी घास बिछा दें, फिर पानी लगाएं, जिससे क्या होगा बीजों का जो अंकुरण है एक समान होगा, अच्छा जमाव होगा और जब बीज निकलने लग जाए उस समय सूखी घास को वहां से हटा दें। तो इस प्रकार बैंगन की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो खरीफ जो प्याज लगेगा उसकी नर्सरी भी इसी प्रकार से तैयार कर सकते हैं, जिनके जो बेड होते हैं उनकी लंबाई आवश्यकता अनुसार कितनी भी रख सकते हैं किसान, और उनकी जो चौड़ाई है लगभग 60 से 80 सेंटीमीटर रखें ताकि खरपतवार निकालने में आसानी से रहें। और जो बीजों की बुआई है वो प्याज हो चाहे बैंगन हो नर्सरी में कतार से कतार की जो दूरी है वो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर रखें और कतारों में ही इनकी बुआई करें नर्सरी में, जिससे कि खरपतवार निकालने में आसानी रहती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो चौलाई की जो फसल है वो भी जैसे ही बारिश हो उसमें भी चौलाई की बिजाई किसान भाई अभी कर सकते हैं। तो बहुत सारे किसानों के पास अभी भी ऑप्शन है, किसान भाई इन सब्जियों की खेती कर सकते हैं।
1: और डॉक्टर साहब जो किसान भाई गोभी की तैयारी करते हैं तो नर्सरी डालने का समय
0: जी देखिए जो किसान भाई अगेती गोभी लेना चाहते हैं जिसको हम कहते हैं कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में या सितंबर के प्रथम सप्ताह में जिसकी तुड़ाई हो जाती है लगभग 85 से 90 दिन की हो जाती है, उसकी नर्सरी डालने का सही समय चल रहा है अभी। तो इनकी अगर नर्सरी डालना चाहते हैं तो जैसे प्याज और मैंने बताया बैंगन की उसी तरीके से उठे हुए बेड बनाकर नर्सरी इनके तैयार कर सकते हैं। और ये किसान भाई जरूर ध्यान रखें कि जब भी किस्मों का चयन करें तो वही किस्में लें जो अगेती हो, जिनकी नर्सरी अभी डल रही हो और 1 से 1.25 महीने के बाद में उनकी रोपाई होगी लगभग 40 से 45 दिन बाद में और उसमें लगभग 85 से 90 दिन में वो फसल पक जाएगी। क्योंकि किसान भाई कभी कभी क्या करते हैं बाजार से जब बीज लाते हैं तो उसका अभाव होता है तो वो किस्में ले लेते हैं जो लेट सीजन में लगती है जैसे नवंबर और दिसंबर में
1: जी।
0: तो उसमें फूल बहुत छोटे से आकार का बनता है और उसका बाजार मूल्य नहीं होता, तो ये अक्सर किसान भाई गलती कर देते हैं। क्योंकि जो गोभी होती है उसमें 4 प्रकार की किस्में होती है, अगेती, मध्य अगेती, मध्य पचेती और पचेती किस्में। जो गोभी की जो बुआई का समय शुरू होता है मई अंतिम और जून के शुरुआत से नर्सरी डलती है और ये लगभग 9 दिसंबर तक डलती है। तो अगेती किस्मों का ही चयन करें जिसमें अरली कुंवारी है और पूसा सिंथेटिक है, इसके साथ साथ जो कार्तिक शंकर हाइब्रिड वो ले सकते हैं। और भी पूसा संस्थान की जो भी किस्में जो अगेती किस्में उन्हीं का चयन करें, ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि जो बीज हम लगा रहे हैं वो अगेती किस्मों का ही है।
1: तो इसमें जो नर्सरी डालते हैं तो उसमें कोई बीमारी भी आती है?
0: जी देखिए नर्सरी अगर हम डालते हैं तो उसमें एक प्रमुख बीमारी आती है जिसको नर्सरी की मुख्य बीमारी कहते हैं, वो होती है डैम्पिंग ऑफ, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं और उसको हिंदी में आद्र गलन बोलते हैं, जिसको किसान बोलते हैं कि जैसे ही बीज निकलने लगता है पौधे गिर के मर जाते हैं। तो उसमें अगर सही समय पर उसका उपचार नहीं किया गया तो लगभग 24 से 48 घंटे में पूरी नर्सरी है वो खत्म हो जाती है। तो इसके लिए सबसे जो उपाय है बीजों को उपचारित करके ही बोएं। तो मैंने पहले भी बताया था कि बीज उपचारित करने के लिए जैसे अगर आपको 300 से 400 ग्राम गोभी का फूल या पत्ता गोभी का जो भी बीज लगाना है उसको लगभग 1 ग्राम दवा ले लें, अच्छे से उसको मिक्स कर लें उसमें सूखा उपचार करके और फिर नर्सरी में उसकी कतारों में बुआई करें। और जब भी आप पानी लगाएं उसमें भी आप अगर फफूंदनाशक दवा है केप्टान, थायरम, बाविस्टिन, केप्टाप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से जो 10 लीटर का जार आता है उसमें लगभग 10 लीटर में 20 ग्राम दवा डाल के घोल बना के उससे सिंचाई करें तो वो बीमारी बिल्कुल भी नहीं आएगी और आपका जो बीज है वो उपचारित होना चाहिए। तो अगर ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो वो बीमारी नहीं आएगी। अगर वो आ जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान किसान को झेलना पड़ता है, उसका बीज भी खत्म हो जाता है, समय भी चला जाता है, फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, फिर उसके बाद में उसको जो मध्य पचेती किस्में होती है वो लगानी पड़ती है। तो इसका नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। और मैंने पहले भी बताया था कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है 25 ml दवा को 1 लीटर पानी में मिलाकर उसका अच्छे से नर्सरी की जमीन पर स्प्रे करके 10 दिन तक जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती है उससे ढककर रखना चाहिए। तो उसी में सभी प्रकार के जो भी फंगस बैक्टीरिया होते हैं हार्मफुल क्रॉप के लिए वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो ये इसी 3-4 चीज़ों से इसका नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, कभी कभी देखा है कि नर्सरी में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं तो उसमें एक कीड़ा लगता है जो
0: जी
1: उसको काट देता है,
0: जी जी
1: तो उसकी रोकथाम के लिए क्या
0: जी
1: करें?
0: देखिए, जो नर्सरी में आप बता रहे हैं एक छोटा सा कीड़ा लगता है, तो सबसे पहले तो यह है कि जब भी हम नर्सरी लगाएं तो एक ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर, जैसे हम कोई नेट हाउस होता है उसके अंदर हम अगर करते हैं तो वो प्रोटेक्शन देता है आपको कीड़ों से छोटे, क्योंकि जून और जुलाई में जैसी बारिश शुरू होती है कीड़ों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती
1: जी
0: है, तो पत्तों को काटता है, धीरे धीरे जालीनुमा बना देता है, तो पूरी नर्सरी खराब हो जाती है उससे। तो नेट के अंदर बनाए और उसके ऊपर एक ग्रीन नेट भी लगा सकते हैं अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो, पौधों को शुरुआती अवस्था में थोड़ा

0: में उनकी केयर करना होता है। इसके बाद में भी अगर पत्तों को कोई काट रहा है तो बहुत प्रकार के जैसे रासायनिक कीटनाशक बाजार में उपलब्ध होते हैं, उस अवस्था पर हम उनको डाल सकते हैं। जैसे बहुत सारे हैं, इंडोक्सीकार्ब है, उसको 1 ml दवा को 3 लीटर पानी में मिलाकर नर्सरी के जो छोटे पौधे होते हैं उनके ऊपर स्प्रे कर देते हैं, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन हमें कम रखना चाहिए जब पौधे छोटे होते हैं। 1 ml को 3 लीटर पानी में मिलाकर डालते हैं तो इस प्रकार के जो भी कीट आते हैं, जो पौधों को खाते हैं, पत्तियों को जाली बना देते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं।
1: तो और कोई खास बात बताना चाहेंगे जो हमारे किसान भाई इस समय सब्जियों की खेती कर रहे हैं?
0: देखिए, मैं किसान भाइयों के लिए यही बताऊंगा कि सबसे पहले तो जब भी आप खेत की तैयारी करें, आप पहले उसमें पलेवा करें। सूखे खेत में हैरो कल्टीवेटर ये नहीं चलाना चाहिए, उसमें अच्छे से पलेवा करके उसको 2-3 बार जो मिट्टी पलटने वाला जो हल होता है उससे उसकी गहरी जुताई कर दें। जब आप पलेवा करते हैं उससे पहले जरूर आप उसमें अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद, चाहे वो कोई सी भी सब्जी फसल लगा रहे हैं, लगभग 20 से 25 टन, जिसमें हम कहते हैं कि 8 से 10 ट्रोली हम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर डालते हैं सड़ी हुई गोबर की खाद में, कच्ची गोबर की खाद किसानों को कभी भी प्रयोग में नहीं करना चाहिए, चाहे कोई सी भी सब्जी लगा रहे वो डाल दें, उसमें अच्छी प्रकार से मिला दें। और आप पहले जो फसल लगाना चाह रहे हैं तो उसकी जो सबसे अच्छी से अच्छी जो किस्म बाजार में उपलब्ध है या किसी संस्थान से आप लेना चाहते हैं तो उसका चयन करना चाहिए। आप किस मौसम में लगा रहे हैं, उसमें कौन सी बीमारी आती है, उस बीमारी के प्रति वो सहनशील है या नहीं है, तो वो कर ले सुनने से। दूसरा ये देख लें कि बीज उपचारित है या नहीं है, आपके पास पानी का क्या सोर्स है, पानी की आप जांच करा सकते हैं। किसान भाई अभी मिट्टी की जांच करा सकते हैं, आजकल मिट्टी की जांच भी बहुत जगह फ्री हो रही है। आप जो मिट्टी प्रयोगशाला है राज्य की है, चाहे हमारे पूसा संस्थान में भी किसान भाई आकर अपने मिट्टी का सैंपल देकर मिट्टी और पानी उन दोनों की जांच भी करा सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने पहले भी बताया था कि जो बेलदार सब्जियां हैं उनकी जो बुआई है वो हमेशा मचान सिस्टम पर करें या ट्रेलिंग में करें, जिससे कि उत्पादन निरंतर मिलता रहे और अच्छा उत्पादन मिले। और नर्सरी का जो एरिया है वो उठा हुआ होना चाहिए, पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं। इसके साथ साथ में सिंचाई की व्यवस्था भी आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। और जो खरपतवार है उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है सब्जियों में, तो इसके नियंत्रण के लिए भी जो पेंडामिथली नाम की एक दवा आती है उसकी आधा लीटर दवा को लगभग 400 लीटर पानी में घोलकर आप रोपाई करते हैं या बिजाई के तुरंत बाद में उसमें स्प्रे कर दें तो शुरुआती तौर पर खरपतवार बहुत कम आते हैं। और जिस खेत में ज्यादा खरपतवार आते हैं जैसे मोथा, उस खेत में पत्तेदार सब्जियां ज्यादा लगानी चाहिए जिससे कि बिल्कुल छाया बनी रहे और मोथा पूरा जड़ से खत्म हो जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसानों को ध्यान रखनी चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा कि खेत बचाओ अभियान पे क्या बोलना चाहेंगे?
0: जी देखिए, ये बहुत अच्छा भारत सरकार का और कृषि मंत्रालय का अच्छा अभियान है और बहुत ही ICAR इस पे बल दे रहा है कि ये किसानों तक पहुंचकर बहुत इसमें टीमें बनाई गई है। ICAR के जो भी संस्थान है या राज्य सरकार के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं एग्रीकल्चर के, उनके जो वैज्ञानिक है वो किसानों के खेतों तक जा रहे हैं, किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि आप खेत बचाओ, मतलब खेत की जो उर्वरा शक्ति है उसको हमें बचाना है, क्योंकि किसान अंधाधुन उसमें रासायनिक खादें उनका प्रयोग लिमिट से ज्यादा कर रहे हैं। अगर वैज्ञानिक अनुशंसा उसमें अगर जितनी है उससे ज्यादा किसान कर रहा है तो उसकी उर्वरा शक्ति कम हो रही है, उसमें जो माइक्रोबियल जो एक्टिविटीज है मृदा में वो कम हो रही है, तो हमारा जो उत्पादन है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है बल्कि उसी जगह पे उसी लेवल पर है। तो इससे क्या होगा, किसान की बचत भी होगी, जो अंधाधुन प्रयोग कर रहा है किसान, चाहे वो रासायनिक खाद हो चाहे कीटनाशक हो, उसकी बचत भी कम होगी। इसमें किसानों की भी गलती नहीं है, इसमें जहां से किसान खरीद रहा है उनको भी नहीं पता है कि दवाई किस काम आती है, ये वीडिसाइड है, कहां स्प्रे करना है, कब करना है। तो हम किसानों को इसमें यही कर रहे हैं कि राइट अमाउंट, राइट प्लेस और राइट डोज ये आपको डालना है। तो कृषि मंत्रालय का यही है कि इसमें संतुलित प्रयोग करना है, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। यही उद्देश्य है खेत बचाओ अभियान ICAR का।
1: जी डॉक्टर गोपराज जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और निश्चित तौर पर हमारे किसान भाई इस जानकारी का फायदा उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो अभी आपने ये बातचीत सुनी, विषय था वर्तमान समय में सब्जियों की देखभाल एवं सब्जी उत्पादन और आगे की तैयारी कैसे करें। इस पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर गोगराज सिंह जाट, जो इनसे बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल।
3: बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी जानकारी अभी हमारे सभी किसान बहन भाइयों को मिली है, प्रीति बहन। और देखिए, अब बात करते हैं खरीफ दलहन के बारे में, चाहे वो अरहर हो, मूंग हो या उड़द हो।
2: खरीफ मौसम में दलहनी फसलों जैसे कि आपने बताया कि अरहर, मूंग और उड़द, ये किसानों के लिए कम लागत में और अधिक लाभ देने वाली फसलें मानी जाती हैं।
3: बिल्कुल,
2: और ये फसलें मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में भी बहुत सहायक होती हैं। इसके अलावा प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत भी होती हैं। वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में ही वृद्धि होती है।
3: बिल्कुल, देखिए, और ये जो इनकी जो जलवायु और मिट्टी की अगर बात की जाए तो देखिए, अरहर को गर्म एवं मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है। दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे बेहतर रहती है प्रीति बहन। और मूंग के लिए हल्की

0: से मध्यम दोमट मिट्टी और अच्छी जल निकासी वाली भूमि उपयुक्त होती है। उड़द की बात करें तो सभी प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है ये दाल, लेकिन जल भराव से इसका भी बचाव बहुत जरूरी है।
1: और अगर बुवाई के समय की बात करें तो अरहर जो है जून के अंतिम सप्ताह में जुलाई से मध्य तक बोई जा सकती है। मूंग की बात करें तो जून जुलाई में मानसून की शुरुआत के साथ ही इसकी बुवाई हो सकती है। और उड़द की बात करें तो जून के अंत में जुलाई तक बुवाई का जो समय रहता है वो सबसे सही रहता है।
0: बिल्कुल। और बात करें देखिए उनकी किस्मों की, तो देखिए पूसा 992 है, पूसा 991 है, नरेंद्र अरहर 1 और ICPL 88039 से हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। मूंग सम्राट, पूसा विशाल, ऐसी बहुत सी किस्में हैं जिनको हमारे किसान भाई लगा सकते हैं।
1: और अगर हम बीज की मात्रा की बात करें और उपचार की बात करें तो अरहर की बात है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मूंग की बात करें तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और उड़द 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर,
0: यानी कि बीज की मात्रा हमारे किसान भाई ले सकते हैं
1: जी।
0: और देखिए बुवाई से पहले बीज को जो है फफूंदी नाशक दवा से जो है उपचारित कर लें। और देखिए कहते हैं ना कि जिससे पौधे को जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है बेहतर हो जाता है उससे।
1: और खेत की तैयारी और बुवाई कैसे करनी है, मान लीजिए खेत की 2 से 3 जुताई करके मिट्टी जो है वो पहले भुरभुरी बनाएं और उसके बाद अरहर का जो दूरी है ना पौधे की वो 60 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और मूंग और उड़द की बात करें तो 30 से 45 सेंटीमीटर के बीच की दूरी पौधे के बीच में होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
0: बिल्कुल। और देखिए खाद और उर्वरक की बात करें प्रीति बहन, तो गोबर की सड़ी खाद हमारे जो किसान भाई हैं वो ले सकते हैं। देखिए 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर डाल सकते हैं अपनी फसल में। और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का संतुलित प्रयोग जो है हमारे किसान भाई कर सकते हैं। और दलहनी फसलें कम नाइट्रोजन मांगती हैं, इसलिए अधिक यूरिया का प्रयोग जो है हमारे किसान भाई
1: ना ही करें। सिंचाई और खरपतवार का नियंत्रण समय समय पर करते रहें, जैसे कि वर्षा आधारित फसलें हैं ये, और लंबे सूखे में हल्की सिंचाई करते रहें। बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई बहुत ज़रूरी होती है, उसका ध्यान रखें। खेत में जल जमा जो होता है, जल भराव जो हो जाता है, उसे बिल्कुल ना होने दें।
0: बिल्कुल। और देखिए कोशिश ये करें, देखिए जब फसल है तो कीट भी लगने की संभावना ज़्यादा होती है प्रीति बहन, तो कोशिश ये करें कि जैसे अरहर है, अरहर की पत्तियों में फली छेदक कीट प्रमुख हो जाता है, इसका समय पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। मूंग और उड़द की जो फसलें होती हैं उनमें पीला मोजेक रोग से जो है बचाव के लिए रोगरोधी किस्में लगाएं और सफ़ेद मक्खी का जो है नियंत्रण हमारे किसान भाई जरूर करें।
1: अब अगर हम कटाई की बात कर लें तो जब 80 से 85% जो फलियाँ हैं वो पक जाएं, कटाई तभी करें। और वैज्ञानिक प्रबंधन से अच्छी पैदावार तो पाई ही जा सकती है और इससे क्या है कि जो किसान की आय है ना वो उसमें भी वृद्धि हो सकती है।
0: बिल्कुल। तो ये तो रही जानकारी भाई खरीफ दलहन अरहर मूंग और उड़द की वैज्ञानिक खेती के बारे में। और देखिए अब बात करते हैं बहुत सी योजनाएं सरकार के द्वारा हमारे सभी किसान बहन भाइयों के लिए चलाई गई हैं, तो उन्हीं में से एक योजना है संरक्षित खेती योजना
1: जी।
0: देखिए जलवायु, देश में जलवायु परिवर्तन और तापमान में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव के बीच प्रीति बहन किसानों में संरक्षित खेती का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। इसमें पॉली हाउस, ग्रीन हाउस और सेड नेट हाउस जैसे आधुनिक तकनीकों का मदद से किसान नियंत्रण वातावरण में उच्च मूल्यों वाली फसलों की खेती कर बेहतर उत्पादन और अधिक मुनाफा हासिल जो है हमारे किसान भाई कर रहे हैं।
1: और अगर हम आधुनिक और अधिक मुनाफा देने वाली इस खेती तकनीक के बारे में बात ही कर रहे हैं तो ये इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो किसानों को जोड़ने के लिए राजस्थान सरकार भी लगातार प्रोत्साहन दे रही है। राज्य में विशेष योजना लागू करके किसानों को 70% तक की सब्सिडी भी दी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है आधुनिक खेती की तकनीकों को अपनाकर अपनी आय बढ़ा सकें।
0: बिल्कुल। और देखिए संरक्षित खेती का मुख्य उद्देश्य यही है ताकि तापमान, आर्द्रता और सूर्य के प्रकाश जैसे कृषि जलवायु कारकों को नियंत्रित करके फसलों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना
1: जी।
0: और इस तकनीकी से जो किसान महंगी सब्जियां, फूलों और बागवानी फसलों की बेमौसमी खेती के हमारे जो किसान भाई वो कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और जैसे पॉली हाउस की बात आपने की, पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, और इन्हीं ऐसी ही आधुनिक संरचनाओं में किसान टमाटर है, शिमला मिर्च, खीरा, गुलाब, स्ट्रॉबेरी जैसी बहुत ही उन्नत तकनीक वाली फसलें पूरे साल सफलतापूर्वक उगा सकते हैं, यानी कि ये जो फसलें बिना मौसम के भी बेहतर तरीके से उगेंगी।
0: बिल्कुल। तो संरक्षित खेती करके हमारे किसान भाई अच्छा मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। और घड़ी की सुई भी इशारा कर रही है प्रीति बहन अपने सभी किसान बहन भाइयों से विदा लेने का। तो कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले

0: अरे सभी किसान बहन भाइयों को हमारी
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक हैं शिवनंदन लाल।

कृषि जगत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं गजल और कव्वाली का कार्यक्रम।

0: वारसी ब्रदर्स की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये कव्वाली। इसी के साथ गज़ल और कव्वाली का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:45 होने को है, थोड़ी देर में सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी हिस्सा लिया। दिल्ली सरकार 18 से 20 जून तक जन कल्याण शिविरों का आयोजन करेगी। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने राजधानी में वर्षा जल संचयन की तैयारियों की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कोचिंग संस्थानों के सुचारू संचालन के लिए उच्च स्तरीय समन्वय बैठक की। और संस्कृति मंत्रालय ने संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अकादमी रत्न और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कारों की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति होंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने विकास और निर्यात के नए अवसरों के लिए कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों को महिलाओं की शिक्षा, कौशल विकास, सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
3: बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस मंच के तहत राज्य अपना अनुभव, कार्य पद्धतियां और सामूहिक विचार साझा कर विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार इस महीने की 18 से 20 तारीख तक दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में 39 जन कल्याण शिविर आयोजित करेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन शिविरों के माध्यम से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं और सेवाओं को नागरिकों तक सीधे पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा।
5: इन शिविरों के आयोजन की तैयारियों के मद्देनजर आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश साहिब सिंह ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस अवसर पर परवेश साहिब सिंह ने कहा कि जन कल्याण शिविरों का उद्देश्य सरकार और जनता के बीच की दूरी को कम करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र नागरिक को किसी योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह शिविर केवल योजनाओं की जानकारी देने का माध्यम नहीं है, बल्कि जनता के साथ संवाद और समस्याओं के समाधान का भी एक महत्वपूर्ण मंच है। श्री सिंह ने सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने और नागरिकों को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने दिल्ली वासियों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने निकटतम जन कल्याण शिविर में पहुंचकर केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की जानकारी प्राप्त करें तथा उनका अधिकतम लाभ उठाएं। प्रादेशिक समाचार के लिए रिशु के साथ सौम्या शरण।
3: केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कुछ प्रकारों पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा है कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है, जिसका उद्देश्य आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना, कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना और घरेलू स्तर पर उत्पादित एथेनॉल की मांग को बढ़ाना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज एक बैठक में वर्षा जल संचयन की तैयारियों की समीक्षा की। इसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
6: उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस बैठक में अधिकारियों को मॉनसून से पहले सभी वर्षा जल संचयन प्रणालियों को पूरी तरह कार्यशील बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त बैठक में अधिकारियों को भूजल पुनर्भरण और जल संचयन के प्रयासों को और भी मजबूत करने के लिए पूरी दिल्ली में वर्षा जल संचयन करने वाले सभी ढांचों की कुल क्षमता का पूरी तरह से आकलन करने के भी निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
3: श्री संधू ने आज दिल्ली में लू से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों का भी निरीक्षण किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि उन्होंने कूलिंग सेंटर्स की तैयारियों का जायजा लिया। उपराज्यपाल ने भीड़भाड़ वाले इलाकों, विशेषकर अंतर्राज्यीय बस अड्डा तथा मेट्रो स्टेशनों पर तैनात मोबाइल रिलीफ वैन के पूरी क्षमता से काम करने और उनमें नागरिकों को जरूरी राहत और मदद देने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं रखने के निर्देश दिए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कोचिंग संस्थानों के सुचारू संचालन के लिए आज एक उच्च स्तरीय समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि ये बैठक दिल्ली में कोचिंग संस्थानों के प्रशासन और निगरानी व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। श्री सूद ने बताया कि नीति नियम की प्रक्रिया के लिए उच्च शिक्षा निदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्री सूद ने बताया कि राजधानी के सभी कोचिंग संस्थानों के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा तैयार कर उसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इसके लिए एक बहुविषयक समिति का गठन किया जाएगा, जो कोचिंग संस्थानों की शुल्क संरचना, विद्यार्थी सुरक्षा और कल्याण तथा अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन व्यवस्था जैसे विषयों पर दिशा निर्देश तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि ये नियम दिल्ली के कोचिंग संस्थानों में सुरक्षित, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा छात्र केंद्रित वातावरण सुनिश्चित करेगा और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग सेवाओं को बढ़ावा देगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आज विकासपुरी विधानसभा के अंतर्गत अपने कैंप कार्यालय में विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों से बातचीत की। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कैंप में उन्होंने सभी लोगों की समस्याओं, सुझावों और जनहित से जुड़े विषयों को सुना। श्री सिंह ने नागरिक समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों के साथ अपने आवास पर संवाद किया। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि संवाद में जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा कर उन्होंने समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जन कल्याण, सुशासन और विकास के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर आज राजौरी गार्डन विधानसभा में स्वच्छता अभियान चलाया। श्री सिरसा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 12 वर्षों में देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ स्वच्छता को भी जन जन से जोड़ा है। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज रोहिणी क्षेत्र के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। उन्होंने क्षेत्र में स्वच्छता और धूल की रोकथाम के लिए निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। श्री खिरवार ने कहा कि निगम दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। साथ ही उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार की भी घोषणा की गई है।
7: समन्वय परिषद ने वर्ष 2024 और 25 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों के लिए संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारंपरिक, लोक, आदिवासी और कठपुतली कला सहित विभिन्न क्षेत्रों से 108 कलाकारों का चयन किया है। चयनित फेलोशिप और पुरस्कार विजेता पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अकादमी की समन्वय परिषद ने वर्ष 2024-25 के लिए संगीत नाटक अकादमी और उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार के लिए 106 युवा और कलाकारों का चयन किया है। ये पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष द्वारा एक विशेष समारोह में प्रदान किए जाएंगे। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अलंकरण समारोह में प्रदान किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि गृहिणियों का कार्य केवल घरेलू कामकाज तक सीमित नहीं है, बल्कि वे परिवारों और भावी पीढ़ियों के निर्माण में अतुलनीय योगदान देती हैं। न्यायालय ने कहा कि घर का प्रबंधन करने वाली महिलाओं को केवल गृहिणी कहकर संबोधित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये शब्द समाज में उनके योगदान को कम आंकता है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि देखभाल और घर के प्रबंधन सहित घरेलू काम का अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज भगोड़े वेंकट गर्ग को जॉर्जिया से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। ये कार्रवाई विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और हरियाणा पुलिस के सहयोग से की गई। सीबीआई के अनुसार वेंकट गर्ग एक कुख्यात गैंगस्टर है और हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज हत्या, रंगदारी, सुनियोजित अपराध तथा अवैध हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े कई मामलों में वांछित था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी को जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जमानत मिलने के बाद वह फरार हो गया और देश छोड़कर भाग गया। सीबीआई ने कहा कि हरियाणा पुलिस और राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के अनुरोध पर इंटरपोल के माध्यम से आरोपी के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद हरियाणा पुलिस की एक टीम जॉर्जिया गई, जहाँ आरोपी को औपचारिक रूप से पुलिस के हवाले कर दिया गया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबोलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया।
7: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंता जनक है। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि अधिकारियों को एमटी सेटेबोलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। देश आज महान क्रांतिकारी और काकोरी कांड के नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती मना रहा है। इस अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रीमती गुप्ता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बिस्मिल का बलिदान और राष्ट्रभक्ति का संदेश हर पीढ़ी को सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करेगा। दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश साहिब सिंह और आशीष सूद ने भी राम प्रसाद बिस्मिल को नमन किया। दिल्ली में दोपहर में गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल हल्के बादल छाए रहने तथा हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी हिस्सा लिया। दिल्ली सरकार 18 से 20 जून तक जन कल्याण शिविरों का आयोजन करेगी। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने राजधानी में वर्षा जल संचयन की तैयारियों की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कोचिंग संस्थानों के

सुचारू संचालन के लिए उच्च स्तरीय समन्वय बैठक की। और संस्कृति मंत्रालय ने संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कारों की घोषणा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं विशेष कार्यक्रम।
1: विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत दुनिया का एक बड़ा पावर हाउस बन चुका है, जो अब सिर्फ विदेशी तकनीक का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि खुद नई तकनीकें बना रहा है। अंतरिक्ष और रॉकेट तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोटेक और क्लीन एनर्जी, रिसर्च और पेटेंट में तो भारत तीव्र गति से अग्रसर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान और नवाचार को स्थानीय समस्याओं के समाधान से जोड़ने के लिए जय अनुसंधान का नारा दिया और अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 38वां स्थान है। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में सुनिए ये प्रेरक भेंट वार्ता। वर्तमान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग के एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST के पूर्व सचिव, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA के पूर्व अध्यक्ष, पद्मश्री 2025 से सम्मानित प्रोफेसर आशुतोष शर्मा से भेंट कर रही हैं दीपशिखा गुप्ता।
2: नमस्कार श्रोताओं, प्रोफेसर शर्मा का परिचय आप सबको दे दूं। आप IIT कानपुर से BTech करने के उपरांत पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से आपने MTech किया केमिकल इंजीनियरिंग में। इसके पश्चात बफेलो यूनिवर्सिटी से आपने PhD किया। साइंस के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान देते हुए आपने नैनो साइंसेज, कोलाइड्स आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। आपको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, यूनेस्को पदक आदि के साथ साथ 2025 में भारत सरकार ने भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया। ये तो हुआ डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी का परिचय, लेकिन आज उनके बारे में और जानेंगे, उनकी कहानी, उनकी जुबानी। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर शर्मा आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद फॉर हैविंग मी हियर दीपशिखा जी।
2: प्रोफेसर शर्मा, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी जर्नी के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। कैसे शुरू हुई आपकी ये जर्नी साइंस के क्षेत्र में?
3: तो साइंस में मेरा शुरू से इंटरेस्ट था, स्कूल डेज से साइंस में, मतलब साइंस की फिलोसॉफी में बहुत इंटरेस्ट था मुझे उस वक्त से। मैं इनफैक्ट साइंस सब्जेक्ट मैंने लिए थे, 11th में मैं बोर्ड का टॉपर था, तो उस वक्त लोग कहते थे कि IAS बनना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन मेरा इंटरेस्ट सिर्फ साइंस में था और मेरा इंटरेस्ट था रिसर्च और टीचिंग में। तो मैंने कहा कि मुझे टीचर बनना है, तो पहला मैं सोचता था कि फिलोसॉफी करूंगा, तो लोगों ने कहा कि अगर फिलोसॉफी करोगे तो टीचर बनोगे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग करके बन जाएंगे टीचर, डजंट मैटर। ये नहीं है कि साइंस में कुछ बहुत एक्सेप्शनल चीज है, हम जो भी चीज जिसमें हमारी रुचि हो उस पे पूरा ध्यान देके थोड़ा उसमें अपना पूरी तरह से कर्तव्य की तरह उसको करेंगे तो निसंदेह हमें सफलता मिलेगी और हम खुश भी रहेंगे। तो साइंस में जैसा मैंने बताया लगाव था, क्योंकि मुझे नए शोध में इंटरेस्ट आता है और उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि और चीजों में भी बहुत ज्यादा शोध होता है, मतलब नई चीजें सीखने की, नई चीजें खोजने की जितनी संभावना है मुझे साइंस में दिखी, उस वक्त मुझे उतनी नहीं दिख रही थी और चीजों में, तो इसलिए मैंने साइंस किया। और साइंस में भी मेरा ज्यादा इंटरेस्ट खाली एक चीज को समझने में नहीं है, मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी चीजों को समझ सकें साथ साथ में। तो जैसा कि मैंने BTech, MS और PhD केमिकल इंजीनियरिंग में किया, लेकिन उसके बाद मैंने बहुत तरह तरह की चीजें की, तो लोग सोचते थे कि मैं फिजिकल केमिस्ट हूँ, कुछ लोग सोचते थे मैं कि कंडेंस्ड मैटर फिजिसिस्ट हूँ, कुछ लोग सोचते थे कि मैं मेटेरियल साइंटिस्ट हूँ। इनफैक्ट इन द टॉप साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड कंट्री मैं मेटेरियल साइंस के अंतर्गत ही लिखा हुआ है मेरा नाम, तो जैसे कि पूरे देश के अंदर मैं 15वां साइंटिस्ट हूँ, 15वें नंबर पे हूँ मेटेरियल साइंस के अंदर। तो ये मैंने वहीं से देखा, मैंने उनको नहीं बोला कि मैं मेटेरियल साइंटिस्ट हूँ, तो उन्होंने मतलब कुछ भी समझ के अपना वो उसमें किया। ऐसे बायोमेडिकल साइंस में कार्य किया, नैनो टेक्नोलॉजी में कार्य किया, और मैंने कुछ सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में भी रिसर्च किया। तो इस तरह से जहां भी आपको क्यूरियोसिटी हो, जहां भी आपको लगता हो कि ये नई चीज है, उसमें आपकी रुचि हो, तो आप उसमें कार्य कर सकते हैं। वैसे भी आजकल जो साइंस है वो बहुत इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया है। पहले जो हुआ करता था कि भाई एक ही, जैसे आप केमिस्ट हैं, फिर कहते हैं किस

के केमिस्ट हैं, ऑर्गेनिक हैं, इनऑर्गेनिक हैं, फिजिकल हैं, ग्रीन हैं, रेड हैं, क्या हैं, तो उसमें ही हम सिमट कर रह जाते थे। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है शिक्षा का और जो मतलब कार्य करने का, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। उसका उद्देश्य नहीं है कि मैं कौन हूं। तो अगर मान लो मैं फिजिकल केमिस्ट हूं लेकिन मैं पानी साफ नहीं कर सकता, तो मेरा कोई उपयोग नहीं है। तो अगर हो सकता है कि कुछ चीजें मैं जानता हूं कि पानी को कैसे साफ किया जाए, लेकिन मैं सब चीज नहीं जानता पानी को कैसे साफ किया जाए। तो कुछ इसमें आएगा फिजिक्स का, इसमें आएगा बायोलॉजी का, कुछ इंजीनियरिंग आएगी, कुछ इनफैक्ट सोशल साइंस आएगी। क्योंकि जस्ट बिकॉज मैंने एक सोल्यूशन खोज लिया पानी को साफ करने का, इसका मतलब ये नहीं कि वो कार्य में आएगा। उसकी इकोनॉमिक्स देखनी पड़ेगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग देनी पड़ेगी, उसका मार्केट देखना पड़ेगा, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखना पड़ेगा, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी सोसाइटी में क्या है वो देखना पड़ेगा, उसका डिजाइन देखना पड़ेगा, उसकी एस्थेटिक्स देखनी पड़ेगी, उसकी सोशियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एंगल देखना पड़ेगा। तो ये सब जब तक नहीं होगा, हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। खाली ये कहना कि बस मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर ही है, तो उससे मतलब कि शिक्षा पूरी नहीं हो पाती। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा क्या अनुभव रहा। मेरा अनुभव ये रहा कि चाहे आप उसको फिलोसॉफी कहें या हिस्ट्री कहें, मुझे उसमें इंटरेस्ट है, उसके सीखने के अंदर इंटरेस्ट है, और मैं जो भी कार्य करता हूँ उसको भी प्रभावित करता है। अगर मैंने कहीं बाहर से सीखा तो वो जो चीज है जो उस क्षेत्र में अभी तक लोगों को पता नहीं है, बाहर वालों को पता है, उस क्षेत्र में पता नहीं है, तो मैं उसको नया कोई आइडिया बाहर से लेके आऊं, तो उसमें उससे ज्यादा मतलब अच्छे शोध होता है, उससे अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो मैंने हरदम यही किया है। तो मैं हरदम डाइवर्सिटी, विविधता जिसको कहते हैं, तो चाहे वो ज्ञान में हो विविधता, चाहे वो हमारी नॉलेज में हो, चाहे वो हमारे आसपास किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे वो विविधता जेंडर की हो, वेमेन मैन सभी को मिलकर जो प्रॉब्लम डिफाइन और सॉल्व करनी पड़ेगी, चाहे वो एज की हो। तो यह है कि जैसे कमेटी के अंदर क्या ये क्यों है कि सिर्फ 50 साल के ऊपर लोग ही होते हैं कोई भी कमेटी के अंदर। मैं जब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में था तो मैंने इसके लिए रूल बना दिए थे कि हर कमेटी के अंदर कम उम्र के भी हो, ज्यादा उम्र के भी हो, जेंडर भी हो, उसके अंदर जो वुमेन साइंटिस्ट हैं वो भी हो, मैन भी हो, और मतलब कि जो दूसरे मतलब रीजन्स के हैं जिनकी डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो सभी हो। तो उसका ये कारण है कि हमारी बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो एक तरह के लोग ही नहीं समझ सकते, उसके लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव चाहिए। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव कब आएंगे? जब हमें थोड़ा टॉलरेंस हो और लोगों के लिए, न केवल ये कहें अरे इसको क्या आता है, ये तो बहुत यंग है, इसको क्या पता है। वो कहते हैं इस तरह के जो हमारे पूर्वाग्रह होते हैं जिनको स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं, उसके कारण हम एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते। तो मेरा लाइफ का लेसन शुरू से ही रहा कि विविधता। अब उसका कैसे डेवलप हुआ, मेरे पिताजी जो थे वो इरीगेशन में इंजीनियर थे, वो थोड़े ज्यादा ही ऑनेस्ट थे, तो उनका ट्रांसफर हर साल में हो जाता था। तो मैंने मतलब 11वीं क्लास करने तक करीब 8 स्कूल चेंज किए, तो कभी इधर पढ़े कभी उधर पढ़े, कभी हिंदी में पढ़े कभी इंग्लिश में पढ़े, कभी सेंट्रल बोर्ड में पढ़े कभी राजस्थान बोर्ड में पढ़े। हर साल नए दोस्त होते थे, कभी कोएड था कभी नहीं था, नए टीचर होते थे, उनकी पढ़ाने की शैली अलग अलग थी सबकी। तो लेकिन उससे मुझे कभी परेशानी नहीं हुई। कहने का मतलब यह है कि उससे विविधता का मतलब समझ में आया, कि बजाय ये कहने के कि नहीं नहीं मुझे एक ही तरह की चीज पसंद है, एक ही तरह का खाना पसंद है, एक ही रेस्टोरेंट पसंद है। आजकल क्या मैं देख रहा हूँ कई जगह कि हमारे स्कूल के सारे फ्रेंड हैं, 5 फ्रेंड हैं, 12वीं क्लास तक साथ साथ रहे, फिर वो कॉलेज भी साथ साथ चले गए, और उसके बाद ठीक है अलग अलग जगह चले गए, लेकिन जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है विविधता को समझने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि अब जो लोग हमारे जैसे नहीं है उनसे बात नहीं करेंगे तो हमें कोई नई चीज सीखने को नहीं मिल सकती। तो जो लोग 17 साल साथ साथ रहे उन्होंने एक दूसरे से सीखना बंद कर दिया, क्योंकि वो सब लोग एक दूसरे की तरह ही थे, उनकी एज भी बराबर थी। अच्छा, मैंने ये भी देखा जिनकी एज बहुत अलग हो हमसे, उनसे अच्छा संवाद स्थापित नहीं कर पाते। मैं 3 साल अपने नाना के साथ रहा, तो वहां पर वो 60 साल के ऊपर लोग रहते थे सारे, और मैं था 6 साल का, तो मेरे को उनसे बहुत कम्फर्ट था। तो मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा ये तो बुढ़ा आदमी ऐसे कैसे बात करेंगे। अभी जो मेरे दोस्त हैं वो 5 साल से लेके 95 साल तक के हैं, ओके, उन्हीं से मुझे को सीखने को मिलता है। और खासकर पीपल 20s में है, 30s में, 40s में, माई यंगर फ्रेंड्स, उनसे मुझे साइंस भी सीखने को मिलती है। अब AI है, क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, क्वांटम टेक्नोलॉजी हो रही है, कुछ भी है, तो मैं हरदम उतना जानता हूँ जितना हमारे यंगर लोग जानते हैं। और मैं उनसे भी कहता हूँ कि भाई देखो, आजकल लोग बहुत ये कहते हैं कि मैं जेन जी हूँ, मैं जेन अल्फा हूँ, मैं मिलीनियल हूँ, मैं बेबी बूमर हूँ, आप बेबी बूमर हैं, ऐसा लोग कहते हैं। ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बना लिया है, मतलब उस जैसा कि ऐसे है कि लोग सोचते हैं कि ये बुढ़ा आदमी है। मैं कहा ऐसा है कि ओल्ड आदमी कोई नहीं होता इस दुनिया के अंदर। आई एम यंग एंड यू आर यंगर, और भी लोग हैं जो मुझसे, वो यंग है मैं यंगर हूँ और मेरे से यंगर है। तो विविधता को समझने का मतलब ये है कि हम उनका स्टीरियोटाइप नहीं बना लें। तो अगर ये हम समझ लेंगे ये आदमी बहुत यंग है, ये बुढ़ा है, ये औरत है, ये आदमी है, तो उनसे जो हम रिलेशनशिप बना सकते हैं वो नहीं बना पाएंगे।
पाएंगे। तो उसमें हमारा जो

0: संवाद है वो इतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना हो सकता है। तो ये सबसे गहन जो चीज मैंने दुनिया में देखी है, समझी है, सोची है, वो सिर्फ यही है कि चाहे साइंस हो, किसी भी चीज में इंटरेस्ट हो, लेकिन हमें डाइवर्सिटी, विविधता जब हम समझेंगे, उसको एंजॉय करेंगे, उसके द्वारा एक्साइटमेंट होगा, उसके द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो ये सबसे अहम बात है सोसाइटी में। हमारी जो कल्चरल रिचनेस है, भारत में हरदम ऐसा ही था कि हमारी कल्चरल रिचनेस डाइवर्सिटी से आई, जबकि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज थे वो मोनोलिथ बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यही स्टैंडर्ड है, ऐसा ही रंग हो, ऐसा ही मतलब कि परिपाटी हो, यही कल्चर हो, इसी भगवान को माने, इसी बुक में विश्वास करें, तो वो सभ्यता अलग है। हमारी जो सभ्यता थी वो सभ्यता बहुत स्टेबल है, क्योंकि डाइवर्सिटी के द्वारा स्टेबिलिटी आती है, और जो एक दूसरे की मतलब नकल की हुई सोसाइटी होती है उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती कभी, चाहे वो कितनी भी डेवलप्ड हो, जब कोई नया चैलेंज आएगा वो कॉलेप्स हो जाएगी। डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर शर्मा आपने कि डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम में हम चाहेंगे कि नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपने बड़ा ही उल्लेखनीय कार्य किया, तो सामान्य भाषा में हमारे उन लिसनर्स के लिए क्या आप बता सकते हैं कि इस फील्ड में क्या काम आपने किया और क्या प्रभाव रहा उसका?
0: तो पहले मैं बताऊं कि ये नैनो क्या होता है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। नैनो का मतलब है कि एक मीटर लें, नैनोमीटर, एक मीटर लें उसका एक बिलियन टाइम स्मॉलर, छोटा उससे, एक बिलियन टाइम स्मॉलर जो चीज होगी उसको हम बोलेंगे नैनोमीटर। तो कई चीजें जो छोटे छोटे कण होते हैं, छोटी छोटी चीजें, इनको देखा नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द्वारा उसको देखते हैं, वो नैनो होती है। अगर उनके बिहेवियर और प्रॉपर्टी समझें उसको नैनो साइंस बोलते हैं, और उसका उपयोग करें किसी चीज के लिए, जैसे कि आजकल हम नैनो ट्रांजिस्टर बना रहे हैं, जो है चिप्स बनती हैं, इस सब के अंदर बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का उपयोग होता है, तो वो नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा बनाए जाते हैं। तो किसी भी नैनो जो मीटर की चीजें हैं, नैनोमीटर हो, 10 नैनोमीटर हो, 100 नैनोमीटर हो, छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको कैसे समझें कि वो क्या कार्य करती हैं, उनको कैसे उपयोग में लाएं, तो ये सब नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा संभव होता है। मेरी खुद की रिसर्च जो नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी में थी उससे रिलेटेड है नैनो फैब्रिकेशन, नैनो मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा। आप कोई छोटी चीज बनानी है तो उसको कैसे बनाएंगे, वो तो आप देख भी नहीं सकते, आपको कोई मशीन ड्रिल लेके नहीं बना सकते, तो उसके लिए वो नैनो ड्रिल क्या चीज है, उसमें कोई भी आपको कोई छोटी चीज बनानी हो उसको बनाने के दो तरह से बनाए जाते हैं, या तो उसके अंदर आप कोई मशीन टूल यूज करें, या चाहे लेजर वेजर यूज करें, कुछ रेडिएशन यूज करें, उसके द्वारा बनाएं। एक दूसरा मेथड है बनाने का, उसको बोलते हैं सेल्फ असेंबली। जैसे कि आपने देखा कि नेचर के अंदर, हमारे नेचर के अंदर वृक्ष हो, कुछ भी चीज है, तो उसको कोई बना नहीं रहा, वो अपने आप बन रही है, और उसमें भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, सेल हैं, सेल के अंदर भी चीजें हैं और भी छोटी हैं नैनो स्केल की, उनको मतलब कोई मशीन के द्वारा नहीं बन रही, अपने आप बन रही है, उसको कहते हैं सेल्फ असेंबली। तो सेल्फ असेंबली जिसके अंदर नॉलेज भी हो, जैसे डीएनए है उसके अंदर नॉलेज है कि वो सेल्फ असेंबल कैसे होगा, तो हम इस तरह के नए मेथड बनाए। तो मैं सेल्फ असेंबली में कार्य करता था, तो ये चीज है कि हमने बहुत सारे कुछ चीज बनाई लेकिन वो सेल्फ असेंबल होके कोई दूसरी चीज बन गई जो हम बनाना चाहते हैं, लेकिन बिना किसी मशीन को यूज किए। तो इस पे कार्य किया था, मेरे ज्यादातर कार्य इस पे है, और ये समझना कि जब चीजें बहुत छोटी होती हैं तो वो किस तरह का बर्ताव करती हैं, वो किस तरह का बिहेवियर उनका होता है, किस तरह की उनकी प्रॉपर्टी होती है, ये समझना, इसकी जो थ्योरीज होती है उस पे मैंने कार्य किया था। और फाइनली मैंने कार्य किया बायोसेंसर नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाने के लिए। बायोसेंसर मतलब ऐसे कि बहुत अर्ली कैंसर डिटेक्शन, जब आपके पूरे बॉडी के अंदर 2-4 ही सेल हो कैंसर के, तो उनका पहले पता करना कि भाई इसकी संभावना है कैंसर होने की, इसके पहले कि वो बनना शुरू हो जाए, तो इसके लिए बहुत सेंसिटिव बायोसेंसर की जरूरत होती है। तो वो हमने बहुत तरह के बायोसेंसर बनाए नैनो टेक्नोलॉजी पे आधारित।
1: प्रोफेसर शर्मा, अभी बहुत अच्छी बातें आपने बताई अपने कार्य के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में जिस पर आपने रिसर्च किया, जिस पर आपने कार्य किया, लेकिन कार्यक्रम में अभी समय हो चला है एक गीत का, तो हम चाहेंगे कि अपनी पसंद का कोई एक गीत आज आप बताएं जो हम अपने श्रोताओं को सुनाएंगे।
0: हाँ, एक मेरा गीत था, बहुत प्रिय था, जब मैं 4th कक्षा में था, तो वो था, एक मूवी थी अनोखी रात, मैंने देखी थी।

0: नदी के जल में।
1: इस खूबसूरत से गीत को सुनने के बाद एक बार फिर से लौट आए हैं अपने कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी से, जिन्हें 2025 में भारत सरकार ने उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। साइंस के एक क्षेत्र में इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। और आगे बढ़ते हुए प्रोफेसर शर्मा, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बतौर

0: सेक्रेटरी एक लंबे समय तक कार्य किया और कई सारी पॉलिसीज के भी आप मेकर रहे वहाँ पर, तो आपको क्या लगता है जो करंट पॉलिसीज हैं इस समय भारत में वो विज्ञान के प्रसार और प्रचार में कहाँ तक सहायक हैं?
1: बेशक बहुत सहायक हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे कि आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो हमारे देश को इसके लिए पूरी तरह प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत तेजी से बदल रहा है, समय बदल रहा है, देश बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, समाज बदल रहा है। तो जैसे कि मैं शुरू करता हूँ, मैंने 2015 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज्वाइन किया था 2015 की जनवरी में। उसके बाद सुपर कंप्यूटिंग मिशन शुरू हुआ जो करीब 4,000 करोड़ रुपए का था। तो उसके द्वारा हमने बहुत सारी सुपर कंप्यूटर की चीजें भारत में ही बनाना शुरू की और उसका लक्ष्य है कि करीब 50 सुपर कंप्यूटर भारत के अंदर विकसित करके उनको एस्टेब्लिश करना। उनमें से 20 से ज्यादा हो भी चुके हैं और अभी कार्य चल रहा है। तो ये एक उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हम प्रिपेयर्ड रहे, कैसे फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड रहे। दूसरा था मिशन जो कि बहुत अहम था, करीब 6 साल पहले लॉन्च हुआ, मिशन ऑन साइबर फिजिकल सिस्टम्स, बेसिकली AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम दूसरा है उसका, क्योंकि साइबर फिजिकल का मतलब है कि साइबर लाइक AI और फिजिकल लाइक फिजिकल मशीन, उन दोनों के संगम से जो चीज बनती है, मतलब इंटेलिजेंट मशीन, उसके लिए मिशन शुरू किया, वो भी 4,000 करोड़ रुपए का। अब उसको 6 साल हो गए। तो ये जो AI अभी शुरू हुई है, तो हमने शुरू से मतलब 8 साल पहले इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था कि ये हो जाएगी, तो कि हमें इसमें समय नहीं गंवाना पड़ा। पिछले 6 साल के अंदर उसके लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह इस मिशन के द्वारा डेवलप हो गए। अब वो आगे बढ़ेंगे, मतलब AI तो बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी, उसका कभी अंत नहीं होगा। तो हमने उसके लिए जो फाउंडेशन, जो नींव थी, उसकी शुरुआत कर। इसी तरह से तीसरा मिशन शुरू हो गया, वो है क्वांटम टेक्नोलॉजीज का। वो बहुत तेज से उभर के आ रही है, तो उसके लिए भी बहुत कार्य किया गया था पहले और अब वो है करीब 6,000 करोड़ रुपए का। तो उसके द्वारा जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग है, क्वांटम कम्युनिकेशन है, मतलब सिक्योर कम्युनिकेशन, और ये जो सारे अपने बैंकिंग वगैरह होती है उनको बहुत चैलेंज हो जाएगा अगर उनके कोड है जो टूटने लग गए फॉर एग्जाम्पल, तो सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। तो ये सब जो दिशाएं हैं, ये सारी जो टेक्नोलॉजी मिशन के द्वारा डेवलप की जा रही है, वो सब फ्यूचरिस्टिक है, तो जिससे कि देश प्रिपेयर्ड रहे उसके लिए। उसके साथ साथ ही अभी एक बहुत अच्छा कदम लिया गया है, वो है 1,00,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया है जिसको RDI फंड बोलते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड। वो क्या हुआ है कि इंडस्ट्री जो है वहां पे रिसर्च हो उसको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। तो अभी तक हम सोचते थे सिर्फ यूनिवर्सिटी IIT में रिसर्च होगी, लेकिन इंडस्ट्री में जो रिसर्च होती है वो बहुत उपयोगी होती है, तो उसको भी आगे बढ़ावा मिलना जरूरी है, क्योंकि इसके द्वारा नए प्रोडक्ट आएंगे, उसके द्वारा हम कॉम्पिटेटिव रहेंगे वर्ल्ड के अंदर। तो अब है जो 20,000 करोड़ रुपए पर साल 5 साल के लिए गवर्नमेंट ने ये फंड बनाया है, उसके द्वारा मुझे लगता है कि इससे बहुत परिवर्तन आएंगे। तो इस तरह बहुत सारे मतलब कार्य हो रहे हैं, काफी मंत्रालय हैं जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी में कार्य करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उनका बजट भी बढ़ता जा रहा है, हमारे साइंटिस्ट भी पहले से काफी ज्यादा एम्पावर्ड हो गए हैं और उनकी संख्या भी बढ़ गई है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया IIT कानपुर में 1990 में असिस्टेंट प्रोफेसर के बतौर, तब हमारे डिपार्टमेंट में सिर्फ 6 PhD स्टूडेंट थे और फैकल्टी मेंबर 20 थे। फैकल्टी मेंबर 30 हो गए लेकिन PhD स्टूडेंट 100 के ऊपर, मतलब कि रिसर्च का जो महत्व है वो बढ़ता गया। पहले रिसर्च का महत्व बहुत कम था, तो 90 के दशक के अंदर कुछ नहीं हो रहा था, न रिसर्च के लिए पैसा था, न कल्चर थी, कुछ भी नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उसके बाद ये बढ़ता गया, तो अब ये बढ़ता जा रहा है बहुत तेजी से, और बढ़ना जरूरी भी है, क्योंकि कोई भी देश, कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसने बिना साइंस और टेक्नोलॉजी के विकसित हुआ हो। तो ये हमको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि बिना साइंस टेक्नोलॉजी के कुछ भी विकास संभव नहीं है, और है जो हम वापस कॉलोनियल टाइम हो जाएगा अगर मानव पीछे छूट गया तो।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और प्रोफेसर शर्मा, लंबे समय तक IIT कानपुर में आपने अध्यापन कार्य भी किया, बहुत सारे बच्चों के आप रोल मॉडल भी रहे, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कई सारे बच्चों को आपने गाइड किया, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके आइडियल कौन थे जब आप पढ़ाई कर रहे थे?
1: देखिए, मेरा कोई एक आइडियल कभी नहीं रहा, क्योंकि मैं हीरोशिप में कभी भी विश्वास नहीं किया, लेकिन हर आदमी गुरु है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी से ज्यादा सीखा, किसी से कम सीखा, किसी से नहीं सीखा, लेकिन आपको ये नहीं सोचना चाहिए मुझे ऐसा बनना है, आपको अपना बनना है, द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ओके, एंड सो हर आदमी की कैपेबिलिटी अलग होती है, हर आदमी की एस्पिरेशन और इंस्पिरेशन अलग अलग होते हैं, तो आप किसी की नकल नहीं कर सकते। अच्छा, क्या है, मैंने प्रॉब्लम ये मेजर देखी है, सब लोग कहते हैं गांधी जी की बड़ाई करते हैं लेकिन कर कोई नहीं सकता, तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर एक तरह का स्प्लिट पर्सनैलिटी हो जाता है, क्योंकि मैं कहता तो हूँ कि ये चीज बढ़िया है, इसका मुझे अनुकरण करना है, लेकिन कर नहीं सकता, प्रैक्टिकल नहीं है। तो क्या होता है कि थ्योरी एक हो जाती है और प्रैक्टिकलिटी और एक्सपीरियंस एक हो जाता है, तो कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। है। हालांकि बचपन में मेरे कुछ हीरो थे और मेरा सबसे बड़ा हीरो था रुद्र, महाभारत में है रुद्र। तो मेरे हीरो जैसे लोग सोचते हैं कि भाई अर्जुन होगा, शिव होंगे या कि कृष्ण होंगे या कुछ उस तरह के ज्यादा होते हैं, राइट। लेकिन वो बहुत अलग तरह के करेक्टर थे रुद्र। उनका नाम शायद सुना हो, नहीं भी सुना हो, प्रोटो शिवा। तो जैसे कि शिव का नाम ऋग्वेद में नहीं आता, रुद्र का नाम आता है खाली। तो ऐसे है कि बट दोज आर मिथिकल हीरोज। तो रियल सी व्हाट हैपेंस इज दिस इन रियल लाइफ, आप किसी को हीरो बनाते हैं, उसको पेडेस्टल पे बिठा देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि ये तो कितना बदमाश है, देखो ये तो हमारी ही लिव अप टू आवर आइडियल्स। तो पहले आपने उसको हीरो बनाया, फिर अपने आइडियल उस पर थोप दिए, फिर कहा कि ये आदमी हमारे हिसाब से खरा नहीं उतरता, और न आप उसका अनुसरण कर पाए न वो आपका अनुसरण कर पाया। मेरा मानना यह है कि देखिए, आपको अच्छी चीजें, इफेक्टिव चीजें बहुत सारे सोर्सेस से सीखने को मिलती हैं, और वो सब इम्पोर्टेंट सोर्स हैं, वो सब हमारे हीरो हैं। तो अगर मान लो कि ये रिक्शा वाला है, मैंने देखा कई रिक्शे वालों को, तो एक बार मैंने देखा, मेरे को बचपन की बात है, बचपन नहीं, मैं बीटेक कर रहा था, मैं गया था सिटी, मैंने देखा एक रिक्शे वाला बहुत तेज धूप के अंदर, बहुत गर्मी के अंदर, ऐसे एक हैंडल पे सिर लगा के और पांव गद्दी पे रख के सो रहा था। मैंने कहा देखो, दिस मैन इज सो सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ। फिर मैंने ये इस पे जाया, रिसर्च किया कि हैप्पीनेस का क्या मतलब है लाइफ के अंदर। हम सब ये सोच रहे हैं कि हैप्पीनेस के लिए हम ये करेंगे तो हैप्पीनेस हो जाएगी, पर हम गलत सोच रहे हैं। तो अच्छा, अभी मैं बताऊं आपको, एक कॉन्फ्रेंस में गया दिल्ली में, उन्होंने बुलाया, वो कॉन्फ्रेंस ही हैप्पीनेस पे थी। तो सब लोग अपने अपने विद्वान लोग विचार प्रकट कर रहे थे हैप्पीनेस के बारे में। तो कोई प्रोफेसर था, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट था, कुछ पेज थी सेलिब्रिटी थे, कोई था, ये सब है ना। वो बहुत गंभीर बातें कर रहे थे हैप्पीनेस के बारे में। तो मेरा नंबर आया, तीसरा नंबर, तो मैंने कहा भैया ऐसा है कि पहले आप सब लोग खुश हो जाओ, फिर बात करना हैप्पीनेस की। आई सी वेरी सीरियस पीपल हियर। मैंने कहा यहाँ पे कोई चीयरफुल तो दिख नहीं रहा मुझे, ये ऐसा अपनी लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं कि हैप्पीनेस का क्या मतलब है। मैंने कहा पहले आप हैप्पीनेस सोचो। फिर मैंने कहा कि देखिए, अभी मैंने उनको दो चार जोक सुनाए तो उन सबको पसंद आए। फिर मैंने कहा देखिए, अब मैं जा रहा हूँ अपनी हैप्पीनेस के लिए, आई हैव टू मीट माई फ्रेंड्स नाउ, आप अपनी कॉन्फ्रेंस करो और मैं अपने फ्रेंड्स के जाके बैठता हूँ। सी द प्रॉब्लम नाउ विद आवर नॉलेज इज वेरी बुकिश एंड देन इज रीइन्फोर्स्ड। सी अपनी बुक्स कहती है कि आप हीरो कौन होने चाहिए, तो वो बुक्स के अंदर सब लिखे हुए हैं कि ये है हीरो, वो है हीरो, बाकी लोग बढ़िया नहीं है। सो इससे किसी का आज तक पर्पस सॉल्व नहीं हुआ हीरो बनाने से। मैं तो मतलब कि जो बॉलीवुड के हीरो उनको नहीं जानता। अभी क्या हुआ कि मैं एक पार्टी में गया था, 10-1 लोग ही थे उसमें, एक्सक्लूसिव पार्टी थी। तो मैं एक आदमी मेरे बगल में खड़ा था, मैं उसे पूछा आप क्या करते हैं, तो बोला मैं सिंगर हूँ। अरे आई डेंट रिकोगनाइज हिम, टर्न आउट वो तो बॉलीवुड का बहुत बड़ा सिंगर है, उसको हर आदमी जानता है। अगर मैं आपको नाम बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। तो बोला, तो मैं उसको पूछ रहा, मैं बोला कि कैसे सीख लिया आपने गाना। मैं उसे ऐसे ही गाता होगा मेरी तरह, और क्या है, राइट। ऐसे न मैं क्रिकेटर्स को पहचानता हूँ, न मैं बॉलीवुड के लोगों को पहचानता हूँ, पुराने लोगों को पहचानता हूँ, जैसे हेमा मालिनी, नूतन वगैरह, ओके। लेकिन अब मेरे को इन हीरो हीरो में इंटरेस्ट नहीं है कुछ भी, ओके। आई वॉन्ट टू सी ए गुड मूवी, लेकिन मुझे हीरो वर्शिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे बहुत फेमस क्रिकेटर है वो मेरे साथ खड़े थे, दूसरे एक बहुत फेमस सिंगर है वो मेरे साथ बैठी थी एक एयरपोर्ट पे, किसी को मैं पहचान नहीं पाया। दे वर ऑल्सो वेरी अम्यूज्ड, बोले ये सोचा एक आदमी मिला मुझे भारत में जो मुझे पहचानता नहीं है। ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, ये बॉलीवुड सिंगर। तो बोला उसने ना मेरे गले में हाथ डाला, बोला हमारी फोटो डोज से, बोला का प्रोफेसर है ना, उनको कुछ पता नहीं है, बढ़िया है। सो एनी वे, वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल मेरे सभी दोस्त जो सुन रहे हैं वहां पे, कि किसी को हीरो बनाना आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। ये मैं बहुत सिंसियरली बोल रहा हूँ आपको, समझ के बोल रहा हूँ, मैं खाली ऐसे नहीं बोल रहा। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप में अच्छे गुण नहीं होने चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में प्रतिभा नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में इंस्पिरेशन नहीं आनी चाहिए। इंस्पिरेशन बहुत सारे सोर्सेज से आती है, और हम दिन में जितने लोगों से मिलते हैं वो सभी लोग हीरो हैं अपने अपने कार्य में, है ना। और उनसे हम कुछ समझ सकते हैं, उनसे हम कुछ सीख सकते हैं। अगर हमें पसंद आए, वो हमारे उपयुक्त हो, तो आप उसे ले लीजिए, और आप यू नो शुड बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू देम, दैट्स इट। बट यू शुड नेवर वर्शिप ए हीरो। जब आप हीरो को वर्शिप करते हैं तो आप उसको भी डिग्रेड करते हैं। अरे मैं आपको अभी फाइनल बात बताता हूँ। देखिए इतने सारे मैंने IAS देखे हैं, ये सब देखे हैं। अब क्या है, उनके पीछे लोग शुरू से भाग रहे हैं, जब से वो 22 साल के हैं। तो आपने उनको डिग्रेड कर दिया। अब आप कहते हैं कि उनकी हीरो वर्शिप करके, चाहे आप मतलब दिल से करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन अपने उसके लिए कार्य करवाने के लिए या अपना जो भी करने के लिए ना, हर लोग जाके उनकी प्रशंसा करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो भी बहक जाते हैं, न केवल आप उन बहक रहे हैं बल्कि उनको ही बहका रहे हैं, और उसका कोई मतलब नहीं है। तो इससे कि यू नो, लेट पीपल रिमेन ह्यूमन, लेट एवरीबॉडी रिमेन ह्यूमन, एंड न आप उनको हीरो बनाए न आप उनको विलेन बनाए, है ना। आप समझें कि वो ह्यूमन है, और उनसे आप जो कुछ सीख सकते हैं, जो उनसे कार्य करवा सकते हैं, वो बेशक आप करवाइए।
0: बहुत अच्छी बात आपने बोली कि लेट पीपल रिमेन ह्यूमन और वी शुड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ। तो चलते चलते प्रोफेसर शर्मा, जहां हम चाहेंगे कि विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखने वाले बहुत से लोग हैं जो इस समय हमें सुन रहे हैं, बहुत से छात्र हैं जो विज्ञान में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन सभी के लिए कुछ एक संदेश।

0: हम चाहेंगे आज आप साझा करें।
1: देखिए, जिज्ञासा जो है ना, क्यूरियोसिटी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है हर तरह के विज्ञान में। हर नॉलेज एक्चुअली विज्ञान है, तो हमने उसको अलग कर दिया। आजकल वो सोचते हैं कि एक विज्ञान है एक फिलोसॉफी है, ऐसे सोचते हैं लोग, वो गलत है बिल्कुल। हमारी सारी जो नॉलेज है वो विज्ञान है, और पहले उसको उसी तरह से लिया जाता था। हमारी संस्कृति में भी हर चीज को डिबेट करके रेशनली उसको डेटा के द्वारा उसको एक्सपीरियंस के द्वारा ऐसे तोला जाता था, ऐसा स्टैटिक नॉलेज कोई नहीं थी। तो ये जो जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी है टू लर्न मोर, वही सब कार्य करती है। पैशन, क्यूरियोसिटी कि भाई ये खाली मेरी जॉब नहीं है, ये खाली मेरी जॉब नहीं है, जॉब भी है, लेकिन उसके अलावा क्या मैं एक व्यक्ति के रूप में क्या मैं डेवलप हो सकता हूँ? तो मेरा दिमाग कैसे डेवलप होगा? मेरा दिमाग सिर्फ इसे डेवलप होगा कि मेरे को नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। नई चीज सीखने को तभी मिलेगी जब मुझको क्यूरियोसिटी होगी कि ये कैसे कार्य करता है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है। एंड फाइनली द मीनिंग ऑफ लाइफ इज ऑल्सो साइंस, क्योंकि साइंस जो हम पढ़ते हैं वो कभी नहीं बताएगा कि इस लाइफ का मतलब क्या है। तो उसका मीनिंग ओनली वी ब्रिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज नो मीनिंग, इज व्हाट यू नो मीनिंग दैट वी ब्रिंग टू लाइफ, ये दिस इज अ वेरी ह्यूमन थिंग। तो हाउ डू वी कल्टीवेट दैट, कि इसका क्या मतलब है, यानी इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, इसका विजडम क्या है? तो ये सब करने के लिए हमें क्यूरियोसिटी की जरूरत है। और आपको अगर मैं ये कहना चाहूंगा कि एक चीज जो जिंदगी में इंपॉर्टेंट है वो ये है, पैशन, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट ऑफ लाइफ। बाकी चीजें बताई जाए, डाइवर्सिटी है, वो उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि आपको अगर सीखना है, जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, तो आप अपने जैसे लोगों से नहीं सीख सकते, उसे दूसरे तरह के लोगों से सीख सकते हैं। तो ये सब किस लिए है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, क्योंकि हमें नई चीजें सीखनी है।
0: बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर शर्मा आपने, और आज आपसे मिलकर हमें लगता है न केवल विज्ञान बल्कि जीवन और जीवन के अर्थ को भी समझने में कहीं ना कहीं हम सभी को सहायता मिली है और मिलेगी। फिलहाल आज हमसे जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी बातें हमारे सभी श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीपशिखा जी। सभी श्रोताओं को मेरी शुभकामनाएं कि उनके कैरियर के लिए, उनकी लाइफ के लिए, के वर्क के लिए, बिजनेस के लिए, ऐसे उन सभी चीजों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग के एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST के पूर्व सचिव, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA के पूर्व अध्यक्ष, पद्मश्री 2025 से सम्मानित प्रोफेसर आशुतोष शर्मा से दीपशिखा गुप्ता द्वारा की गई ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। आकाशवाणी कानपुर के सौजन्य से प्राप्त इस विशेष कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अजय कटियार और दिलीप झा।
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं गीत मालिका।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म सरस्वती चंद्र का ये गीत। आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म नया दौर से, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने।

लीजिए सुनिए, किशोर कुमार की आवाज में फिल्म प्रेम पुजारी से ये गीत।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका। आइए अब सुनते हैं फिल्म उपकार का ये गीत मुकेश की आवाज में।

0: इस गीत के साथ ही आज का गीत मालिका कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 810 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 8:45 होने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोच समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सेटबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से ये जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
5: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
7: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
8: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
9: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
8: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
10: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
8: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र

0: सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को तहरीक देती रहेगी, जबकि बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत की। मरकज, आसाम और नागालैंड की हुकूमतों ने खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के सिलसिले में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। भारत ने उमान के साहिल के नज़दीक तेल के एक जहाज पर अमरीकी हमलों की सख्त मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय मल्लाहों की जानें तलफ हो गईं। उसने अमरीका के चार्ज डी अफेयर्स को तलब करके एहतजाज दर्ज किया है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलिया ओपन के ख्वातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और आज रात फीफा आलमी कप 2026 शुरू हो रहा है। मैक्सिको के स्टेडियो एस्टिका में पहले मैच में मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका आमने सामने होंगे। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक ऐसे वक्त जब दुनिया की बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरत हाल और इक्तसादी चैलेंजों का सामना है, भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को लगातार तहरीक दे रही है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने खुद किफ़ालत के तईं मुल्क के अज़्म को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत को उजागर किया और दुनिया की बेहतरीन अमल आवरियों बिलखसूस काबिल तजदीद तवानाई के शोबे के तौर तरीकों को इख्तियार करने और उन पर अमल करने की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने कहा कि अब जबकि भारत विकसित भारत के तसव्वुर की ताबीर की हुसूलियाबी की जानिब पेशरफ्त कर रहा है, मरकज और रियासतों की इज्तिमाई जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ गई है। वजीर आजम ने रियासतों से जोर देकर कहा कि वो एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट की स्कीम पर तवज्जो मरकूज करें और इसके ताल्लुक से बरामदात के लिए मौजू हिकमत अमली तैयार करें। उन्होंने दिफाई मैनुफैक्चरिंग के शोबे को एक उभरता हुआ सेक्टर करार दिया, जिसमें भारत अपनी इम्तियाजी शनाख्त कायम कर रहा है और रियासतों को तरगीब दी कि वो इस तरक्की से रूनुमा होने वाले मौके से फैज उठाने के लिए पॉलिसियां वजह करें। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अशोक कुमार लहरी ने आज कहा कि नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल में 2047 तक विकसित भारत के विजन को हासिल करने की गरज से बुनियाद के तौर पर एक हुनरमंद और बाइख्तियार आबादी तैयार करने पर तवज्जो मरकूज की गई। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में मीटिंग के बाद मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब लहरी ने कहा कि विकसित भारत एट द रेट 2047 के लिए शमूलियाती इंसानी फरोग के मौजू पर तबादला ख्याल में तमाम 28 रियासतों के वज़राए आला ने शिरकत की। इसमें तालीम, सेहत, देखभाल और रोज़गार जैसे कलीदी शोबों का अहाता किया गया। जनाब लहरी ने कहा कि नीति आयोग ने वज़राए आला के बामकसद नज़रियात और उनकी मुतालिका रियासतों में किए जा रहे काम से इस्तिफादा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने इस मीटिंग से तफसीली खिताब किया और इस बात पर जोर दिया कि एक बेहतर तालीम याफ्ता और हुनरमंद आबादी भारत की तरक्की के लिए लाजमी है। मगरबी एशिया के बहरान से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब लहरी ने कहा कि वजारत खारजा सूरत हाल को मुनासिब तरीके से हैंडल कर रही है, जबकि अफरादी कुव्वत की तरक्की पर मरकूज तवज्जो में कोई तब्दीली नहीं है। उन्होंने मजीद बताया कि तबादला ख्याल के दौरान शमसी तवानाई, जोहरी तवानाई और मैनुफैक्चरिंग पर भी खास तौर पर तवज्जो दी गई। नीति आयोग के रुकन राजीव गौबा ने कहा कि तबादला ख्याल में एक और कलीदी शोबा मंसूबा बंद शहरकारी था। उन्होंने वाजे किया कि नीति आयोग मुल्क में शहरी हुक्मरानी की काया पलट की गरज से एक एजेंडा तैयार करने के सिलसिले में मुख्तलिफ वजारतों के साथ काम कर रहा है। मरकज और आसाम और नागालैंड की हुकूमतों के दरमियान आज एक सह फरीकी मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए गए, ताकि आसाम नागालैंड सरहद पर खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार की सहूलियात शुरू की जा सकें। इस माहदे पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा और नागालैंड के वजीर आला निफियो रिव्यू की मौजूदगी में नई दिल्ली में दस्तखत किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने इस माहदे को एक तारीखी कदम करार दिया, जो तआवुन पर मबनी वफाकियत और कौमी मफाद के जज्बे का मजहर है। उन्होंने कहा कि इस कदम से खित्ते में तेल और गैस की तलाश को खातिर खा फरोग मिलेगा और इस तरह भारत की तवानाई की यकीनी फराहमी को इस्तेहकाम मिलेगा और दरामदात पर इन्हिसार में कमी आएगी। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि इससे शुमाल मशरक में अमन और इस्तेहकाम में भी बेहतरी आएगी, इससे सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे

की तरक्की के लिए साजगार हालात पैदा होंगे। भारत ने आज अमेरिका के चार्ल्स डी अफियर्स को तलब किया और ओमान के साहिल के करीब पालाउ झंडे के हामिल टैंकर एमटी सेटबेलो पर हुए हमले के सिलसिले में सख्त एहतजाज दर्ज कराया। इस हमले में 3 भारतीय बाशिंदों की जानें तलब हुई हैं। नई दिल्ली में बैन वजारती मीडिया ब्रीफिंग से खिताब करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने खित्ते में जहाजरानी पर जारी हमलों को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया और कहा कि इसका ताल्लुक जारी तनाज़े से है। उन्होंने इस तरह के वाक़यात पर फौरन रोक लगाने पर जोर दिया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बहाल करने की गरज से मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। खलीजी डिवीजन के एडिशनल सेक्रेटरी असीम आर महाजन ने कहा कि हुकूमत मगरबी एशिया की सूरतहाल पर कड़ी नज़र रखे हुए है और भारतीय मिशनों से 24 घंटे हेल्पलाइन चलाई जा रही हैं और ये मिशन मकामी हुक्काम के साथ तालमेल कायम किए हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि एमटी मैरीवैक्स पर सवार अमले के सभी 24 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया है और उनके जल्द ही भारत वापस आने की उम्मीद है। इस जहाज को इस माह की 8 तारीख को ओमान के साहिल के नज़दीक निशाना बनाया गया था। बंदरगाहों जहाजरानी और आबी रास्तों की वजारत में एडिशनल सेक्रेटरी मुकेश मंगल ने कहा कि एमटी सेटबेलो से बहिफाजत निकाले गए अमले के 21 भारतीय अफराद महफूज हैं जबकि हलाक होने वाले 3 मल्लाहों के अहले खाना को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। उन्होंने बताया कि एमटी जलवीर पर सवार अमले के सभी 22 भारतीय अफराद महफूज हैं और उन्हें बहिफाजत निकालने की कोशिशें जारी हैं। हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि कीमियावी खाद और ईंधन की सप्लाई मुस्तहकम रहेगी, इसका खातिर खाद ज़खीरा दस्तियाब है और मुल्क की रिफाइनरीज अपनी ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश के साथ काम कर रही हैं। शहरियों से ज़ोर देकर कहा जाता है कि वो घबराहट में ख़रीदारी से गुरेज करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 14 तारीख से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रवाना हो रहे हैं जहां वो G7 समिट में शरीक होंगे। आज से पहले नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी CB जॉर्ज ने बताया कि ये इंतहाई समर आवर और वसी तर मामलात पर मुश्तमिल दौरा होगा। उन्होंने मजीद बताया कि इस दौरे में फ्रांस के 3 मकामात नाइस, एवियान और पेरिस शामिल हैं। सेक्रेटरी मौसूफ ने बताया कि इस दौरे से वजीर आजम को G7 समिट में शरीक होने वाले आलमी लीडरों के साथ भारत नीज आलमी जुनूब के लिए अहमियत के हामिल मामलात पर तबादला ख्याल का मौका मिलेगा। हुकूमत ने इथेनॉल मिले पेट्रोल की कई किस्मों पर एक्साइज ड्यूटी को ख़त्म कर दिया है। एक नोटिफिकेशन में मरकजी वजारत खजाना ने ऐलान किया है कि 22%, 25%, 27% और 30% इथेनॉल मिले पेट्रोल को मरकजी एक्साइज ड्यूटी से मुस्तस्ना कर दिया गया है। वजारत ने कहा है कि ईंधन की इन चारों किस्मों पर अब कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी होगी। इस इकदाम का मकसद भारत के इथेनॉल मिले ईंधन के प्रोग्राम को मजबूत करना है जिसका मकसद दरामद किए गए खाम तेल पर इन्हिसार में कमी करना, कार्बन अखराजात में तख़फीफ करना और मुल्क में ही तैयार किए गए इथेनॉल की मांग को बढ़ाना है। ये आकाशवाणी है। इत्तिलात नशरियात के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णो ने आज जयपुर में वाक़ आकाशवाणी की इमारत में मुनक़िदा एक प्रोग्राम के दौरान राजस्थान के जैसलमेर में रामगढ़ के मकाम पर वर्चुअल तरीके से 20 किलोवाट FM ट्रांसमीटर का इफ्तिताह किया। इस इजाफे के साथ रियासत में FM ट्रांसमीटरों की कुल तादाद बढ़कर 39 हो गई है। नए ट्रांसमीटर से सरहदी इलाकों के 80 किलोमीटर के दायरे में रेडियो नशरियात सुनी जा सकेंगी जिससे लोगों को वसी तर मालूम, तालीमी मवाद और तफरीही प्रोग्रामों तक रसाई हासिल होगी। इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब करते हुए मरकजी वजीर वैष्णो ने कहा कि मुल्क के पूरे सरहदी इलाकों में कश्मीर से लेकर कच्छ तक आकाशवाणी और दूरदर्शन की कवरेज को मुस्तहकम करने के लिए खसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं जिसके तहत नए FM ट्रांसमीटर और नशरियाती बुनियादी ढांचे की तामीर की जा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भारत में सबसे तवील मुद्दत तक मुंतखब वज़ीर आज़म के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देने पर मुबारकबाद दी है जो कि मुल्क के जमहूरी सफ़र में एक तारीखी संगे मील है। सोशल मीडिया की एक सीरीज़ में शेख मोहम्मद ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जदीद भारत की तारीख में हुकूमत के मुंतखब सरबराह के तौर पर सबसे तवील मुद्दत तक खिदमत अंजाम देने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने भारत की क़्यादत करने में जनाब मोदी की मुसलसल कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और हालिया बरसों में मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत के दरमियान ताल्लुकात में नुमाया पेशरफ्त को उजागर किया।
भारत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की काबिल

0: बसीरत 12 साला दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर ज़बरदस्त तब्दीली रुनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बा इख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदामात किए हैं। आकाशवाणी की खबरों का शोबा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम गरीबों की बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गरीबों की बहबूद और समाजी तहफ़ुज़ को मुस्तहकम करने के लिए बहुत सी अहम स्कीमें नाफिज की हैं। गरीब के लिए मकान मोदी हुकूमत की तवज्जो का अहम शोबा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत रियासतों को 4 करोड़ से ज़्यादा मकानात देही इलाकों में इक्तसादी तौर पर कमज़ोर कुनबों के लिए सौंपे गए हैं। गज़ा की यकीनी फराहमी के शोबे में हुकूमत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुल्क भर में 81 करोड़ से ज़्यादा मुस्तफिदीन को मुफ्त अनाज फराहम कर रही है। आकाशवाणी इसी दौरान पीएम सेवा निधि स्कीम के तहत अभी तक खांचा फरोशों को 1 करोड़ 12 लाख से ज़्यादा कर्ज फराहम किए गए हैं। भारत के समाजी तहफ़ुज़ का अहाता जो 2015 में 19% था, इसमें तेज़ी के साथ इजाफा होकर 2025 में 64% से ज़्यादा हो गया है। आकाशवाणी से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़े हमलों से खबरदार किया है और उसने मुतनब्बे किया है कि वो ईरान के तेल और गैस के बुनियादी ढांचे के अहम हिस्सों का कंट्रोल हाथ में ले लेगा। इस तरह मगरबी एशिया में कशीदगी और ज़्यादा बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान पर इंतहाई सख्त हमला करेगा और बिलाखिर तवानाई के अहम असासों का कंट्रोल हासिल कर लेगा, जिसमें खर्क जजीरे का ऑयल टर्मिनल शामिल है। ये बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब अमरीका और ईरान लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इधर ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत, बहरीन और उर्दून में निशाना बनाकर जवाबी हमले किए और इस तरह खित्ते में तनाज़े के वसत इख्तियार करने के सिलसिले में तश्वीश पैदा हो गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल से उत्तराखंड के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रही हैं। अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकेडमी में 158वीं रेगुलर कोर्स और 141वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की परेड का जायज़ा लेंगी। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन के ख्वातीन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। 2 मरतबा ओलंपिक मेडल याफ्ता सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में ईशा रानी बरवा को 22-20, 21-12 से शिकस्त दी। अब उनका मुकाबला चेन सू यू से होगा। एक और प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, जिसमें दोनों भारतीय खिलाड़ी आमने सामने थे, तन्वी शर्मा ने मालविका बंसोड़ को 21-13, 21-15 से शिकस्त दी। फीफा आलमी कप 2026 का आगाज़ आज मेक्सिको शहर के तारीखी स्टेडियम स्टेडियो एस्टिका में होगा। इसके साथ ही एक माह से ज़्यादा अरसे तक चलने वाले इस अजीमुशान टूर्नामेंट का आगाज़ हो जाएगा। इफ्तिताही मुकाबले के ग्रुप ए में मेज़बान मेक्सिको का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा, जो भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। अब तक का ये सबसे बड़ा आलमी कप होगा, जिसमें 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इसमें 104 मैच खेले जाएंगे, जो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होंगे। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को तहरीक देती रहेगी, जबकि बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत की। मरकज, आसाम और नागालैंड की हुकूमतों ने खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के सिलसिले में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। भारत ने ओमान के साहिल के नज़दीक तेल के एक जहाज पर अमरीकी हमलों की सख्त मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय मल्लाहों की जानें तलफ हो गईं। उसने अमरीका के चार्ज डी अफेयर्स को तलब करके एहतजाज दर्ज किया है और आज रात फीफा आलमी कप 2026 शुरू हो रहा है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर एनडीए कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं एनडीए अधिवेशन में प्रधानमंत्री के संबोधन के मुख्य बिंदु, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा। आशुतोष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: तो आशुतोष जी, जैसा कि कल हमने सुना कि प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन था, और जिसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर बात की, देश के अंदर जो हमारे सामने समस्याएं हैं, जो विकास के मुख्य आयाम हैं, और वैदेशिक संदर्भ में भारत की क्या मुख्य भूमिका है, इन तमाम बिंदुओं पर प्रधानमंत्री ने चर्चा की। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से पिछले 12 साल में सरकार ने काम किया है और देश को किस तरह से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की, ढांचागत विकास की उन्होंने बात की, डिजिटल सेवाओं की बात की, वेलफेयर स्कीम्स की बात की। आप इसके बारे में और क्या जोड़ना चाहेंगे?
2: पिछले 12 साल जो काम हुए हैं राजग काल में, एनडीए के काल में, उसकी जो बात की वो तो की कि उपलब्धियां गिनाई जाए। ये उपलब्धियां मुझे लगता है कि दो स्तर पर दिखी। एक तो कि जो जमीन पे जो चीजें आपको बदलती हुई दिख रही हैं, वो कि जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, और दूसरा है सोच के स्तर पर बदलाव कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। जो जो पहले की सरकारों में 60 सालों में जिस तरफ हमारा, जिस सेक्टर पे फोकस नहीं होना चाहिए था और नहीं गया, उसको कैसे सुधारना है, वो एक लेवल वो था कि कैसे बदलना है। और जो तीसरा जो एक लेवल था जो मुझे दिखा, और प्रधानमंत्री ने इसके बारे में बात भी की, वो ये है कि भारत की जो 140 करोड़ जनता है, उसके मन और दिमाग में कुछ चीजें असंभव सी थी जो कि बैठी हुई थी कि ये चीजें असंभव है, बाकी चीजें तो हम करेंगे। उस असंभव को पार करना, जिसमें कि उन्होंने फिर वो 370 और 3 तलाक, जो इस तरीके की बात की जो समाज से भी जुड़ते थे, देश की सुरक्षा से भी जुड़ने वाले इशू थे, और जो आम जन की जनभावना से जुड़े हुए जो मुद्दे थे वो। तो ये 3 तरीके के बदलाव जो पिछले 12 साल में हुए, मुझे लगा कि प्रधानमंत्री ने इस पे बहुत खुल के बात की।
1: आशुतोष जी, अगर हम खासतौर से बात करें आर्थिक प्रगति की, हम सभी देखते हैं कि किस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, निवेश की बात करें, डिजिटल पेमेंट की बात करें, और खासतौर से पूरी दुनिया में भारत ने अपनी एक जगह बनाई है, और न सिर्फ एक जगह बनाई है, हमने लगातार कोशिश की है इस सरकार के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कि हम बाकी दुनिया से एक कदम आगे चलें। तो आइए सुनते हैं इस बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
3: आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए भारत को अब ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल कंपटीशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना है। दुनिया भारत से सॉल्यूशन चाहती है, दुनिया भारत में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है, और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतर कर दिखाना, हमें यह समय गंवाना नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ, यही समय है, सही समय। हमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में खुद को श्रेष्ठ रखना है। हमें सिर्फ दुनिया जैसा नहीं करना, हमें दुनिया से एक कदम आगे रहना है।
1: तो आशुतोष, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और अगर हम देखें कि किस तरह से जो देश का विकास हुआ है और जो 2047 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, क्योंकि 100 साल हमारे देश की स्वतंत्रता के हो जाएंगे, और उसमें आर्थिक विकास से लेके जो टेक्नोलॉजी का विकास है, जो सोशल इंक्लूजन की बात है, सामाजिक समावेश की बात है, और एक अच्छे प्रशासन और गुड गवर्नेंस की बात है, इस बारे में आप आशुतोष जी और क्या जानकारी देना चाहेंगे?
2: आज देश को किस चीज की जरूरत है? अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो बात हो रही है ना कि पश्चिम एशिया का संकट आया और पूरे विश्व पे इस संकट का असर दिख रहा है। यहाँ पर विपक्ष में बैठे लोग कुछ ज्यादा उसे तूल दे रहे हैं, ऐसा लगता हो कि सिर्फ इंडिया का वो एक इशू है, लेकिन फिर भी जो समस्या अभी आपको दिख रही है ये और कम दिखती अगर कुछ कदम पहले उठाए गए होते, जिसका कि जिक्र अभी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया था। और उन्होंने कहा था कि भाई जो सप्लाई चेन में जो इंडिया का कई बार दिखता है कि हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, ये कोविड

0: टाइम में भी ये चीजें दिखी थी और अभी भी चीजें दिख रही है। वहां कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन में मुख्य भूमिका में इंडिया को आना है। एक टाइम आप याद कीजिए कि कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जहां हम पहले से मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जैसे कि दवाइयां, और ये 80-90 के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ। और फिर धीरे धीरे उस समय कुछ इस तरीके से निर्णय लिए गए कि भाई हम मार्केट इकोनॉमी में किस तरीके से घुस जाए, और हम वहां मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो उस समय में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार खड़ा करना था वो नहीं किया गया। अब शुरुआत हो रही है इसकी, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने बहुत लंबे तरीके से किया और मुझे वो चीजें बहुत सही लगी आज के परिप्रेक्ष्य में कि क्यों नहीं भारत हर मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है, जिसकी बात उन्होंने की। ये आत्मनिर्भरता ही जो है वही कड़ी है और वही आप समझिए सबसे बड़ी कुंजी है, जिसमें कि आप वित्तीय रूप से बहुत संबल, जो बात हो रही है ना बार बार विकसित भारत बनने की,
1: जी,
0: विकसित भारत ऐसा नहीं है कि एक शब्द में जुड़ के कहीं खत्म हो जाए, कई लेवल पे जो स्टेप्स लेने हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री ने ये बात की कि भाई ये ग्लोबल सप्लाई चेन बनना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनना है। आज से 8-9 साल पहले तक आप याद कीजिए तो यहाँ आपके हाथ में, हमारे हाथ में जो भी फोन है वो बाहर से ही आ रहे होंगे कहीं ना कहीं से। अब स्थिति बदली हुई है कि आज अमेरिका वहां के जो यूजर है उसमें से एक फोन मेड इन इंडिया हो रहा है। ये जो बदलते हैं माहौल, उसकी बात उन्होंने की कि हमें किस तरीके से आर्थिक पावर के रूप में उभरना ही पड़ेगा, यही सबसे बड़ी कुंजी है। उसी के साथ समाज का भी ग्रोथ होगा। भारत जैसे देश में जहां इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है उसमें वेलफेयर स्टेट का जो एक बहुत बड़ा बोझ होता है, आप जान रहे हैं कि आज के दिन हम लोग करीब करीब 4-4.5 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी में देते हैं,
1: जी
0: आखिर कहाँ से कर पाएंगे अगर जब तक आप एक आर्थिक ताकत के रूप में नहीं उभरेंगे। और आर्थिक ताकत के रूप में उभरने के लिए इसकी भी जरूरत है, और साथ ही साथ सभी राज्यों को भी लेना चाहिए, जो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन की बात उन्होंने की
1: जी जी
0: कि भाई ये हेल्दी कॉम्पिटिशन सिर्फ राज्य और राज्य में ना हो, ये हेल्दी कंपटीशन गांव से शुरू हो सकता है कि
1: जी
0: एक गांव दूसरे से कॉम्पीट कर रहा हो कि हम अपने गांव को कैसे ज्यादा बेहतर बना पाए, एक शहर दूसरे से कॉम्पीट कर रहा हो कि हम कहाँ पर ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाए। और उन्होंने कहा कि राज्यों को तो ये कॉम्पीट करना चाहिए कि भाई आने वाले टाइम में हु विल बी द फर्स्ट स्टेट जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का स्टेट होगा।
1: तो आशुतोष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाए और प्रधानमंत्री ने सहभागिता की बात भी की, क्योंकि उनका ये मानना है, जैसा कि आप भी अभी जिक्र कर रहे थे, कि सारी जनता मिलके और सारे राज्य मिलके ही विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक जन विश्वास की जो बात है, जन भागीदारी की बात है, इस पर प्रधानमंत्री ने काफी जोर दिया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
2: देशवासियों की सहभागिता की हमारी बहुत बड़ी शक्ति। ये 12 वर्ष सरकार और समाज की सहभागिता का उत्सव मनाने वाले रहे। बीते 12 वर्षों में मैंने जो भी सहयोग देश से मांगा, देशवासियों ने दिल खोल करके साथ दिया। मैंने स्वच्छता का आग्रह किया तो पूरा देश निकल पड़ा। मैंने देश से डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए आह्वान किया तो भारत रियल टाइम ट्रांजेक्शन में दुनिया में सबसे आगे निकल गया। मैंने कोरोना महामारी के दौरान एकजुटता का, संयम का आग्रह किया तो देश ने एकजुट होकर उस महामारी का सामना किया। जनता ने कभी हमें निराश नहीं किया। आने वाले समय में भी इसी जन विश्वास और जन भागीदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है।
1: आशुतोष जी, जैसा कि अभी हमने सुना, प्रधानमंत्री ने इसके अलावा हाउसिंग की बात की, वित्तीय समावेशन की बात की, सफाई का भी जिक्र किया, स्वास्थ्य का जिक्र किया। खास तौर से जिस तरह से गरीबी उन्मूलन की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़े हैं और काफी लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की कोशिश की है, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को और क्या जानकारी देना चाहेंगे?
0: न सिर्फ गरीबी से, जो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, और साथ में उन्होंने कहा कि हमें इसका विशेष प्रयास करना चाहिए, एक साथ मिल करके प्रयास करना चाहिए कि ये फिर से उस गरीबी के दलदल में ना जाए। देखिए सबसे बड़ी समस्या यही होती है जब आप इस तरीके की योजनाओं पे काम करते हैं, स्लिपेज की बात, कि आपने कुछ चीजें ठीक की और वो फिर से धीरे धीरे वहीं चला जाए तो वो प्रयास वहां पर विफल होता है। और देखिए ये गरीबी की जब बात करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा कारक हुआ करता था वो है बीमारी, कि एक बार कोई घर में एक बीमार हो गया किसी गरीब के घर और वो फिर से लोन और इसके दुष्चक्र में फंसता हुआ वो वहीं जाता था। बीमारी को लेकर के सरकार ने पहले ही एक कदम उठाया आज से 5 साल 6 साल पहले, जब आयुष्मान योजना की बात हुई थी, उससे बहुत सारी चीजें सुधरी थी।

0: वाली अर्थव्यवस्था की स्थिति में पहुंच गए हैं, और जैसा आपने भी इसका जिक्र किया कि किस तरह से 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से निकाला है, और प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि किस तरह से एक ऐसा भारत बनाया जाए जहां गरीबों के सपने भी पूरे हो पाए। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: जैसा कि हमने सुना, आशुतोष जी, जो प्रधानमंत्री ने कहा, वो एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं कि जब 100 साल पूरे हों देश के, तो एक नए तरह का भारत हो जो बहुत विकसित हो और विकसित श्रेणी और विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो पाए। आप इस बारे में क्या और कुछ जानकारी देना चाहेंगे?
2: ये जो विकसित भारत की कल्पना की गई, और उसी समय ये भी है कि विकसित भारत क्या होगा। विकसित भारत का अर्थ ये है कि एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में भारत खड़ा होगा, एक आत्मनिर्भर देश के रूप में भारत खड़ा होगा। भारत की तुलना आप किसी छोटे कंट्री से नहीं कर सकते। बहुत सारे विकसित देश ऐसे हैं जहाँ की जनसंख्या आप देख लें तो वो पूरे के पूरे भारत में समाएंगे। तो यहाँ की सोच अलग है और उसी तरीके से इसका ग्रोथ किया जा रहा है। मुझे लगता है जो उन्होंने बात कही दिशा सही है
0: जी,
2: थोड़ी गति की बात है जो उन्होंने कही, हाँ हमें गति और बढ़ानी है, और जिसमें सबके प्रयास की बात की उन्होंने, ये दोनों चीजें होंगी तो मुझे लगता है दिशा और गति दोनों मिलकर जो है सो इच्छित परिणाम भी देंगे।
0: आशुतोष जी, एक और महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही कि किस तरह से सरकार ने विकास के लिए जो भी जरूरी फैसले हैं वो समय पे लिए, चूंकि राजनीतिक स्थायित्व तो है और सरकार के पास ये इच्छा शक्ति है कि वो देश को विकास की ओर आगे ले जाना चाहती है। तो सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, CAA का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही, और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
0: आशुतोष जी, आप और क्या इसमें जोड़ना चाहेंगे? प्रधानमंत्री ने जो बात की कि देश हित में जो भी फैसला जरूरी होगा वो ये सरकार करेगी, जिससे कि देश विकास की दिशा में आगे बढ़ पाए।
2: मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दूंगा।
0: जी,
2: 370 की बात इन्होंने की, और आपको याद होगा कि जब 370 हटाया गया था तो उस समय में किस तरीके की बातें कही जा रही थी। मैं अभी अभी कश्मीर से लौट के आया हूँ, बारामूला और शोपियां जैसे जिले, आप वहां भी खुलेआम घूम सकते हैं एक सामान्य नागरिक की तरीके से, वो भी कश्मीरी नहीं, आप बाहर से जाकर के घूम सकते हैं और सुरक्षित घूम सकते हैं, लोग खुश हैं। उसी तरीके से जो 3 तलाक वाली जो बात कही, सरकार का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि वो आपको नौकरी दे दे, सरकार का काम ये भी होता है कि वो इस तरीके के प्रयास करे कि समाज में भी बदलाव आए।
0: जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर एनडीए कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड

0: Investitia demonstrates that unresolved political grievances and competing security doctrines that we have cannot be indefinitely contained through deterrence alone. And while military superiority may produce tactical victories, but that rarely generates durable political settlements.
1: In terms of the other Gulf countries and their alliance with the United States of America, do you see the dynamics changing there in the future?
0: You know, what has happened in the Gulf is that the Gulf countries are now likely to pursue accelerated diversification of energy export routes. That's number one. So, for example, we've already seen pipelines bypassing Hormuz, enhanced Red Sea connectivity, and expanded storage capacity. They've become strategic priorities. But equally, investments in missile defense, in cybersecurity, in maritime surveillance, this will also intensify as these governments seek to reduce their vulnerability. But what has happened in terms of the relationship between the United States and these countries in the Gulf is very interesting because I think for the United States, which has existed for so many years in the past, but that has come under a lot of strain because the United States now seeks to reassure its allies, to protect the navigation, and to deter Iranian aggression without becoming trapped in another prolonged Middle Eastern war. They don't want to do that. But they also have domestic considerations. There are fiscal pressures now in the United States, and broader strategic competition with China encourages some restraint. But then we also seen attacks on American personnel and assets, and that inevitably generates pressure for retaliation. It creates a cycle of escalation that neither side may fully control. For the Gulf states, there are doubts now about how much they can rely on the security umbrella, which was being provided by the United States so far, when the United States themselves has come under attack. Their bases are under attack from Iran. And that is a strategy that Iran has successfully adopted in order to make sure that the effects of this war are felt by the Gulf monarchies in particular, so that doubts are sown between the Gulf states and continued reliance on the security umbrella of the United States. So obviously it will take a lot from both sides to maintain, this linkage which United States had with the Gulf monarchies going forward.
1: Right. Coming now to India's handling and I think navigating the situation and the dynamics, we have been trying to take the middle path. I think we have relationships with all nations involved in this. How has it been so far, and how do you see India taking this forward, its role in it?
0: So I think for India, the stakes are exceptionally high. Nearly two-thirds of India's crude oil imports originate from West Asia, making uninterrupted regional stability an economic necessity rather than just a diplomatic preference. So any sustained increase in oil prices widens India's import bill. It pressures the current account deficit and contributes to domestic inflation. And then you have fertilizer costs, transportation expenses, and manufacturing inputs. They all become more expensive, affecting our economic growth. And we must not forget that India also hosts one of the world's largest diasporas in the Gulf. That number is over 9 million people. These communities generate billions of dollars in annual remittances that support families and contribute substantially to India's foreign exchange earnings. So escalating conflict could necessitate large-scale evacuation operations similar to previous humanitarian missions, and this will disrupt employment opportunities across the region for Indians. Third issue is maritime security, and that represents another major concern because Indian commercial shipping traverses the Arabian Sea, the Gulf of Oman, and the Strait of Hormuz regularly. So our naval deployments may need expansion to ensure protection of merchant vessels and facilitate evacuation if the circumstances deteriorate. Now, India has already demonstrated considerable capability through anti-piracy missions and humanitarian operations, but sustained conflict would require significant resource commitments, and that's difficult. Diplomatically, of course, India has carefully cultivated balanced relationships across what I would call competing regional actors. It enjoys strategic partnerships with Israel, deep energy ties with the Gulf monarchies, and historically cordial relations with Iran. So this multi-directional engagement enables India to avoid what I would call zero-sum alignments while preserving strategic autonomy. But intensifying polarization may make such balancing increasingly difficult if the partners demand clearer political positioning. Also, our connectivity ambitions have come under strain and uncertainty. Projects involving India, Middle East, Europe economic corridor, expanded port cooperation and logistics integration, they depend fundamentally upon regional stability, and infrastructure investments require predictable security environments and also the confidence of investors. But this escalating warfare has delayed implementation timelines and has also increased the financial risk. So
1: right.
0: All this is not a very good scenario as far as India is concerned.
1: So in the future, when you see a diluting of the conflict or a settlement of the conflict, do you see economic reasons as being the primary motivator for that for all parties concerned and involved in the conflict, rather than just more so taking a high moral ground or like a nuclear weapon stance or for political reasons? Do you think finance is what is going to get things moving towards some kind of a settlement?
0: You know, one can actually today on the 11th of June, one can perhaps envisage four possible scenarios going forward. One, of course, the most desirable scenario, and that involves managed escalation, because in this scenario, the military exchanges will continue intermittently, but diplomatic channels will prevent uncontrolled expansion. And then limited retaliation will become calibrated, which will allow each side to claim deterrence while avoiding direct war. So oil prices may remain elevated, but they'll be manageable, and international mediation gradually will rebuild the confidence. A second scenario would be regional proxy expansion, in which the Hezbollah will intensify operations from Lebanon, Iraqi militias will target foreign installations, the Houthi attacks will increase in maritime corridors, and Israel also may broaden their military response. So, but this will be economically more damaging, and reconstruction costs would mount. Third is the direct regional war, Iranian military strikes, Israeli operations, American intervention, and then attacks on Gulf infrastructure. They would all produce sustained conflict involving multiple states simultaneously. And this outcome would fundamentally reshape Middle Eastern geopolitics. It will require unprecedented international crisis management. A fourth scenario, and I think that is perhaps the best scenario, that involves diplomatic breakthrough born from exhaustion, as you mentioned. Because mounting economic costs and domestic pressures could eventually encourage negotiated settlements involving maritime security guarantees, de-escalation mechanisms, and renewed regional dialogue. Now, although the underlying disputes will definitely remain unresolved, institutional arrangements will reduce immediate conflict risk. While this is difficult to achieve, history demonstrates that prolonged stalemate often creates incentives for diplomacy. So I would hope for that last scenario.
1: Right. I think diplomacy, underrated very often, but deeply valuable quite often, is possibly the way forward. Mr. Wadhwa, thank you so much for such lucid and deep insights on the West Asia conflict and its global ramifications. Deeply appreciate your coming on to our program.
0: Thank you very much.
2: You were listening to a discussion on renewed escalation in West Asia, strategic and economic implications for the world. The participants were Anil Wadhwa, former ambassador, and Gaura Dhawanlal, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: Insights.
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और लीजिए अब सुनिए समाचार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
3: The topic for the Governing Council meeting.
6: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
3: To youth, to working life, to old age.
5: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
7: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इसे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
5: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी स्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया के दौरे पर भी रहेंगे। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीकों की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला होगा। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी शर्मा ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, TRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम गुलदस्ता का, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे विनीत गोस्वामी की गाए कुछ गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसमें आज आप सुन रहे थे विनीत गोस्वामी की गाए कुछ गजलें। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और लीजिए, अब वक्त है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का, जिसमें आज आप सुनेंगे पंडित रंजीत सेन गुप्ता को सरोद पर। राग है जोंग कॉन्स। तबले पर संगत दे रहे हैं ज्योतिर्मय रॉय चौधरी। सुनते हैं शास्त्रीय संगीत में ये

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आर एस रघु। Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Viksit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and developed export-oriented strategies around it. He also identified defence manufacturing as an emerging sector where India is establishing a distinct identity and encouraged the states to formulate policies to leverage the opportunities arising from its growth. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047. Briefing media after the conclusion of the Governing Council meeting, Niti Aayog Vice Chairperson Ashok Kumar Lahiri said the theme covers all aspects of life, including education, health and employment.
1: The topic

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, अब वक्त हुआ है हम सभी की मनपसंद कार्यक्रम फिल्म संगीत में आपकी फरमाइश का। जी हाँ, आज का प्रोग्राम लेके मैं आपके साथ हूँ, आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा ये कार्यक्रम इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, मुझे मालूम है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं अपने संदेशों का, तो लेते हैं हमारा ये पहला संदेश जो आया है गांव टोरोवाल, जिला नवाशहर, पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी जी का। दूसरा जो संदेश आया है हमारे पास वो आया है एयरपोर्ट रोड, वंदना नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश।

विशेष खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी। और जो अगला संदेश आया है हमारे पास, वो आया है स्टेट बैंक ईश्वर कॉलोनी नगली डेरी नजफगढ़ से मैथिली कुमारी, लड्डू कुमारी और टुक टुक जी का। इन्होंने फरमाइश की है इस गीत की।

दोस्तों, हमारा अगला संदेश आया है बागवान मंजिल छोटी बलिया से, नूर आयशा अहमद बागवान जी का, इकबाल अहमद बागवान, अखलाक अहमद बागवान, आमना, आसमा, राबिया, परी, आशू, जूही, सदफ, आरजू।

भगवान और समस्त बागवान परिवार का। अगला संदेश आया है वडिंगखेड़ा पंजाब से, मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा जी का। अगला संदेश है फाजिल का पंजाब, भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विशु खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी खेड़ा। और जो अगला संदेश है वो है हमारे पास दिल्ली से पुनीत रोशा, प्रियांक रोशा और लवेश भाटी का। इन्होंने फरमाइश की है इस गीत की।

श्रोताओं, हमारे पास अगला संदेश जो आया है वो आया है मित्र नगर वीड शहर महाराष्ट्र से। विकास वनसोडे, रेखा वनसोडे, अदिति वनसोडे और वैभव शिंदे का। हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे जी का। अगला संदेश आया है हमारे पास चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा जी का। अगला जो संदेश आया है वो आया है हमारे पास पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू जी का। और अगला संदेश आया है हमारे पास ग्रेटर नोएडा से गोल्डी नागर का। इन्हें सुनना है ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, हमारे पास अगला संदेश आया है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह जी का अगला संदेश जो आया है हमारे पास, वो आया है पहाड़गंज मुल्तानी ठांडा से। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी का अगला संदेश आया है हमारे पास, नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से। नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार जी का अगला संदेश हमारे पास आया है, गांव घिटोरनी नई दिल्ली से। साबिर हुसैन मिरासी मोहम्मद बेगम जी का, और इन्होंने फरमाइश की है इस गीत की।

दोस्तों, जो अगला संदेश आया है वो आया है हमारे पास संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का। अगला संदेश आया है हमारे पास मारहरा दरवाज़ा एटा से नवी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवीद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यशव अब्बासी और रसीद वारसी जी का। अगला जो संदेश आया है हमारे पास आया है एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम और नजबुल हौदा गुमला झारखंड से। और अगला संदेश आया है हमारे पास नई दिल्ली से पुनीत रोशा, प्रियांक रोशा और लवीश भाटी जी का। ये सब सुनना चाहते हैं ये गीत।

साथियों, अगला संदेश जो आया है हमारे पास, वो हमें लिखते हैं, डियर होस्ट जी, आदाब व नमस्कार। आपके आने से प्रोग्राम में रौनक आ गई है। हमें निराश और नज़रअंदाज मत करना, हमारे मेल को ज़रूर शामिल करना। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हमें मेल करें और हम उसको नज़रअंदाज कर दें? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। देखिए, हमने आपका मेल, आपका संदेश ले लिया है, और ये जो संदेश आया है हमारे पास, वो आया है छोटी बलिया करजत मुंबई से, अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले, कापस खेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से, बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी राबिया मंतशा, आशु अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले फैमिली का। देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें ये संदेश भेजते हैं। इसे हम कैसे भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते श्रोताओं। अगला संदेश जो आया है हमारे पास, आया है गांव कुम्हार हेड़ा से, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया और इब्राहिम जी का। अगला जो संदेश आया है, वो आया है हमारे पास, वो आया है हमारे पास बागवान मंजिल छोटी बलिया से, नूर आयशा अहमद बागवान, इकबाल अहमद बागवान, अखलाक अहमद बागवान, आमना आसमा, राबिया परी, आशु जूही, सदफ आरजू बागवान और समस्त बागवान परिवार का। अगला संदेश आया हमारे पास फाजिका पंजाब से, भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विशु खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी खेड़ा जी का। अगला जो संदेश आया है हमारे पास, वो हमारे पास आया है मैथिली कुमारी, लड्डू कुमारी और टुक टुक का, नाभा जिला पाटियाला पंजाब से, सोमदत्त, केरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु जी का। इन्होंने सबने सुनना चाहा है ये गीत।

श्रोताओं, अगला जो संदेश आया है वो आया है हमारे पास बीड शहर महाराष्ट्र से। नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा और बाला साहेब करवा जी का। अगला जो संदेश आया है हमारे पास वो आया है हमारे पास अस्तपुरा जिला मऊ से। मजहर अली अंसारी, राजिया बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी जी का। भादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद जी का। अगला जो संदेश आया है हमारे पास वो आया है गांव घिटोरनी नई दिल्ली से। साबिर हुसैन मिरासी, मोहम्मद बेगम जी का। इन सभी ने पसंद किया है ये गीत।

श्रोताओं, हमारा अगला संदेश जो आया है वो चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रबान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालंद्री लहरे जी का। अगला जो संदेश आया है वो हमारे पास आया है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। अगला जो संदेश आया है वो हमारे पास आया है लालगिरी गोस्वामी जी का और हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी जी का। ये संदेश भेज रहे हैं रघुनाथपुरा जिला श्री गंगा नहर राजस्थान से, और इन्होंने फरमाइश की है इस गीत की।

दोस्तों, अब घड़ी इशारा कर रही है आपसे अनुमति लेने के लिए, लेकिन फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत में आपकी फरमाइश कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 12 बजने को है, अब समाचार होंगे। समाचार के बाद 12:10 पर इस मीटर की जो हमारे प्रसारण है वो संपन्न होंगे। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज़ 24x7 पर हमारे प्रसारण सामान्य रहेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ

0: फ्यूरियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
1: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा कि पंचायती राज से संबंधित 4 पहल राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए चुने गए हैं। डिजिटल शासन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण व्यापक बनाने में ये ग्राम पंचायतों की बढ़ती भूमिका दर्शाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में डेटा एनालिटिक्स के उपयोग द्वारा डिजिटल बदलाव श्रेणी में पंचायत उन्नति सूचकांक को स्वर्ण पदक दिया गया है। ये सूचकांक स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े संकेतकों के आधार पर देश भर की ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन करता है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र के सांगली जिले की कड़ेपुर ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक मिला है, जबकि त्रिपुरा के पश्चिमी त्रिपुरा जिले की बिजॉय नगर ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायतों द्वारा जमीनी स्तर की पहल श्रेणी के अंतर्गत सेवा वितरण के लिए रजत पदक प्राप्त हुआ है। अगले महीने की 1 और 2 तारीख को राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाले 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच अब से कुछ ही देर में रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला होगा। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Viksit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and develop export-oriented strategies around it. He also identified defence manufacturing as an emerging sector where India is establishing a distinct identity and encouraged the states to formulate policies to leverage the opportunities arising from its growth. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat 2047. Briefing media after the conclusion of the Governing Council meeting, Niti Aayog Vice Chairperson Ashok Kumar Lahiri said, the theme covers all aspects of life including education, health and employment.
3: The topic for the Governing Council meeting was Inclusive Human Development for Viksit Bharat 2047. And it was about details. The states talked about what they're doing. Inclusive Human Development covers all the 4 stages of life, from childhood to youth to working life to old age. A skilled population is the key to success.
2: A tripartite memorandum of understanding MOU.

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना फिल्म फिल्म राइफल गर्ल से। गायक थी सुधा मल्होत्रा और साथ ही संगीत और गीतकार थे नक्श लायलपुरी। तो श्रोताओं, हम बात कर रहे थे नक्श लायलपुरी पर। श्रोताओं, अक्सर लोग नक्श लायलपुरी को इसी नाम से जानते हैं, इसी नाम से पहचानते भी हैं, और इसी नाम से वे मशहूर भी हैं। लेकिन असलियत ये है कि ये उनका असली नाम नहीं था। उनका असली नाम था जसवंत राय शर्मा। इनका जन्म 24 फरवरी 1928 को पाकिस्तान के फैसलाबाद शहर में हुआ था। ये असल में एक पंजाबी विश्वकर्मा परिवार से संबंध रखते थे और पेशे से इनका परिवार बड़ा ही था। इनके पिता एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और वे चाहते थे कि जसवंत भी, यानी नक्श लायलपुरी साहब, एक इंजीनियर बने। ये सिर्फ 8 साल के थे जब इनकी माँ एक बीमारी से चल बसी। और कुछ साल बाद, हालांकि इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन इसका इन्होंने पुरजोर विरोध किया था।

ये गीत अभी आपने सुना फिल्म चेतना से। गायक थे मुकेश और गीतकार थे नक्श लायलपुरी। श्रोताओं, नक्श लायलपुरी इंजीनियर नहीं बनना चाहते थे। इन्हें तो बचपन से ही साहित्य से बहुत प्यार था। हालांकि इनके पिता अक्सर इनसे कहा करते थे कि केवल कहानियां और छोटे गीत लिखने से ही उनकी ज़िंदगी नहीं गुजरने वाली। लेकिन ये तो इरादे के बहुत पक्के इंसान थे। इन्होंने फैसला कर लिया था कि इन्हें तो लेखन में ही अपना हाथ आजमाना है और उसी में सफलता हासिल करनी है। इन्होंने अपना लेखन जारी रखा और आखिरकार सफलता ने इनके कदम चूमे।

श्रोताओं, नक्श लैलपुरी 1940 में मात्र 18 साल की उम्र में ही लाहौर काम की तलाश में आ गए और यहाँ आकर इन्होंने एक पब्लिशिंग कंपनी में नौकरी कर ली। उस पब्लिशिंग कंपनी का नाम था हीरो पब्लिकेशंस। 1947 में बंटवारे के बाद ही अपने परिवार के साथ लखनऊ में आकर बस गए और 1951 में इन्होंने बॉम्बे की ओर रुख किया और द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक प्रूफ रीडर के तौर पर काम करने लगे।

श्रोताओं, नक्श लैलपुरी जब द टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर रहे थे, उसी दौरान उनकी शादी कमलेश नामक एक युवती से हो गई जो कि जम्मू की रहने वाली थी और इन्हीं के समुदाय से वो संबंध रखती थी। एक खास बात और ये थी श्रोताओं कि नक्श लैलपुरी अपनी पत्नी को अपनी सफलता का आधार मानते थे, क्योंकि उनकी असफलताओं के दिनों में इनकी पत्नी ने इनका भरपूर साथ निभाया था। इनके 3 बेटे भी हुए थे जिनके नाम थे बप्पन, राजेंद्र और सुनीत। बाद में इनके परिवार ने लैलपुरी का सरनेम ही अपना लिया था। इनके दूसरे पुत्र राजेंद्र लैलपुरी हिंदी सिनेमा में एक सिनेमेटोग्राफर हैं।

ये गीत अभी आपने सुना फिल्म दिल की राहें से मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ में। श्रोताओं, अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए कामों की बात की जाए तो नक्श लायलपुरी साहब ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफ़ी काम किया था। बम्बई आने के बाद अतिरिक्त आय के लिए इन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए गीत लिखने शुरू कर दिए। उसके बाद इन्होंने रंगमंच के लिए नाटक लिखने शुरू किए। वहीं इनकी मुलाकात एक्टर राम मोहन से हुई, जो उस समय अभिनेता और निर्देशक जगदीश सेठी के सहायक थे। जगदीश सेठी ने इनकी कविताएं सुनी और इनसे अपनी अगली फिल्म के गीत लिखने के लिए कहा। इसी दौरान इन्होंने अपने बाहरी नाम नक्श को अपनाया, जो कि असल में एक निशान या छाप को दर्शाता था, और साथ ही लायलपुरी भी इन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ा, जो असल में इनके जन्म स्थान को दिखाता था।

ये गीत श्रोताओं अभी आपने सुना फिल्म परिणय से मन्ना डे और वाणी जयराम की मधुर आवाज़ में। श्रोताओं, नक्श लालपुरी ने फिल्मों में गीत लिखने की शुरुआत 1953 में आई फिल्म जग्गू से की थी। इस फिल्म में लिखा इनका गीत अगर तेरी आंखों से आंखें मिला दूं बहुत सफल रहा था। इस गीत को गाया था आशा भोसले ने और संगीत दिया था हंसराज बहल ने, लेकिन इन्हें ज़्यादातर 1956 में आई फिल्म दिवाली की रात के लिए याद किया जाता है, जो कि जिसे गाया था तलत महमूद साहब ने। तो आइए सुनवाते हैं आपको फिल्म दिवाली की रात का ये गीत तलत महमूद साहब की मधुर आवाज़ में।

तो श्रोताओं, हम बात कर रहे थे नक्श लायलपुरी साहब पर। श्रोताओं, नक्श लायलपुरी साहब को 70 के दशक में कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी, लेकिन तभी संगीत निर्देशक जयदेव ने इनका परिचय टेलीविज़न सीरियल निर्माताओं से करवाया। तब इन्होंने टेलीविज़न सीरियलों के लिए कुछ गीत लिखने शुरू कर दिए। इन्होंने जिस टीवी सीरियल के लिए पहली बार गीत लिखे, उस टीवी सीरियल का नाम था श्रीकांत। इसके अलावा इन्होंने 40 के आसपास पंजाबी फिल्मों के लिए गीत भी लिखे थे। इसी के साथ श्रोताओं, सुनते हैं नक्श लायलपुरी साहब का लिखा हुआ ये गीत फिल्म दर्द से। गायिका हैं लता मंगेशकर।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना फिल्म दर्द से, लता मंगेशकर की आवाज़ में। श्रोताओं, नक्श लालपुरी ने अपने जीवन काल में बहुत से हिंदी और पंजाबी संगीत निर्देशकों जैसे मदन मोहन, खयाम, सपन जगमोहन, जयदेव, नौशाद, सुरेंद्र कोहली, हंसराज बहल और हुसन लाल भगतराम जैसे बहुत सारे संगीत निर्देशकों के साथ काम किया था। सन 1970 में आई फिल्म चेतना और 1977 में आई फिल्म घरौंदा के लिए इन्हें आज भी खास याद किया जाता है। फिलहाल श्रोताओं, घरौंदा फिल्म का गीत हमारे पास नहीं है, लेकिन उसके बदले हम आपको सुनवाते हैं फिल्म तुम्हारे लिए से इनका लिखा हुआ ये गीत।

श्रोताओं, नक्श लायलपुरी आज हालांकि हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन अपने गीतों के माध्यम से वे हमेशा हमारे बीच मौजूद रहेंगे। सन 2016 में एक फ्रैक्चर के कारण अक्टूबर 2016 में उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था और 22 जनवरी सन 2017 को 88 वर्ष की उम्र में अंधेरी मुंबई स्थित उनके स्थान उनका निधन उनके निवास स्थान पर हो गया था। उनका अंतिम संस्कार ओशिवारा स्थित शमशान घाट में किया गया था। इसी के साथ श्रोताओं, घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। हम आपसे अलविदा लेते हैं नक्श लायलपुरी के लिखे इस अंतिम गीत के साथ, जो है फिल्म यात्रा से, जो उन्होंने सन 2007 में लिखा था। गायक हैं अजोय चक्रवर्ती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों के किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में वैश्विक विकास शिखर सम्मेलन की आभासी बैठक में भाग लिया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं ने कुशल वैश्विक ढांचे पर आधारित संतुलित विकास को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आज परस्पर जुड़ी दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां दोनों साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता के परिणाम विकासशील देशों और औद्योगिक एवं तकनीकी पिछड़ेपन का सामना कर रहे ग्लोबल साउथ देशों पर असमान रूप से पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे उबरने में समन्वित वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक लचीली, समावेशी और समृद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थापित करने और साझा विकास के साझा समाधान आगे बढ़ाने के लिए सभी भागीदार देशों के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला हो रहा है। अंतिम समाचार मिलने तक मैक्सिको एक गोल की बढ़त बना चुका था। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Viksit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and develop export-oriented strategies around it. He also identified defence manufacturing as an emerging sector where India is establishing a distinct identity and encouraged the states to formulate policies to leverage the opportunities arising from its growth. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047. Briefing media after the conclusion of the Governing Council meeting, Niti Aayog Vice Chairperson Ashok Kumar Lahiri said the theme covers all aspects of life including education, health and employment. A tripartite Memorandum of Understanding MOU was signed between the centre and the governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas along the Assam-Nagaland border. The MOU was signed in New Delhi in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and Nagaland Chief Minister Naifiu Rio. Speaking on the occasion, Mr. Shah termed it a historic moment as this initiative will enhance the prospects of oil and natural gas exploration and opens up possibilities for mineral mining as well. President Draupadi Murmu will be on a two-day visit to Uttarakhand starting today. During the visit, the President will review the passing out parade of 158th regular course and 141st technical graduate course at the Indian Military Academy, Dehradun. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has said that the horticulture production in the country is expected to be about 3,778 lakh tons in 2025-26, showing an increase of 70.39 lakh ton over 2024-25. According to the second advance estimates of

जो बन किसी को ललकारे, तेरी उठती है जवानी पुकारे। तेरा जो बन किसी को ललकारे, दिल की

लो चली मैं यहाँ से अजी हो हो मन मन में हमें न गालियाँ दो लो चली मैं यहाँ से अजी हो हो कोई कब तक ऐसों के पास आए जिनके दिल में औरों का हो ठिकाना

0: लेके जाना जाना।
1: मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये प्यारा सा गीत आइए सुनते हैं फिल्म हमराही से।

इसी के साथ श्रोताओं, गीत सुनहरे कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये अंतिम गीत श्री 420 से लता मंगेशकर और मन्ना डे की मधुर आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दुनिया में चल रहे संघर्ष अब क्षेत्रीय सीमाओं से परे पहुंचकर व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिनलैंड में हर वर्ष आयोजित होने वाले प्रमुख विदेश नीति और सुरक्षा मंच कुलतारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना मारिया बाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर चर्चा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत के विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए के 4 उम्मीदवार कल आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। निर्वाचित उम्मीदवार तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के बश्यम रामकृष्ण, सना सतीश बाबू और चिंत कयाला विजय तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने और किसी अन्य उम्मीदवार के चुनाव न लड़ने के कारण रिटर्निंग ऑफिसर आर वनिता रानी ने उनके चुनाव की घोषणा की। रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल कहा कि जैव औषधीय उत्पाद आधुनिक

0: भी आप सुन रहे थे गजलें, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। रात्रि के 4 बजने वाले हैं। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना। स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के ठीक 4:20 हुए हैं। आइए सुनिए कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवाने जा रहे हैं गायन। कलाकार हैं TK रंगाचारी। आपने प्रस्तुत किया है रागम शंकर भरणम जो मिश्र चापो ताल में निबद्ध है। आपके साथ वायलिन पर संगत किया है M चंद्रशेखरन ने। तो लीजिए सुनिए TK रंगाचारी का गाया राग शंकर भरणम।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे टी के रंगचारी का गाया रागम शंकर वर्णम, जो मिश्र चापुताल में निबद्ध था। आपके साथ वलन पर संगत किया एम चंद्रशेखरन ने। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 जून 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए आपको आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे योग भ्रामरी प्राणायाम और भुजंगासन। पाँच बजकर 20 पर देशभक्ति गीत आप सुन सकेंगे। 5:30 हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी प्रसारित किया जाएगा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गायन, कलाकार होंगी अम्रपाली, आपने प्रस्तुत आप सुन सकेंगे राग ललित। छह बजकर 10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम मदना प्रसारित किया जाएगा और 6:40 पर सुनिएगा चिंतन। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे सुमित्रा नंदन पंत के विचार। रामचरितमानस से पाठ, इस कार्यक्रम का समय रहेगा 6:45। आज आप सुनेंगे बालकांड का भाग 84। पर सुनिएगा संस्कृत में समाचार और फिर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 7:10 पर सुनिएगा संगीतिका। इसके अंतर्गत आज आपको आलोक कुमार झा के गाए भजन सुनवाए जाएंगे। गीत ओ भरी गुड मॉर्निंग, ये कार्यक्रम सुनिएगा 7:30। आठ बजकर 45 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा प्रसारित किया जाएगा। इसके अंतर्गत आज सुनिएगा गायन पंडित गोस्वामी गोकुल लोत्सव जी का और आपने प्रस्तुत किया है राग गुजरी तोड़ी। 9:15 पर गांधी चर्चा सुनवाई जाएगी। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे वार्ता, विषय रहेगा स्वदेशी और स्वावलंबन पर महात्मा गांधी के विचार। वार्ताकार होंगी मधु शर्मा। 9:30 पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक प्रसारित की जाएगी, प्रस्तुत करेंगे जसपाल कौर। 10:10 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। 11:10 पर सबरस प्रसारित किया जाएगा सुरमंजरी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे चंद्रन नाथ भट्टाचार्य का सितार वादन। आज होगा राग भीमपलासी। इतिहास प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी का ये दिल्ली केंद्र है, 5:00 वाले हैं, लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियू की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनज़र भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार उच्चतम स्तर पर सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नौवहन महानिदेशालय ने प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाज़ों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। मंत्रालय ने जहाज संचालकों, प्रबंधकों और पोत परिवहन कंपनियों को भी मौजूदा समुद्री सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने, स्थिति की पूरी जानकारी रखने और सरकार तथा सक्षम अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों पर लगातार नजर रखने की सलाह दी है। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रहेंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलेन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। मणिपुर भाजपा अध्यक्ष ए शारदा देवी राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं। मणिपुर विधानसभा सचिवालय के सचिव और निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें कल औपचारिक रूप से विजेता घोषित किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि 2025-26 में देश में बागवानी उत्पादन लगभग 3,778 लाख टन रहने का अनुमान है। 2024-25 की तुलना में ये 70.39 लाख टन की वृद्धि को दर्शाता है। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेज़बान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच अपने पक्ष में कर लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस राघु। Prime Minister Narendra Modi has

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। जैसे कि आप जानते हैं कि आज के दौर में ऐसा लगता है कि मानो तनाव हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। जिसे देखो वह तनाव से पीड़ित है। यहाँ तक कि आजकल बच्चे भी तनाव का शिकार होते जा रहे हैं। यदि तनाव से मुक्त पाना है तो इसका एक ही प्रभावी तरीका है और वह है योग। वैसे तो हर योग की अधिकतर क्रियाएं करने से आप तनाव से मुक्त हो सकते हैं, परंतु प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम सबसे ज्यादा इफेक्टिव यानी सर्वश्रेष्ठ माना गया है तनाव को कम करने के लिए। तो भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए आइए सीखते हैं कि किस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। भ्रामरी शब्द भ्रमर से लिया गया है, जिसका मुख्य अर्थ है भंवरा। इस प्राणायाम के अभ्यास के समय निकलने वाला स्वर यानी निकलने वाली आवाज भ्रमर के गुंजन के स्वर की तरह ही होती है। आइए सीखते हैं अभ्यास विधि। सबसे पहले आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। उसके पश्चात आप शंखमुखी मुद्रा धारण करें। यदि आप शंखमुखी मुद्रा नहीं जानते तो आप अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। धीरे धीरे नियंत्रण रूप से श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास भरें और छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज को निकालने का प्रयास करें। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र माना जाता है और हर बार जब भी आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इस अभ्यास को कम से कम 4 से 5 बार अवश्य दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है और चिंता, क्रोध और अति सक्रियता को घटाता है। भंवरे जैसी आवाज का प्रतिध्वनि प्रभाव आपके मस्तिष्क और आपकी कोशिकाएं, आपकी तंत्रिकाओं पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। यह महत्वपूर्ण शांतिकारक अभ्यास है, मतलब इस अभ्यास को करने से आपका तनाव काफी हद तक कम होता है और आपको एक शांति का अनुभव होता है। यह एकाग्रता और ध्यान की भी आरंभिक अवस्था मानी जाती है। तो आज के सेशन में हमने सीखा कि भ्रामरी प्राणायाम से आप किस प्रकार अपने तनाव को कम कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहे निरोग।

0: आम होती जा रही है। युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक कमर के दर्द की प्रॉब्लम पाई जाती है, जिसके लिए आज हम एक आसन करेंगे, उसका नाम है भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं और अपने दोनों हाथों पर सिर को टिकाए रखें और शरीर को शिथिल करें, यानी रिलैक्स कर दें। अब अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, हाथों को खींचकर आगे की ओर लेकर जाएं और माथा यानी फोरहेड आपके आसन पर टिकाए रखें। अब हाथों को धीरे धीरे वक्षस्थल यानी चेस्ट रीजन के पास लेकर आएं और ध्यान रहे कि आपकी दोनों कोहनियां ऊपर की ओर उठी हुई हों, यानी आसमान की ओर उठी हुई हों। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और छाती को नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठाने का प्रयास करें। दोनों कोहनियों को समांतर रखें और इसी स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक श्वास पर श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। दोनों कोहनियों को समानांतर रखें और 10 से 30 सेकंड सामान्य श्वास पर श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहे। इस अभ्यास को भुजंग आसन कहा जाता है। पुनः श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं और अपने माथे को जमीन पर टिकाएं और मकरासन की स्थिति में कुछ क्षण विश्राम करें। ध्यान रखें दोस्तों, जब आप यह आसन करें तब पैरों को उतना ही तान कर रखें कि कमर पर किसी भी प्रकार का कोई तनाव पैदा ना हो। भुजंग आसन का अभ्यास एक सेशन में कम से कम 3 से 4 बार दोहराएं। यदि आपको कोई हर्निया की प्रॉब्लम है और पेट की कोई रिसेंटली सर्जरी हुई है तो यह आसन अवॉइड करें। यह आसन आपकी कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और कुछ हद तक तनाव को भी दूर भगाता है। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। आपसे कुछ देर में यानी 5:20 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम देशभक्ति गीत। कृपया हमारे इस कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

मिडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5:30 बजे हैं, लीजिए अब